0: ವಂದೇ ಮಾತರಂ.
1: ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಸುಜಲ ಸುಫಲ ಮಲಯಜ ಶೀತಲ ಶಸ್ಯಶಾ.

Mozumita, drumada leșo bini, suha sini, sumadura mașini.

ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। आज शनिवार है, सत संवत 1948 के आषाढ़ माह की 20वीं तिथि, तदनुसार 11 जुलाई सन 2026।

FM बैंड 101.8 MHz पर ही आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। दोपहर के 12 बजे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद।

0: आरजू फिल्म के स्पीक को अभी आपने सुना कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़ में। स्पीक के बोल लिखे आनंद बख्शी ने, संगीत से सजाया अनु मलिक ने।
1: जाने दिल तुझको आजे।
2: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज में अभी आपने सुना बादशाह फिल्म के इस गीत को लिखा समीर ने, संगीत से सजाया अनु मलिक ने।

Tu n'es ni tu n'es ni. Tu n'es ni tu n'es ni. Tu n'es ni tu n'es ni.

तुझा है जमी की नहीं, तो घटा है तो फिर क्यों बरसती नहीं, उड़ती रहती है तो पंछियों की।

पामेला चोपड़ा और मनप्रीत कौर की आवाज़ में अभी आपने सुना दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म के स्क्रिप्ट को लिखा आनंद बख्शी ने, संगीत से सजाया जतिन ललित ने।

चलो इश्क लड़ा फिल्म के इस गीत को अभी आपने सुना सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ में। इस गीत को लिखा समीर ने, संगीत से सजाया हिमेश रेशमिया ने।

0: बस
1: अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज में अभी आपने सुना धड़कन फिल्म के इस गीत को। इस गीत को लिखा समीर ने, संगीत संगीत से सजाया नवीन श्रवण ने।

श्रोताओं, दिल है कि मानता नहीं फिल्म के इस गीत के साथ फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। FM बैंड 101.8 MHz पर ही आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। दोपहर के 1 बजने को है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लगजन के बीच ऑकलैंड में हुई वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने अपने संबंधों को सामरिक साझेदारी का दर्जा दिया। दोनों नेताओं ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय वस्तु और सेवा व्यापार को बढ़ाकर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य भी तय किया। वार्ता के दौरान अगले 4 वर्षों के लिए सहयोग रणनीति, हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग बढ़ाने की रूपरेखा और भारतीय नौसेना तथा न्यूजीलैंड रक्षा बल के बीच पारस्परिक लॉजिस्टिक सहयोग समझौते पर सहमति बनी। दोनों नेताओं ने भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते का स्वागत करते हुए इसे जल्द लागू करने पर जोर दिया। पश्चिम एशिया की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने सभी पक्षों से संयम बरतने, तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापत्तनम में स्वदेशी आईएनएस महेंद्र गिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17A का ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि आईएनएस महेंद्र गिरी में 75% से अधिक स्वदेशी घटकों का इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने कहा कि ये युद्धपोत समुद्र से हवा में और समुद्र की सतह तक मार करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि इससे हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत और बढ़ेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों और परियोजनाओं के लोकार्पण तथा शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। श्री शर्मा कृषि उपज मंडी समिति में आयोजित कार्यक्रम से 1,258 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों और परियोजनाओं की सौगात देंगे। इन परियोजनाओं में केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के लिए 6 विकास कार्यों का लोकार्पण, 10 महत्वपूर्ण विकास योजनाओं और नसीराबाद सरवाड़ केकड़ी देवली 4 लेन परियोजना के पहले चरण का शिलान्यास शामिल है। राजस्थान समान नागरिक संहिता 2026 यूसीसी के संबंध में सुझाव लेने के लिए आज जयपुर में संभाग स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की जा रही है। आज दूसरे दिन आमजन से सुझाव और आपत्तियां मांगी जा रही हैं। जयपुर जिला कलेक्टर संदेश नायक ने बताया कि कल हुई जनसुनवाई में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी शत्रुघ्न सिन्हा ने विभिन्न वर्गों के सुझाव सुने।
1: कल काफी धर्म क्षेत्र के लोगों से और उसके साथ साथ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा भी जनसुनवाई में पार्टिसिपेट किया गया था। उनके सुझावों, उनके मतों को और उनकी चिंताओं को हमने कलेक्ट किए हैं। कल कुछ लोग जो जनसुनवाई में नहीं आए थे उनके लिए भी आज हमने जनसुनवाई का ऑप्शन रखा हुआ है। हमारे विज्ञ अधिकारी मौजूद है, उन्होंने जो व्यक्ति हैं जो आ रहे हैं, जो संगठन आ रहे हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन को कलेक्ट करके उन सभी संग्रहण करके उनको समिति के समक्ष प्रेषित की जाएगी, उनके ऊपर समिति निर्णय लेगा।
0: विश्व जनसंख्या दिवस पर आज प्रदेश भर में विभिन्न जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इन गतिविधियों के माध्यम से लोगों को परिवार नियोजन और लैंगिक समानता के लिए जागरूक किया जा रहा है। सभी जिलों में आज से जनसंख्या स्थिरीकरण सप्ताह की भी शुरुआत हुई। जैसलमेर और भरतपुर में जागरूकता रैली निकाली गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आम जन से जनसंख्या संतुलन, स्वस्थ परिवार और जागरूक समाज के निर्माण की अपील की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि संतुलित जनसंख्या ही सशक्त समाज, समृद्ध राष्ट्र और सतत विकास का आधार है। रेलवे जल्द ही IRCTC की नई वेबसाइट का बीटा संस्करण जारी करेगा। कल IRCTC और सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम क्रिस के अधिकारियों ने जयपुर के MNIT के विद्यार्थियों को वेबसाइट का बीटा संस्करण दिखाया और उनसे सुझाव लिए। नई वेबसाइट में कैप्चा प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। सभी श्रेणियों में सीट उपलब्धता एक साथ दिखाई देगी। टिकट बुकिंग की प्रक्रिया तेज होगी और यात्री की जानकारी सुरक्षित रहने से बुकिंग आसान होगी। अधिकारियों ने बताया कि नई वेबसाइट को यात्री आरक्षण प्रणाली से जोड़ा जा रहा है और नया पोर्टल अगले कुछ महीनों में उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। दोपहर के 1:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं महिलाओं का कार्यक्रम पणिहारी।

0: पुण्यारी कार्यक्रम सुनने वाली सैंग बहनों ने सुबह बहन रचना राम राम टीना बहन घना सारा राम राम
1: राम राम सुबह बहन
0: वाह सवा टीना बहन आज तो देखो अपे तो शुरुआत करा अपे आप मथे सुई वाह तो दूर से भरी जोड़ा है
1: सही
0: एक ओखण खो सुनी वत नी सुनी तो थाने बताओ के आसे पासे मे बरसे अपने गांव में तारा और वो बात वास्तव में हो रही है
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है
0: तो बढ़िया मानसून आयो और चारे पासे बरसी हो जरूर पर अपने ये बाड़ में जैसे में ये गति बरसात कोई आई है बाकी यो केवे जड़ो में भाई किसान भाई खेतरी में लाग जावे नहीं हां बरोबर अपने काम हो जावे ओड़ो काम कोनो
1: सही बात है
0: तो
1: बरसात
0: और हमें जो आज पे हूं तो बाहर निकली तो मेरा थोड़ा मन खिन्न हो गया क्योंकि हमें आज भी जो बाहर बाजी पड़ी ना ये बारे में बरसात को नहीं आ
1: अच्छा
0: बरसात रे बगा तो कहीं के तपे दिन खपे हाँ देखो थे बीच में गर्मी गर्मी हुई थी तो गर्मी में बरसियो बरसियो में जो तो बरसोड़ो लिखड़ो चलो जेत बरसो जेत बढ़िया जेत बरसे जेत मोती निपजे आप तो यही आशा करा पर अपने देखो हड़कोन बुआ
1: जाते
0: देखो मलाल है ये वास्ते हूँ सोचो के अगर अपनी पणियारी जब रुकी पणियारी पणियारी गाँव है पणियारी में जाओ पणियारी में बातों कर पणियारी गाँव कदे हुई पणियारी भर ले आवे घरा और उहे वास्ते में अपर तो पणियारी एडी खुशी है के एक बार नहीं तो 10 वर्ष न भले
1: बिल्कुल
0: तो आज अपर बहनों की शुरुआत करो पणियारी
1: जी।

この奴はバーベリエソリハリピエロコメガネピエロピデタコダヤデタラバラゲマエピデタコダヤ

घरे पसरे पिया ने उनका ने दिए लो।

0: Juan y Mar y Miguelo, hoy de carne ni diez miedo. Con el ropa se me va a
1: हमें अगर बरसात नहीं आवे तो पछ हमें ईश्वर की मर्जी है।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: अरे जब पुणियारी आप पुणियारी गावे तो मेरी सीरी बीजी है
2: तो
1: आज पर मन में भाव आयो और आप पुणियारी पर बहनों ने सुनाई है तो ईश्वर जरूर राजी हो से और अपर बरसात आसे। और बरसात आम तो देखो अपर जो कौम है नी में एक नी कोई कोई कौम में चार चौंद लग जाए तो अपने भी चार चौंद कद लगे जब बरसात आवे।
2: बिल्कुल सही बात है। बरसात भी बहुत जरूरी है क्योंकि हणा जी को स्थिति हो रही देखो गर्मी उमस आड़ी घर में इतनी गर्मी लगी बाहर भले हवा कितनी चलती हुए
1: हवा शरीर में लगे को
2: लगे को नहीं वास्तव में तो इधर वास्ते हमें बढ़िया एक बरसात हुए और जड़ू थों के ऊपर आज अगर पनियारी सुनाई है ठाकुर जी ऊपर ही सुने और बढ़िया में बरसे ताकि ऊपर किसान और भी जो है उम्र वास्ते भी बढ़िया ऊपर वास्ते भी बढ़िया चारों तरफ हरियाली हुए तो देखो मन वैसे ही ऊपर प्रसन्न हो जावे।
1: भाई देखो या तो प्रकृति रो नियम है ठीक है के जब ए मौसम आवे ना साड़ लगे और सावन आवन आलो हुए जानो अपने आप अपर दिमाग और महीनो उल्लास खुशी
2: बिल्कुल
1: झलके
2: ऐसे ही बात
1: कर लो और कर लो चाहे टाबर हो चाहे अपो युवा वर्ग हो चाहे अपना बुजुर्ग हो सब न मियो लगे मतलब हर चीज खुशी हो क्योंकि धरती राजी हुई और आकाश राजी हुई बरसात हुई तो ऐसे को हमें मौसम आयो ए मौसम तो वास्तव में उल्लास रुक जाए।
2: बिल्कुल
1: पर जाने के अपे रुगाई उल्लास में पूरा हो तो भी चले कौन
2: सही बात है।
1: और अपनी जो कहीं अंग्रेजी शब्द और मैंने पोस्ट है अपनी जो जगह है वो अपनी आ रही और पणियारी नो जब साफ नाडियो भरोड़ो नहीं दिखे तो पणियारी मतलब कहीं होने।
2: बिल्कुल बिल्कुल सही है।
1: तो जब बरसात आवनी है बाढ़ जो रहे आवन बरसात के खेत आई भी है और आवन आली भी है तो टीना बहन आप आज बहनों से जरूर बात कर सो के बरसात रो जो पौनी है एक तो आप कोकर बचाओ और एक आप साफ सुथरो अपने घरों रे महीनों कोकर भेड़ू करो।
2: बिल्कुल है।
1: और घरों में तो चलो टोंको में तो आप भेड़ू करो पर अपन जो तड़ा है आगोर है जो हमारा बनोड़ा है अगला बनाया गया है हमें वे बखत रे महीनों आवा टीना बहन न तो कोई इंजीनियरिंग थी न को कोई अजकाल जो को निकले है जो को यहाँ धरती मत है भाई नक्शा बनावे बिल्डिंग बनावे वो सब चीजें को नहीं होती।
2: बिल्कुल।
1: पर उरे बावजूद भी अपोरे गोरे महीनो तलायो ये डंगरी बनोड़ी है कि थोड़ो बहुत भी बरसात आवे तो रलक रलक का पानी तले में आ जाए।
2: बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया सही बात है। कुआ तलायो बावड़ियों सब हुए हिसाब से बनोड़ा है।
1: हिसाब से बनोड़ा है।
2: बिल्कुल।
1: अच्छा बावड़िया बनोड़ी है जो कुआ बनोड़ा तो वो हिसाब से बनोड़ा के ज्यादा से ज्यादा पानी उरे महीनो संचय हो।
2: सही है।
1: तो अपे तो आज अपन

0: मंजिल चढ़ी
1: में फिर भी वो दूरदर्शिता सुड़ो बढ़िया काम बनायो के आगे इतना वर्षों से जो पीढ़ियों पर चल रही है बहुत बाकायदा बढ़िया चल रही है।
0: बिल्कुल सही।
1: हमें अपना तो काम सिर्फ इतो ही है कि अपने कोकर साफ सुथरी हुई जगह ना रखो।
0: रखो सही।
1: क्योंकि वे वक्त और महीनों टीना मैंने मेणी नाम भी तो कोई चीज ही को नहीं।
0: सही।
1: ना तो गाय खावे ना ढोर खावे ना ढगो खावे ना नालियों में फंसे ना आडू आवे।
0: बिल्कुल
1: तो मैंने नाम निशान को नहीं तो एकदम शुद्धता थी।
0: सही।
1: और
0: मिट्टी भी सही रहे।
1: मैं कहीं नहीं जो वक्त बदली है जो रहन सहन बदली है जो सुविधाओं बदली है तो हाँ थी आप नजर घुमाओ नहीं तो चारे पास मैंने नजर आई अपने गौर में मैं जाओ पा तो मतलब वो फैलियो ये टाइप से बिखरोड़ी हुए कि एक आर को मन उदास हो जावे मन में खिन्नता हो जावे कि अरे तो अपर गौर ही धरती है जे सोनो निकले जे तपर मरुभूमि है जो बखोनी जाए हर जगह तो में गंदगी क्यों।
0: सही है।
1: शहरों में तो देखो साकले रहा सफाई करने वाला और सब तो एक बार सुफा साफ सफाई हो जाए पर गांव में कोई कोई गांव में है कोई कोई गांव में जो ऐसी सुविधा को नहीं है।
0: सही।
1: वही जगह अपन चाहिए कि अपे भी अपन जो कहें कि एक जो हूँ बड़े थाने कहावत बताऊँ कि कुत्तो हुए नहीं छोटो
0: वही जगह
1: बैठे नहीं कुत्तो आप पोखाड़ी साफ कर बैठे घरों में अपना जो माए थे ये बात क्या था अपे जे बैठा हुई जगह ना अपे साफ कर बैठो तो साफ सफाई ठीक है
0: जरूरी।
1: पर वो तो एक साफ सफाई की बात अलग होगी अपने बरसात की बात कर रहे हो तो ये बरसात में सबसे पहलो काम है अपना डागोड़ है जो अपना छत है वो ना साफ करो क्योंकि हमें कच्चा मकान को नहीं कोई भी
0: पक्का मकान
1: सब जगह लगभग रुपये में 99 पैसा पक्का है तो वो पक्का छतों जो पानी है वो रड़क के अपने टोके में सीधो ले सको और है भी घनी जगह और नालियों भी कोनी अपन बाल्टियों तोंबेड़ा भर भर टोंके में खनिंगना है एड़ो भी सिस्टम कोनी ओड़ी नाली परनाल बना ओड़ी वे ताकि वे परनाल से सीधो पानी टोकेर में ना आ जावे ओ 12 छ मासो 12 मासो जितो भी पानी अपर ज्यादा भेड़ो हो जावे तो बढ़िया है तो इससे पानी रो संचय हो जावे तो ये में ज्यादा हमें डागोल में माथे जाना आंधी चल रही है हाथ लाल थे देखो कितना दिनों से आंधी बेई पड़ी।
0: बिल्कुल।
1: तो वे आंधी से तो डागोल तो बुरी से और आंधी के साथ में जो बावली आया कि नहीं बेहतर जो मोटा मोटा दरखत है तो उमरा पता उठ भी आवे।
0: सही है।
1: तो कहने का मतलब है कि ये आंधी में जो डागोल पूरी जी आए सबसे पहले कहो मैं आप के यो डागोल ना पे
0: साफ करो
1: साफ करो ताकि पानी आवन नाल एकदम मोती वे जो क्योंकि परनाल रो जो पानी आवे बिना पे छोड़ तो कौन सको तो सीधो टोके में जासे पछे आप मटकी भरो या कहो पानी कम मिलो तो आप उन्हें छोड़ लो पर वो जो मिट्टी है या जो गंदगी है वो टोके नीचे है निकाल नीचे बाड़े में पोगती हो तो वो पानी रख के तलाई में जासे
0: सही बात है
1: तो बड़े तलाई में गंदगी तो बीजे नंबर में अपर जो बाड़ा है मोटा मोटा महीनो जो मेणिया है या कोई कखा है या कुछ है की भी घनी से चीजों हुई वो भी लगभग रोज वैसे तो घणो करे हर एक महिला रो काम हुई गांव में आपर देखियो है के साकले रा आपरो घर बॉय गड़गड़ बाड़ो भी
0: बाड़ो भी बारे बार लो बार जको मेन गेट रे बार आड़ी जगह उना भी पूरी ना साफ करे
1: साफ करे पण के नहीं के के कोई भी चीज में अपवाद हुई जीना बहन पूरो सोनो के थी कोनो
0: सही है
1: तो वो अपवाद फैल रही है अपने गांव तक जा रही है हम घर तो साफ कर लियो हम बाड़े की जरूरत है तो हमें आजकल जो सासू माओ है वो भी कैसे हमें अगर ठक गए टाबर तो वो चीज नहीं हो कि अपे जो बाड़ो साफ करता था बाकायदा बाड़े ने साफ करना ये मौसम में रखना तो बहुत जरूरी है क्योंकि बरसात कद भी आ सके तो अपोरा बाड़ो राइज गलियों राइज पानी भेड़ा हो के नाडिया भरी जाए तलाई तक
0: सही बात है
1: तो वो पानी भी अपन साफ सुथरो मिले ताकि वे सु कोई तरीके की बीमारी रोग नहीं फैले इंसानों में की और अपोरा
0: जानवर भी
1: पशुधन में भी
0: बिल्कुल
1: कोई भी चीज अगे तो देखो मनुखों में भी झटकर थी कोई बीमारी पकड़ती बोली और हमें तो पशुधन पकड़ी जावे देखो मेरी बात है टीना बहन
0: कितना पशुधन है ना तो कितनी सारी बीमारी हो रही है गाय गो की
1: जोड़ी इस वास्ते ओ सब यो मेणियों की वजह से पर्यावरण की वजह से ही रुपये रे महीना 50 पैसा जो बना नवी नवी अपनी बीमारियां सुने नहीं हालांकि गायों में मुसोड़ा खोसोड़ा भी जाए एड़ा तो हम था रोग पहले भी
0: अच्छा
1: पर वो ठीक है एक दिन चलता आप और देसी इलाज सही हो जाए हमें वो देसी इलाज

0: तो अगर हमें जब महीनों भर पहले साफ सफाई अपन कर ली, बरसात तो आई होने और धूलो तो आ गया, तो
1: सही
0: अपन
1: है,
0: चाहिए कि वो चीज ना अपन मिश्रा होनी चाहिए और साफ सफाई की तरफ।
1: रखने चाहिए।
0: और जब एक पणियारी ये चीज कहे और ये चीज करे, कहे नहीं
1: करनो भी
0: खाली केवन सु आप ही कहो पे आना कुर्सी में थोड़ा बोली
1: सही,
0: रहे हो नहीं, पर केवन सु को नहीं वे करन
1: अमल
0: सु को
1: करनो
0: हम वो
1: पड़े।
0: करन सु वे आप रे भेड़ी आवे संध्या वक्त रे चार पांच जणिया 10 जणिया
1: सही
0: आप
1: है।
0: यहां जावे बंतली बंतल उठरी पणियारी गावे पाड़ में बैठ और तलाई साफ कर,
1: सही बात है।
0: तो आवन आलो पानी है जो आपो ने बढ़िया मिले साफ सु एकदम।
1: सही, वो रसो को भी आप ही बोक्स हो।
0: तो यानी कोई भी चीज अगर आप मेहनत करो इतना बे तो वो वास्तव में फल तो मिले जाए, वो परिणाम को ना मिले जाए, कोई बेगो मिले तो थोड़ा मोड़ो मिले,
1: सही बात
0: पर
1: है।
0: मिले जरूर है। ये विश्वास मन में जरूर होना कि अगर अपन कोई काम करियो है तो उमरो फल अपन भगवान जरूर देगी,
1: सही,
0: बुरे काम का बुरा
1: बुरा नतीजे।
0: नतीजा और अच्छे काम का अच्छा नतीजा है, तो सीधी सी बात है।
1: बिल्कुल
0: तो अच्छो काम था करियो के पणियारी सुनाई और मेरे दिमाग में ये बात आई कि बहनों ने बताया था कि थोड़ी सी गाल सुधाई के और आपका घर डागोर आगोर और तलाई रह वो आसे पासे जे कोई गंदगी था ना दिखे तो उन्हें जरूर साफ करो ताकि अपने ए आई बरसात आवी पड़ी है आई ना अपनी तलाई भरी जी,
1: सही,
0: तो अपन तलाई में एकदम पालर पानी सागेड़ो भरी जाए और पछे तलाई पड़ी आपकी लहरों लेवे आपके माथे हिंदा खाऊं तू वेर देखो होड़ कोनी ना।
1: सही
0: तो
1: बात।
0: हमें थे आवन दो देखो पुणियारी तो सुनाई हमें थे इतनी सुनाई
1: हाँ, मैंने जो गीत बढ़िया सुना सो, देखो तो बढ़िया सुनो पहले।

Oh, my God.

रोजीरे ये भरा सुसरोजीरे दिल्ली वाला सुसरोजी सुसरोजी भरा सुसरोजीरे दिल्ली वाला आजमीरे मरी सासुजीरे ओ मरी सासुजी।

Oh, my life.

Colombia, lo que grabó. Oh, my God.

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: जिन्हें बैंक फूटो सिर्फ तो ले रही हो सुनाए दियो और संदेश भी सुनाए दिया ले रही हो तो तैयार कर रखो सावन आने वाला।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो सावन में उड़नो ही जे अब चर्चा कर रहा था कि आंधियों जो आने चल रही है तो कहवा तो है कि आंधी रिला रही बरसात
2: आवे
1: और कोई भी चीज री अपे आस रखो तो आस जरूर
2: पूरी
1: पूरी हो जाए, पर हाँ फिलहाल देखो आंधी चल रही है ये आंधी से बचाव रखना भी बहुत जरूरी है।
2: सही
1: भाई, देखो ये यानी कि जिगर है शरीर में ना ताकत हुई जवान आदमी है घूमता फिरता आदमी है तो वो तो हर परिस्थिति ना एक बार संभाल ले।
2: सही है,
1: पर जो जो टाबर है या घर में अपर बुजुर्ग है कोई भी तकलीफ आवे तो चलो आप दवाई पक्की करो या करो ध्यान रखो जाए, लेकिन एक चीज यारी है जो ये आंधी से संबंधित है।
2: अच्छा,
1: वो है दमेरी बीमारी जिसे आप कौन।
2: सही है,
1: दमेरी बीमारी कह सको या एलर्जी कह सको, घणो जणो ने मैं देखी है
2: दूर सो एलर्जी
1: ये मिट्टी सो जो महीन मिट्टी आवे ये सो एलर्जी रे।
2: हां
1: थे तो आप पूरा भुगत वो भी
2: बिल्कुल बिल्कुल
1: थाना तो महसूस होती हो।
2: हां बाहर अगर आंधी हुई अपन मोर भी बैठा हो नहीं तो भी ठा पड़े के मैं मौसम चेंज हुई पड़ी हो ना कितनी। हां ये तो चेंज आवे और वास्तव में ये सब चीजों नुकसान भी बहुत करे क्योंकि सांस में तकलीफ हो जावे आंखें खराब हो जावे।
1: अच्छा, सांस लेने में भी तकलीफ हुई
2: जी
1: क्योंकि मिट्टी जमती है
2: बिल्कुल।
1: तो पता ये रहते कोई तो इलाज भी करता उसने या ध्यान रखना या तो ये तो मैं हिसाब से तो इलाज है कि ज्यादा से ज्यादा हम जो यही लगे कि हमें आंधी आवन आ रही तो अपना मोह बैठो।
2: सही बात है, मोह बैठो खिड़कियां ना दरवाजा ना बंद रखो पर्दा लगाए रखो बाकी जो तो कहो मास्क लगाए रखनो चाहिए
1: भाई। ओ सब सु मास्क ए जरूरी कोनी कि आप आंधी में लगाओ मास्क तो अगर आप हर वक्त लगाओ नहीं या कोई चीज फटको करो या आंधी में लगाओ धूल मिट्टी अभी आप जो कोई भीड़ वाले इलाके में जा रहे हो तो कोई जो सांस सुधी का देखा ना एलर्जी हो जावे कोई ना भीड़ से एलर्जी हो जावे तो अगर मास्क लगोड़ो हुए नहीं
2: तो
1: ये सब खतरे की चीजों से इंसान बच सके
2: बचा हो जावे। सही है,
1: तो मास्क पहली बात तो एक बार बनोड़ो होना चाहिए क्योंकि जब भगवान नहीं करे अड़ो कोरोना कदे नहीं आवे तो कोरोना के वक्त में जो मास्क बनिया था तो घणो घणो संभाल हो देखा आना जो कोई ना जो तकलीफ हुई सांस री जरी तो डॉक्टर भी सलाह दे के भाई मास्क लगाओ।
2: सही,
1: तो वे सु है जो मिट्टी है ए मोय कौन जावे और तकलीफ बढ़े कौन, पर ए के अगर हम जो कौन ही जाप तो रखते थके भी हो जावे तो दमो जद उठ जावे या सांस उठे तो आदमी ना बहुत बहुत मतलब तकलीफ बहुत ज्यादा हुई तो उसे वक्त इंसान तो ज्यादा हो सके जल्दी जल्दी से जल्दी डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए और डॉक्टर की देख रेख में दवाई लेनी चाहिए क्योंकि हमें जो सांस उठी ना कोई भी गोली ले ली एडो काम नहीं करना।
2: सही,
1: क्योंकि सांस संबंधी जो कोई चीज है नी वो तो देखो उसे में सावधानी सबसे पहले तो आप अपने शरीर में है कि सांस थोड़ा दूर आवे तो जीव में घबराहट हो जाए।
2: सही,
1: क्योंकि मौसम है ये मौसम में आना आपको

0: खांसी हुई बुखार हुआ ए मौसम को नहीं है अणो ए एलर्जी
1: एलर्जी
0: मौसम है और दमो उठे तो कदे कदे यही होगा कि कोई अपनी जो ठंडी चीज खाए ले ली तो उसे ज्यादा हुई
1: सही है
0: तो जिके ना सांस की तकलीफ हुई और जितना ज्यादा हो सके ठंडी चीज से बचे जो हमें ठंडो दही खा लियो या ठंडी कोई चीज खा ली
1: छाछ है लस्सी है मट्ठो है कुछ भी है ठंडी चीज जैसे कंजी है पानी आए के पीवनो जो पर हम आए पहले के हम तो बाहर सुआम थे सीधो ठंडो पानी न मत्ते रो पहले बैठो पसीनो सुखाओ पछे पिया तो सर्दी जुकाम हुए सु भी हो जावे यो चीजों से बचाओ करना चाहिए घड़ी बार देखो है भी हुई कि अपन देखो जानवर हुए उमरे भी देखो शरीर में रू या बाल हुए वे सु भी एलर्जी हुई और आजकल पालतू जानवरों ना पालन रूबी घड़ो चले सही बात है पहले जो पर पालतू जानवरों में देखो गाय थी बकरियों पालता घोड़ा ऊंट ए पालता गधा पालता ताकि की है क्या पर वो काम भी आता था और कुत्ता भी दे तो आपको घड़ी वाले कुत्ते ने रोटी दो नहीं तो रात रहे वही घर में क्या घुसन को नहीं देम तो है फर्क आए क्यों जमाने में
0: खैर फर्क आयो जो को आए पर थोड़ा बात कही नहीं के एलर्जी होने जो पशु अब अगर मुझे गाय करना भी उल मत आप हाथ फेर रहे हो तो भी सुबह एलर्जी हो जाए वहां वाला ना पानी सुबह हो जाए और ये धूल सु तो घणी करे ये सु
1: धूल सु तो हो गई हवा और धूल
0: ना कोई भी चीज सीजन हुई नहीं
1: ये बीमारी
0: ये धूल
1: संक्रमण
0: अपर अपर है ही मरुभूमि
1: सही बात है
0: पर तो ही टीना मैं ना मैं तो बच गया वो जो को अगली रात ही पीड़ी आंधी हमें क्या था
1: हमें उत्ती को नहीं अगर नहीं तो पहले तो घर धूड़े सुवेड़ा गरिस्ता ठा पड़ती थी हमें उत्ती धूल को नहीं हुआ
0: उत्ती धूल
1: अब जी को मौ जी को बचपन में देखी हमें अपर टपरा ना उत्ती को देख करना मेरे
0: सही बात है पर ओड़ी आंधी आवे वो नहीं क्योंकि जगह जगह मथे जो शहर बढ़ गया है गाँव भी बढ़ गया है जगह बन गया है और एक मोटो कारण और भी समझ में आ रही है कि पेड़ों की कटाई धनाधन हो रही है तो अपोरा की वो वन खत्म हो रही है नी वो वनों की वजह से भी आंधी है जो उत्ती तक शहर तक और गांव तक हो गई नहीं तो वो आंधी थोड़ी रुकती थी
1: वास्तव में मिट्टी जड़ों से बंदोड़ी रह गई तो वास्तव में फर्क पड़े
0: जो जो अपोरा वन विभाग है जो वन विभाग की तरफ से खूब कोशिशों करी गई पौधा भी नया नया लगा गई और ज्यादातर पेड़ पौधों ने काटन भी कौन दे पर उसके बावजूद भी कहीं नहीं हर चीज में कोई कोई अपवाद हुई फिर भी अपर वन है जो धीरे धीरे खत्म हो रहा है
1: सही बात
0: तो उसकी वजह से अपर पर्यावरण में भी घणो सारो
1: फर्क पड़े
0: फर्क पड़ रहे हैं
1: सही बात
0: और ये जो चीज है नी प्राकृतिक आंधी बरसात में भी घणो सारो फर्क पड़े पर हमें अपने तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज है कि आप ये रो सावधान ही सु आप बचाव रखो ताकि दमा रोग है सांस रोग है इस वक्त बचूड़ा रहो और ये धूल मिट्टी से ज्यादा सबसे पहले तो कौन मास्क जी लगावे अच्छा मास्क लगा लो ना मैं चीज खुली बड़ी वो खा ली तो नक्सु धूल नहीं मोह जाके मुंडे सूख गई
1: सही बात है
0: ये मौसम में चौमासे रे मोह तो जितो ज्यादा हो सके चीज ना ढक ढूंढ के रखो और जितो ज्यादा हो सके दिन थके खा लो
1: बिल्कुल
0: हाँ गौर करियो वे तो पहले 8-10 बजे तक लगभग अपने लोग जिम लेता और संजार 6-7 बजे रोटी आने पड़ जाती खा लेता तो ना तो मच्छर होता ना तो कोई घनी लाइट जगानी पड़ती और ना है धूड़ है चीज आप बनाई झट खाए तो ना तो ढक रखन रो भी है कोनी हो तो पर हमें की है कि आनो एक जनो तो 7 बजे जिम लो बीजो 10 बजे जिम से तो तीजो 11 बजे जिम से तो ये चीजा जो हुई है नी ये ना अपर बहनों कोशिश रहनी चाहिए कि ये चीज ना सुधारे
1: बिल्कुल सही बात है और खावन पीवन रो विशेष ध्यान रखे जो हरी पत्तीदार सब्जियां है उमेर रो सेवन अड़ो कम करनो चाहिए देखो पालक मेथी मिट्टी हुई मिट्टी भी हुई साथ ही साथ में जीव लगन की समस्या ज्यादा रहे आवे भी अणो अच्छी है तो अपन जो ही जो है कि अच्छे उन्हें थोड़े गुनगुने पानी में नमक गत के भिगोए के धोए के कौम में लो तो वे जो जीव और है वो भी खत्म हो जावे साथ ही साथ अपन देखो सुबह बहन आप भले कितनी बात करो हर चीज में अपो पहले बात पैसे री करो दवाइयों गोलियों मत तो अपो पैसा खर्च करो ही पर मौसमी फ्रूट खामता अपो नहीं हिचको तो होनो की जय जय कि अपो जब दवाइयों मत पैसा खर्च सको तो वो पैसा ना अपो ना पर स्वास्थ्य मत पहले खर्च लेना चाहिए और मौसमी फ्रूट रो सेवन है जो है मेवा है ये रो भी कुछ मात्रा में अपन सेवन अगर अपो करता रहो तो अपो शरीर में जो है इम्यूनिटी बनोड़ी रहे जब अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होते है तो अपन देख सो कि जो मौसमी बीमारियां है ए भी अपनो कम लग से तो ये वास्ते छोटी छोटी सी चीजों है पर अगर अपन ध्यान रखो तो अपन यू सु बचाव भी कर सको।
0: भाई।

0: यानी मेरे साथ बात वो वाली सही है ना कमजोर ना सारा ही पकड़े
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है
0: सही बात है ना हाँ अरे ना लोटो आदमी वैसा को गेट लियो रे आप मैंने मुछो हो मोटी मोटी ना
1: उखा सारे
0: तावाड़ हुए तो ही कार को कोई कौन
1: जो घर में अगर सासुरी चलती हुए तो सारी बहुआ भली तरह से सासुरी चलनी बहुत जरूरी है घर में नहीं तो घर की भी तितर बितर हो जावे वाली लोटरी सरकार है
0: कोई भी चीज हो तो तेरा पे मजाक की बात कर रहे हम बहनों पर ज्यादा से ज्यादा ये मौसम में ये धूल मिट्टी से सावधानी रखे हमें जो आप बात करी थी ना कि भाई अपने बाड़ो बुआरो टागोल बुआरो के साफ सफाई करो कि देखो धूल तो भी उड़े
1: सही
0: तो वही चीज में भी एक और हो सके भाई धूल नहीं उड़े कहीं क्यों नहीं उड़े क्योंकि तो मेरा करोड़ बात है
1: अच्छा
0: हमें जो बाड़ो है आप अधिक बाल्टी पानी ले गया और थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा
1: पहले दे छिड़काव
0: कर छिड़क दियो और पछे उर 5 मिनट बाद थे बड़ो बारो मजा लेके धूल उड़ जावे
1: बिल्कुल सही बात है
0: उड़े गो
1: लाख तेरी बात
0: हो तो ना तो धूल उड़े तो घर में अगर देखो मनक बैठा हुआ है मायत बैठा हुआ है तो वो और सुख धूल उड़े कोनी और आप रे भी सुख के वो धूल उड़े ना नाक में जावे ना मुंह में जावे
1: बिल्कुल
0: तो कोई हर चीज रा रास्ता आप पर निकल उड़ा है पर जरूरत है कि आप उन के तो कम मिलो
1: देखो जिको पहले आ जिको थो बात के उर वास्ते की अब पहले आ चल बहनों रो मनोरंजन करवा जे हम
0: भाई ये नहीं कि हर चीज रो हम जे कोई माइनस पॉइंट है नहीं तो वो प्लस भेड़ो जुड़ो दे दे सिर्फ ऐ जगह अपने थोड़ो तेज दिमाग से ना सोचो के आप ये ना कोकर कर सको
1: देखो अमल करनो पड़े ने हाँ। थो जिको करो उन थो ना करते देख के सीखो ही
0: हाँ।
1: देखो लोग की करे अपो मनुष्य भले कितना ही अपो बदलता रहे हो लेकिन फिर भी अपो जिको नकल दी आदत है नहीं वो जावे गुने अपो देख देख के भी सीखो ही कुछ चीजों अपो नहीं इज्जत भी करो ही लेकिन अपो देख के भी काफी चीजों बात करन सु भी बहुत फर्क पड़े अगर चार लोग बेड़ा बैठ से बात कर से तो बात में नहीं बात और निकल से और सीखने भी
0: मिलेगा चलता
1: अच्छा
0: धीरे धीरे जो सुख वापरी हो धीरे धीरे खत्म हो गया ओ सीमित हो गए पहले तो ऑटो तक आया ऑटो से सीमित हो गया हमें कमरा तक आ गया मोबाइल लेके
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: आज भी नारी है नी तो चार जने भरे हो बैठ के आपस में जो बातचीत अगर करे नी तो एक बीजे दुख बांटे एक बीजे खुशी भी बांटे एक बीजे नवी चीज आवे तो वो भी बांटे तो यो करते काम बढ़िया भी बने बंतल भी हो जावे और सीख भी मिल जावे
1: बिल्कुल
0: आपको बात करो कोनो टाबर खेल रहा है तो ये चीजें धीरे धीरे खत्म हो रही है तो इन्हों खत्म मत होने दो इन्हों थोड़ो थोड़ो तो चलाओ कम से कम ज्यादा अगर था सो घड़ो नहीं उपड़े तो मत लाओ
1: तमेड़ो
0: लाओ तमेड़ो भी नहीं लाओ थोड़े घरे बैठे टोका भरीज भी आया मान लो पानी की सुविधा हो गई है तो बाहर नहीं जाओ तो कम से कम आप पाड़े पड़ोस में बैठ के कीर्तन ही करो
1: सही बात
0: भजन ही करो सावन आयो गीत ही गाओ तो कई भी बहाने मिलो
1: मिलना जरूरी है
0: मिलके बातचीत करनी जरूरी है और एक दूसरे की समस्या भी सुननी जरूरी है एक दूसरे हमें जो आप चार लोग हैं उनको एक जनी विचार से देखो पहुंचे तो हमारे शरीर के कोई में की गुण हुई कोई में की गुण हुई अलग अलग गुण हुई हरेक रहा
1: बिल्कुल
0: सब अच्छा सर्वगुण संपन्न भी कोई गुण
1: कोई गुण हुए
0: कोई कोई तो कमी हर इंसान में हुई
1: हो गई
0: एक बात हम आज रे युग री नारी बताऊं दीना मैं कि अगे तो की होतो कि हमें जो थों में कोई बढ़िया बात है मैं थोड़ा देखी तो मन लगी ना ये अच्छी चीज है तो करी ठीक है मैं कोई जे थोड़ी घनी भली है तो थोड़ा लग सके ना ये भली बात है तो आप सीख लो आज रे युगरी जो को युवा वर्ग है वो की करे को भली चीज ना तो गौर ना रही को नहीं अगर कोई कमी है बुरी चीज करे पहले दो ही करो नहीं तो वो बुरी चीज ना पकड़ रहे हैं
1: बिल्कुल
0: खराब चीज ना अगर हमें जो घर में कोई बे तीन सदस्य है एक जनो 9 बजे उठे बीजो 9 उठे तो वही 9 उठे साथ के होगा
1: सही है
0: वो चीज खराब है वो 9 बजे उठ के पूरे घर को काम कर ले वो चीज ना पकड़ो नहीं वो कौन पकड़े इन वास्ते कहना मतलब है कि नकल भी करो तो अच्छी चीज
1: अच्छी चीज भी करो
0: नकल करो तो अच्छी चीज भी करो नकल करो तो बुरी चीज भी मत करो कोशिश ये करो कि मेरी भी बुरी चीज थे मिटाओ अगर थो में काबिलियत है अगर थो में बढ़िया समझदारी है तो थे उमेरी बुरी चीज ना मिटाए के आप की तरफ खोचो थोड़ी जो अच्छाई है वो भी मत हावी करो ताकि वो भी अच्छाई की तरफ जावे
1: और
0: थोड़े साथ साथ में कदम से कदम मिलाए के काम करे
1: बिल्कुल
0: तो देखो चार चौंद जो पहले कहो तो चार चौंद लग जाए चार चौंद लगी के नकल मैं भी
1: अकल चाहिए,
0: अकल चाहिए।

0: नकल नहीं है तो उनकी बात तो नकल कर लो,
1: सही बात,
0: वो तो है जगह में बिगड़ जावे इंसान, तो एड़ो काम नहीं करे और सुचारू रूप से बढ़िया काम करे और आराम से काम कर कराए बैठे जाना तो संगीत अपर तो राजस्थानी सुने, मुझे संगीत की जरूरत ही
1: सही बात।

Ale hila ya na ya de ma, chodi na de ma bira.

0: मालिक भी नजर आ गया रे पागली टूटा नी मुड़ा रे
1: अरे निमुड़ा निमुड़ा निमुड़ा निमुड़ा निमुड़ा निमुड़ा निमुड़ा निमुड़ा निमुड़ा निमुड़ा निमुड़ा

0: वाह सावा, तीनों मैं था तो आप गीत राली सांग सुनाए ना, मैं देखो निम्बुड़ा निम्बुड़ा गाय लिया ना, मैं भगवान कर से बरसात आसे निम्बू उसे, और अगले प्रोग्राम तक आप आसन से कर पीसा। ठीक है, तो अगर
1: बिल्कुल
0: आज प्रोग्राम हो तो मैं वक्त पूरा हो गया तो
1: बिल्कुल
0: बहनों से सीख ले सार कर सा।
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम।

0: एफएमएनडी 101.8 मेगाहर्ट्ज पर ही आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। दोपहर के 2 बजे हैं। अब से कुछ ही देर में अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम शगुन चोपड़ा विद द मिडडे न्यूज। द हेडलाइंस, इंडिया एंड न्यूजीलैंड एलिवेट टाइज टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, सेट टू डबल बायलैटरल ट्रेड टू 35,000 crore rupees बाय 2030। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज इंडियन कम्युनिटी अक्रॉस न्यूजीलैंड is a vital part of the shared journey among two nations, addresses Indian diaspora in Auckland. Defence Minister Rajnath Singh commissions indigenous stealth frigate INS Mahendragiri, says India building a strong, self-reliant and future-ready defence force. BRICS Ministerial Declaration 2026 adopted to strengthen technological and innovation-driven cooperation in transport sector. Typhoon Bavi forces flight cancellations and school closures in Japan and Taiwan. India to face England in fifth and final T20 international in Southampton, England this evening. And in FIFA World Cup, Norway to take on England and Argentina to face Switzerland in quarterfinals tonight. And now the news in detail. India and New Zealand today elevated their ties to a strategic partnership and set a 5-year target to double their annual bilateral trade in goods and services to 35,000 crore rupees by 2030, following talks between Prime Minister Narendra Modi and his New Zealand counterpart Christopher Luxon in Auckland. Earlier, speaking during delegation-level talks, Prime Minister Modi said that his visit to New Zealand marks a historic milestone in bilateral relations and will give fresh momentum to ties between the two countries. Prime Minister Modi said India and New Zealand can play an important role in strengthening peace, stability and security in the Indo-Pacific region.
2: लोकतांत्रिक मूल्यों में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये, और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति

0: के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
1: मिस्टर मोदी थैंक द पीपल एंड लीडरशिप ऑफ न्यूजीलैंड फॉर देयर वॉर्म्स एंड सपोर्ट, सेइंग द विजिट ऑफ एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर आफ्टर फोर डेकेड्स रिफ्लेक्ट्स द ग्रोइंग स्ट्रेंथ ऑफ द पार्टनरशिप। हेलिंग द फ्री ट्रेड अग्रीमेंट और FTA बिटवीन द टू कंट्रीज, मिस्टर मोदी अप्रिशिएटेड न्यूजीलैंड्स एफर्ट्स इन कंक्लूडिंग द FTA प्रोसेस इन अ शॉर्ट पीरियड and thanked Prime Minister Luxon and his government for their leadership. He said the two countries have now taken a significant step by establishing a strategic partnership which will guide future cooperation.
0: हमने भारत न्यूजीलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत हम हर क्षेत्र में स्पष्ट लक्ष्यों और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ेंगे। इस वर्ष हमने रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। इस उपलब्धि से दोनों देशों के उद्योगों, किसानों और युवाओं के लिए नए द्वार खुलेंगे। हमें ट्रेड के साथ साथ ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी और टैलेंट का ब्लूप्रिंट हम तैयार कर रहे हैं।
1: Speaking on the occasion, the New Zealand Prime Minister announced that India and New Zealand will establish a strategic partnership to provide a broader framework for expanding cooperation across key sectors.
2: Today, I'm pleased to announce that Prime Minister Modi and I have agreed to elevate our relationship to a strategic partnership. And this is a significant step forward in a world that is increasingly volatile and uncertain. Strong partnerships are more important than ever before. And this provides a stronger platform for practical cooperation in prosperity, security, and people-to-people connections.
1: Prime Minister Modi has said that the Indian community in New Zealand is a vital pillar of the growing partnership between the two countries. He said that from Auckland to Wellington, from Christchurch to Queenstown, the Indian community spread across every corner of New Zealand is a vital part of this shared journey. Now we go over live to the Prime Minister addressing the Indian diaspora at a community event in Auckland.
0: अब इतना लंबा इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा। अब 40 साल नहीं लगेंगे, ये मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। साथियों, मैं आज आपसे एक आग्रह भी करना चाहता हूं। करूं? हां, कहने में क्या जाता है। हमने कुछ समय पहले हमारी इंडियन डायस्पोरा के बच्चों के लिए एक नया प्रयोग किया है। हमारे बच्चे भारत को समझें और भारत की विविधता की बात दुनिया तक पहुंचे, इसके लिए हमने भारत को जानो क्विज इसकी शुरुआत की है। अभी इसका कर्टन रेजर ही हुआ है और हमारे साथियों ने इसमें ही जिस एनर्जी से पार्टिसिपेट किया है, मैं वही देखकर बहुत प्रभावित हूं।
1: डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज सेड टुडे दैट इंडिया इज बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग सेल्फ रिलायंट एंड फ्यूचर रेडी डिफेंस फोर्स बाय स्ट्रेंथनिंग बोथ कन्वेंशनल डिफेंस कैपेबिलिटीज एंड एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज। He said future wars may employ artificial intelligence and other emerging technologies, but they will ultimately be won by national resolve, courageous soldiers, and capable military power. The defense minister said technology and conventional military strength complement each other, and India is committed to excelling in both under the vision of Atmanirbhar Bharat. Mr. Rajnath Singh was addressing the commissioning ceremony of the INS Mahendragiri, the 6th Project 17A Indigenous Stealth Frigate, into the Eastern Fleet at Vishakhapatnam today. He said the commissioning marks another milestone in strengthening India's maritime power and indigenous defense capability.
3: में

0: Today is World Population Day. Union Health and Family Welfare Minister Jagat Prakash Nadda today said that World Population Day underscores the importance of voluntary family planning, informed choices and healthy families as the foundation of inclusive and sustainable development. In a social media post, Mr. Nadda said that the theme, healthy timing and spacing of pregnancies for the well-being of mother and child and planned parenthood, and the campaign slogan, when children are spaced correctly, families become healthier and happier, reinforces the need to improve maternal and child health through informed reproductive choices and quality family planning services. On to sports. India will face England in the fifth and final T20 international of the series today at Utilita Bowl in Southampton. The match is scheduled to begin at 7 p.m. Indian Standard Time. England has already clinched the series with a 3-0 lead, while India will be aiming to register a consolation victory before the teams move on to the ODI series. In the FIFA World Cup, Norway will take on England, while defending champions Argentina face Switzerland tonight in the quarterfinals to determine the remaining semi-finalists. Spain and France have already booked their places in the last four. Spain secured a thrilling 2-1 victory over Belgium to advance, while France progressed with a comfortable 2-0 win over Morocco. The winners of tonight's quarterfinals will complete the semi-final lineup of the FIFA World Cup 2026. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and New Zealand elevates ties to strategic partnership set to double bilateral trade to 35,000 crore rupees by 2030. Prime Minister Narendra Modi says Indian community across New Zealand is a vital part of the shared journey among two nations, addresses Indian diaspora in Auckland. Defence Minister Rajnath Singh commissions indigenous stealth frigate INS Mahendragiri, says India building a strong, self-reliant and future-ready defence force. BRICS Ministerial Declaration 2026 adopted to strengthen technological and innovation-driven cooperation in transport sector. Typhoon Bavi forces flight cancellations and school closures in Japan and Taiwan. India to face England in fifth and final T20 international in Southampton, England this evening. And in FIFA World Cup, Norway to take on England in Argentina to face Switzerland in quarterfinals tonight. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया, कहा न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच साझा सफर का एक अहम हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्रगिरि का जलावतरण किया, कहा भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 को अपनाया गया। बावी तूफान के कारण जापान और ताइवान में उड़ानें रद्द और स्कूल बंद। भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में खेला जाएगा, और फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य है। ऑकलैंड में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि आगामी चार वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है।
2: डिसीशन टू एलिवेट
3: दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के

0: स्तर तक ले जाने का निर्णय ये दर्शाता है कि हम अपने रिश्तों के सभी क्षेत्रों में संबंध मजबूत कर रहे हैं, विशेष रूप से रक्षा तथा सुरक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक स्तर पर।
1: इससे पहले दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा।
2: आज हमने इंडो पैसिफिक में मैरिटाइम कोऑपरेशन के लिए एक फ्रेमवर्क पर सहमति बनाई है। बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज, लॉजिस्टिक सपोर्ट और हाइड्रोग्राफी में सहयोग से हमारा आपसी तालमेल बढ़ेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने के लिए भी सहमत हुए हैं।
2: वैश्विक मंच पर भी भारत और न्यूजीलैंड भरोसेमंद साझेदार और करीबी मित्र है। हमारा मानना है कि वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए यूएन सहित अन्य वैश्विक संस्थानों में रिफॉर्म आवश्यक है। आतंकवाद के विषय पर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ाने के लिए आज हमने ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का गठन किया है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश खेल संबंधों की 100वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
2: 100 साल पहले मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में हॉकी टीम ने यहां आकर जो इतिहास रचा था वह हमारी खेल साझेदारी को आज भी प्रेरित कर रहा है। इस उपलक्ष्य पर हम दोनों देशों में कई स्पोर्ट्स इवेंट्स आयोजित कर रहे हैं। क्रिकेट के साथ साथ अन्य खेलों में भी सहयोग बढ़ाने के लिए हमने स्पोर्ट ज्वाइंट एक्शन प्लान बनाया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों का महत्वपूर्ण आधार है। ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के संबंध साझा विरासत, स्थायी मित्रता, समान लोकतांत्रिक मूल्यों और उज्जवल भविष्य के साझा संकल्प पर आधारित हैं।
2: हमने न्यूजीलैंड से भी बहुत कुछ सीखा है और अब भी सीख रहे हैं। न्यूजीलैंड दुनिया का वो देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग का राइट दिया था। भारत भी आज विमेन लेड डेवलपमेंट के मंत्र के साथ महिलाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि ऑकलैंड से वेलिंगटन और क्राइस्ट चर्च से क्वींसटाउन तक भारतीय समुदाय ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
2: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बन सकते हैं, जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं, जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, ऐसे कितने ही नाम है। यहां रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं।
1: इस अवसर पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते से न्यूजीलैंड के निर्यातकों को भारत के विशाल बाजार तक पहुंच मिलेगी और न्यूजीलैंड में भारतीय कारोबार के लिए नए अवसर खुलेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17 एकाई युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को सुदृढ़ करके एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। श्री सिंह ने कहा कि INS महेंद्रगिरी में 75% से अधिक स्वदेशी घटकों का इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है।

0: इससे हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत और बढ़ेगी।
1: INS महेंद्रगिरी में मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है, जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं। और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टॉरपीडो लॉन्चर्स है, एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। ये तमाम चीजें INS महेंद्रगिरी को महेंद्रगिरी पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती है।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 अपनाई गई है। बैठक में ब्राजील, चीन, मिश्र, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात के परिवहन मंत्रियों ने अपने विचार साझा किए। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत दो दिन की ये बैठक आज से नागपुर में शुरू हुई। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में जय प्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। श्री शाह ने युवाओं से पुस्तकालयों में जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पुस्तकें व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। श्री शाह ने कहा कि महान क्रांतिकारी और विचारक जय प्रकाश नारायण ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
2: किशोरों ने और युवाओं ने अपने रुचि के विषय छान लेने चाहिए और सुने सुनाए ज्ञान की बगैर हमारे रुचि के विषय में जिन्होंने पूरा जीवन खपा दिया है, जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया है, ऐसे लोगों ने जो अपने अनुभव, अपने विचार, अपना चिंतन और चिंतन की व्यवहारिता जो पुस्तकों में अंकित की है, उसको पढ़ना चाहिए। ये बहुत बड़ा मौका है दिल्ली के युवाओं के लिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट 32,000 पुस्तक और 1 करोड़ ई बुक का एक्सेस है।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि हैदराबाद को प्रमुख हाई स्पीड रेल हब के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रस्तावित बुलेट ट्रेन कॉरिडोर हैदराबाद को पुणे, चेन्नई और बेंगलुरु से जोड़ेगा। हैदराबाद में श्री वैष्णव ने कहा कि हाई स्पीड रेल नेटवर्क से यात्रा में लगने वाले समय में कमी आएगी और दक्षिण भारत में रेल संपर्क मजबूत होगा। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। विश्व जनसंख्या दिवस पर उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय माँ और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व है। उन्होंने कहा कि अभियान का नारा जब बच्चों में हो सही अंतराल, परिवार बने स्वस्थ और खुशहाल, गुणवत्तापूर्ण परिवार नियोजन सेवाओं तथा जागरूक प्रजनन संबंधी निर्णयों के महत्व को दर्शाता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जापान के दक्षिणी द्वीपों में आज तूफान बावी के टकराने की खबर है। इस दौरान द्वीपों में तेज हवाएं चली और मूसलाधार बारिश हुई। लगभग 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ तूफान बावी के कल तड़के चीन के झेजियांग प्रांत में टकराने का अनुमान है। इस तूफान के कारण जापान के ओकिनावा प्रांत में 200 से अधिक उड़ानें रद्द की गई। ताइवान में स्कूल और सरकारी कार्यालय भी बंद रहे। इस बीच चीन ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश ने बताया कि अल नीनो के कारण देश में मॉनसून की बारिश सामान्य से कम हुई है।
3: आज के लिए हमारा असम मेघालय के लिए रेड अलर्ट भी है, वहाँ हम 20 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल अनुमान लगा रहे हैं। ईस्ट उत्तर प्रदेश, बिहार, सब हिमालय में स्मॉल सिक्किम, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो रेनफॉल एक्टिविटी है आने वाले 4 से 5 दिन कंटिन्यू रहेगी और नॉर्थ पंजाब, नॉर्थ हरियाणा में आज हैवी रेनफॉल हो सकती है। अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करें, बाय इवनिंग और लेट इवनिंग हल्का फुल्का रेनफॉल हो सकता है।
0: सिक्किम एक बार फिर देश का सबसे समृद्ध राज्य बनकर उभरा।

0: आय बिहार के एक औसत निवासी की तुलना में लगभग 10 गुना ज्यादा है। पिछले 10 वर्षों से शीर्ष 4 स्थानों पर सिक्किम, गोवा, दिल्ली और चंडीगढ़, जबकि सबसे निचले स्थानों पर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर लगातार बने हुए है। मानुश्रोतिम शर्मा के साथ मोइनाक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
1: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज शाम 7 बजे साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में 1 विकेट पर 21 रन से आगे खेलेगा। माइया बाउचियर 17 और हीथर नाइट 1 रन बनाकर क्रीज पर हैं। इससे पहले कल भारतीय टीम ने पहली पारी में 285 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 83, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 58 और दीप्ति शर्मा ने 57 रन बनाए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अंतिम क्वार्टर फाइनल में कल सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इससे पहले स्पेन और फ्रांस सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया। कहा, न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच साझा सफर का एक अहम हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी का जलावतरण किया। कहा, भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र 2026 को अपनाया गया। और भारत तथा इंग्लैंड के बीच 5वां और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 101.8 MHz पर ही आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब से लेकर शाम 5 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रमों को, जिन्हें आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिलीज किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

राई पर बाहर परे अंगना पुआर तैयार।

0: राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, चित्रगुप्त का संगीत था, लता मंगेशकर की आवाज थी और फिल्म थी भाभी।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बहादुर।
2: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची, और एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला, सईद को पकड़ा लिया। और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
3: और आ गया।
4: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां, आप काट दिया रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे थे आरजू फिल्म का ये गाना। रचना थी हसरत जयपुरी की और संगीतकार थे शंकर जयकिशन, जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पर मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

भी नहीं। मेरे दिल को ना सराहो, मेरे दिल को ना सराहो, तो कोई बात नहीं।

में रहो अपनी मासूम जवानी की पनाहों में रहो, मुझको वो दिन न दिखाना।

0: दिल ही तो है, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। रचना थी साहिल लुधियानवी की, संगीतकार थे रोशन। अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता
0: है। यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
3: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
2: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: लता मंगेशकर की आवाज में ये था साहिल लुधियानवी का लिखा गाना। संगीतकार थे रवि, फिल्म थी आंखें। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई,
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

अमर प्रेम फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। शब्दकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार राहुल देव बर्मन। आवाज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। मन चाहे गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम मन चाहे गीत। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। आपको याद आ गया होगा, इसी शैली में मन चाहे गीत कार्यक्रम की शुरुआत किया करते थे और बहुत सारे श्रोता अपने रेडियो की आवाज सचमुच बढ़ाया करते थे, क्योंकि श्रोताओं के पसंदीदा फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम है और बहुत बेसब्री से श्रोताओं ने इंतजार किया था और हाल ही में यह कार्यक्रम शुरू हो चुका है। तो चलिए आज बढ़ाइए आवाज और देखिए कि आपका नाम इसमें शामिल है या नहीं, आपकी पसंद शामिल है या नहीं। प्यार का मौसम फिल्म का गाना।

प्यार का मौसम फिल्म का गाना था, किशोर कुमार की आवाज और इस गाने की फरमाइश भेजी थी हमारे इन श्रोताओं ने। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से कुमारी वंदना मराठा, भाऊ मराठा, गणेश दादा और इनके परिवार के अन्य लोग और स्वाति नारायण, ललिता नारायण खर्चे का भी नाम लिखा है इस पोस्ट कार्ड में। और श्रोताओं की फरमाइश आई है चांदूर बिस्वा तालुका नंदुरा जिला बुलढाणा महाराष्ट्र से, नारायण भाव खट से, रक्षा ताई खट से, ललिता संजना और इनके परिवार के अन्य लोग, जोधपुर राजस्थान से गिरधारी लाल विश्वकर्मा और इनका पूरा परिवार। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत, ये श्रोताओं की पसंद पर।

गाइड फिल्म का गाना था लता मंगेशकर की आवाज, शब्दकार शैलेंद्र, संगीतकार सचिन देव बर्मन। और श्रोताओं की फरमाइश पर यह गाना था गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से एम फारूक कादरी और फिरासत हुसैन, मुनव्वर लल्ला, पप्पू बिजली वाले, शेख शमा परवीन और अफसाना बेगम, महजवी शेख और इनका पूरा परिवार, दयाल बंदे बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, पद्माकर राउत, सविता राउत, अश्लीला राउत, आदित्य राउत और इनके अन्य साथी। और इसके अलावा फरमाइश आई अयोध्या स्टेट भोपाल मध्य प्रदेश मयूरी परिसर से श्रवण सिंह के नारे और इनका पूरा परिवार। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत, ये फिल्म जीने की राह।

जमाने वालों किताबे गम में खुशी का कोई फसाना ढूंढो। जमाने वालों किताबे गम में खुशी का कोई फसाना

का देखो नहीं होता है नसीबा रोशन सितारों जैसा, सभी का देखो नहीं होता है नसीबा रोशन सितारों जैसा। सयाना वो है जो पतझर में भी सजा ले गुलशन बहारों जैसा। कागज के फूलों को भी जो महका कर दिखलाए, एक बंजारा दाए जीवन के।

जीने की राह फिल्म का गाना था, मोहम्मद रफी की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। और चिट्ठी मिली बरगी नगर जबलपुर से, रविंद्र गत्रे, सुभाष गत्रे, दिगंबर, राजेश, शुभांगी, सृष्टि और इनके परिवार के अन्य लोगों की ओर से। दयालबंद बिलासपुर छत्तीसगढ़ से पद्माकर राउत, सविता राउत, अश्लेला और इनके अन्य साथी। और फरमाइश भेजी छत्तीसगढ़ सिमगा से रमेश कुमार यादव, माया यादव, सन्नी कोमल यादव और इनके परिवार के अन्य लोग। प्रयागराज से पिंकू और बबली की ओर से फरमाइश आई। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत, ये फिल्म अनामिका, किशोर कुमार की आवाज, मजरूर सुल्तानपुरी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

अलगों में रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को अनामिका तू भी तरसे।

मुझको ये भी दिखलाया, जैसे बिरहा की रुत मैंने काटी, तड़प के आए भर भर के, जल मन तेरा भी किसी के मिलन

मुझे क्या हुआ था एक बेवफा पे, हाय मुझे क्यों प्यार आया तेरी बेवफा।

0: पल बन रह गए जैसे मेरे सपने बिखर गए। जल मन तेरा भी किसी के मिलन को अनामिका तुझे तरसे।
1: अनामिका फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज, शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार थे राहुल देव बर्मन और इस गाने को पसंद किया था आप सभी श्रोताओं ने। रंगारेड्डी एकलव्य नगर से वेंकटेश, श्यामला, सायोना, साई प्रकाश, सुषमा, बाबू अकेला और इनका पूरा परिवार, गांव चलाला काठियावाड़ से सुलेमान भाई दल, खलील दल और इनके अन्य साथी, और इसी गाने की फरमाइश आई थी कटारिया कच्छ से मानविक राघाणी, डॉक्टर निषाद, कबीर, रमजान और इनके अन्य साथी, मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से देवी राम इनवाती, दामिनी इनवाती। चलिए सुनते हैं अगला गीत।

लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे राजा मेहदी अली खां का लिखा ये गाना। संगीत मदन मोहन का था, फिल्म थी मेरा साया, और इसे पसंद किया था आप सभी श्रोताओं ने। उल्लासनगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति शामतकर और चेतन शामतकर ने इसी गीत की फरमाइश की थी। एन आर श्रीवात्री ने सागर मध्य प्रदेश से, शाहू नगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला, विशाल, चेतन और इनके अन्य साथी, और नरोत्तम गौड़ और इनके साथियों ने फरमाइश भेजी थी लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से। चलिए अब सुनिए ये गाना।

मेरे हम सफर फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। रचना थी आनंद बख्शी की, संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी, और इस गाने को पसंद किया था आप सभी श्रोताओं ने। गणेश पेठ पाथरडी से अंबादास शिंदे, संगीता शिंदे, अमोल अमृत, सुवर्णा शिंदे और इनके परिजन, जगाधारी हरियाणा से विजय मोहन, मीनाक्षी और इनके परिवार के अन्य लोग, लुहेड़ी महोबा उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, अरविंद, राघवेंद्र, रिया, रेणु, दिव्यांशी, रोनिका और इनके परिवार के अन्य लोग। अब आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

नाट्य तरंग। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं हरिराम आचार्य का लिखा नाटक रहीम की ढानी। इसका निर्देशन किया महेंद्र मोदी ने। तो आइए सुनते हैं नाटक रहीम की ढानी।

0: वाव, जैसलमेर हमको हर एंगल से फैसिनेट करता है मिस्टर ओझा।
1: अच्छा,
0: और हम क्या, दुनिया का कोई भी टूरिस्ट इधर से मुग्ध हुए बिना नहीं जा सकता।
1: क्या क्या आपने क्या बोला मिस चारू मित्रा, मुग्ध?
0: यस मिस्टर ओझा, आई मीन इट।
1: रियली? मगर ऐसी क्या अनोखी बात है यहाँ जिसके कारण आप जैसे कला और इतिहास के प्रेमी हर वर्ष यहाँ खींचे चले आते हैं?
0: ओ मिस्टर ओझा, दिस डेजर्ट, जे मीलों तक फैला रेगिस्तान, जैसे सोने की बालू का सागर लहराता हो, कड़ी धूप में तप करते शमी की पेड़, लुका छिपी खेलते गोड़ावर पक्षी, गोर बन से सजे ऊंट। मिस्टर ओझा, इट इज नॉट लेस देन अ वंडरलैंड फॉर मी।
1: आप हरे भरे बंगाल से आती हैं, इसलिए ये सूखा रंगहीन लैंडस्केप आपके लिए नई बात हो सकती है।
0: नो मिस्टर ओझा, ये तो एक ब्रॉड पैनोरामा है। इस बैकग्राउंड पर कलरफुल परिधान, आर्ट, कल्चर और इतिहास के जो रंग उभरते हैं, लोक संगीत के जो स्वर गूंजते हैं, वो सब कोहने का नहीं, फील करने का चीज है।
1: एक बात कहूं मिस मित्रा?
0: ओह यस,
1: आप एकदम पागल है।
0: रियली? इज इट अ कॉम्प्लीमेंट?
1: एक खूबसूरत चीज को अप्रिशिएट करने के लिए एक खूबसूरत नजर भी होनी चाहिए, और वो नजर आपके पास है मिस मित्रा।
0: थैंक यू मिस्टर ओझा, यू आर सो नाइस टू मी।
1: आपने यहाँ का खूबसूरत सोनार किला देखा, कुंवल महेंद्र की प्रेम गाथा सुनी, मांड धरती का मीठा संगीत भी सुना, अब नया तो कुछ बचा नहीं।

0: यहाँ किधर ले चलू?
1: हमको क्या मालूम, गाइड तुम है मिस्टर ओझा। नया कुछ नहीं बचा तो तुम हमको जंगल में किधर ले जा रहा है? क्या खाली पेट्रोल जलाने में तुमको मजा आता है?
0: नहीं मिस मित्रा, इस बार मैं आपको जैसलमेर के इतिहास का एक अछूत पृष्ठ दिखाना चाहता हूँ, देखना चाहेंगी?
1: ओह दैट्स लाइक ए गुड गाइड। लेकिन इतिहास का अछूता पृष्ठ और इस डेजर्ट में?
0: हाँ, ये पृष्ठ स्वाधीनता संग्राम के दिनों में सन 1940 के आसपास यहाँ एक ढाणी में लिखा गया, वो भी स्याही से नहीं शरीर के रक्त से।
1: वहाँ जरूर ले चलो मिस्टर ओझा। वो जगह क्या बोला, ढाणी?
0: ढाणी यहाँ कुएं या ताल तलैया के आसपास छोटी सी बस्ती को कहते हैं।
1: आई सी।
0: लो आ गई हमारी मंजिल।

0: ये है रहीम की ठाणी। बहुत कम लोगों को जानकारी है इसकी। आइए।
1: रहीम की ढाणी, हमने पहली बार नाम सुना। ये रहीम कौन है?
0: है नहीं, था। ये सामने है उसका स्मारक, रहीम का मजार, एक गुमनाम शहीद की समाधि, जिसने आजादी की लड़ाई में फिरंगी हुकूमत से टक्कर ली और अपने ही तरीके से देशभक्ति की एक अनूठी मिसाल कायम की। रहीम का सिर्फ एक मिशन था, अंग्रेज सरकार का खजाना या अंग्रेज परस्तों की दौलत लूटना और उसे गरीबों में बांट देना। ब्रिटिश हुकूमत के रिकॉर्ड में रहीम खां महज एक डकैत था, चलती ट्रेन में डाके डालने वाला डाकू, जेल तोड़कर भागने वाला एक खतरनाक मुजरिम।
2: आज की ताजा खबर, सेठ डकैतों का कुख्यात अपराधी रहीम का अमर कोर्ट की जेल तोड़ के फरार, उसके सर पर 1,00,000 का इनाम, ब्रिटिश हुकूमत का ऐलान। पढ़िए पढ़िए।

0: Hallo. अल्लाह
1: पीर बाबा के कदमों में
0: रहीम खां का सलाम।
2: खुदा खुश रखे।
0: आ रहीमा, तुझे तो फिरंगियों ने कैद खाने में डाल रखा था ना।
1: हाँ पीर बाबा।
0: तो क्या तू जेल तोड़कर निकल आया?
1: बड़े कमजोर सींखचे लगा रखे हैं फिरंगी ने, हाथ लगाते ही टूट गए और मैं बाहर निकल आया।
0: पगले, तू जानता भी है कुछ? जवानी के जोश में तू किसे ललकार रहा है? उस फिरंगी सरकार को जिसका सूरज कहते हैं कभी डूबता नहीं।
1: झूठ है, अफवाह है पीर बाबा। ये सूरज मगरिब से उगा है, इसलिए इसका मशरिक में डूबना तय है।
0: कैसे?
1: क्योंकि ये उजाला देने वाला नहीं, अंधेरा फैलाने वाला सूरज है। जुल्म का अंधेरा, गुलामी का अंधेरा, नाइंसाफी का अंधेरा।
0: कुछ अपने गरेबान में भी झांक रही मां। डकैती का धंधा करता है और इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलता है।
1: ऐसा मत कहिए पीर बाबा, मैं डकैत नहीं हूँ, इतना सा खादिम हूँ आपका। अच्छे बुरे की पहचान आपसे सीखी है। इन काले दिल वाले गोरों ने जोर जुल्म से हमारे मुल्क की जो दौलत अपनी अय्याशी के लिए बटोरी है, उसे छीन कर अपने भाइयों में वापस तकसीम करने का फर्ज जान पर खेल कर भी अदा करता हूँ।
0: बेटे रहीमा, इस काम में खून खराबा भी तो होता है, नेक काम के लिए भला बंदूक क्यों?
1: मैं तो एक हक परस्त सिपाही का मेहनत कश बेटा था पीर बाबा। बंदूक उठाने पर मुझे गोरे अफसर ने मजबूर कर दिया।
0: क्यों भला?
1: बाबा, आपने ये सवाल करके मेरा सख्त कुरेद दिया। मेरे वालिद ने एक सिपाही की हैसियत से सारी उम्र इस नामराज सरकार की खिदमत की, मगर जब वो बूढ़ा और बीमार होकर खटिया पर दम तोड़ रहा था, तब उसी के बड़े फिरंगी साहब ने दवा के लिए चंद पैसों की मदद मांगने पर उसे गोली से उड़ा दिया।
0: अल्लाह, ऐसी दलील हरकत! तूने जान नहीं लेनी उसकी?
1: होता तो उसे जिंदा नहीं छोड़ता पीर बाबा।
0: तो तू कहां था?
1: मैं वालिद की दवा के लिए एक साहूकार के पास बीवी के कड़े बेचने गया था। लौटा तब तक सब कुछ खत्म हो गया था, वालिद का कत्ल हो गया था और मेरी बीवी ने खुदकशी कर ली थी।
0: या मेरे खुदा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ?
1: उसी दिन मैंने वालिद की बंदूक उठाकर कसम खाई कि इन फिरंगी लुटेरों को अपने जीते जी चैन से नहीं बैठने दूंगा। बंदूक का पहला घोड़ा मैंने जलील अफसर के सीने पर दबाया और ये रास्ता पकड़ लिया।
0: मगर इस रास्ते में चैन कहाँ है बेटे? ये रास्ता तो जेल और फांसी के अलावा और कहीं नहीं ले जाता।
1: जेल से तो निकल ही आया हूँ और अब तय कर लिया है कि जीते जी दुश्मन के हाथ नहीं आना है, चाहे वो मेरे सर पर कितने ही इनामों का ऐलान कर दे।
0: तो फिर अब करेगा क्या? हुकूमत के हाथ बड़े लंबे होते हैं बेटे, तू छुपेगा कहाँ?
1: अभी तो आपकी पनाह में हूँ, जहाँ का हुक्म आप देंगे वहीं चला जाऊंगा।
0: और तेरे साथी?
1: वो भी मेरे साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे।
0: देख रही मां, यहाँ इस ठिकाने पर तो हर किस्म का आदमी आता है।
1: हाँ बाबा।
0: तेरा यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। तुम लोग मांगणियारों का भेष बनाओ और मेरा पैगाम लेकर जैसलमेर महारावल के पास चले जाओ। उनकी पनाह पुख्ता होगी और तुम वहां एकदम महफूज रहोगे।
1: जो हुक्म पीर बाबा।
0: अल्लाह।
1: बाबा
0: बोल बेटे।
1: इतना करम किया है तो चलते चलते एक और करम का वादा दे दो।
0: हाँ हाँ बोल।
1: इस हकीर बंदे का जब भी दम टूटे, आपके कदमों में टूटे, बस यही मेरा अरमान है।
0: जिंदगी और मौत तो परवरदिगार के हाथ है रहीमा। जो उसे मंजूर होगा वही होगा। जा अब आराम कर, कल सुबह कूच कर लेना आगे।
1: अच्छा बाबा, खुदा हाफिज बाबा।
2: अल्लाह हाफिज।

0: घने कमान दाता,
1: रियासत के क्या समाचार है दीवान जी?
0: सब अमन चैन है हुजूर, बस एक मामला आपकी सेवा में दरपेश करने की इजाजत चाहता हूँ।
1: पेश करो।
0: कल रात अमर सागर के रस्ते में 5 अनजान लोग मांगनियारों के भेष में पड़ाव डालकर गा बजा रहे थे।
1: कोई चोर डाकू तो नहीं है? कौन है उनका मुखिया?
0: वो अपना नाम रहीमा बताता है अंदाता, पी पगारों की चिट्ठी लेकर आया है और हुजूर के चरणों में हाजिर होकर कोई पैगाम देना चाहता है।
1: कहाँ है वो लोग?
0: पुलिस की हिरासत में अंदाता।
1: और वो चिट्ठी?
0: ये है वो चिट्ठी अंदाता।
2: महारावल जैसलमेर, आप पर अल्लाह ताला की नजरे करम हो, पीर पगारों की दुआ कबूल फरमाएं। बाज़ाब्ता अर्ज की जाती है कि चिट्ठी लाने वाला शख्स हमारा वफादार खादिम है, इस नेक बंदे को अपनी पनाह में लेने का करम फरमाएं। ये आपकी जी जान से खिदमत करेगा, बाकी पैगाम इसके मुंह से रूबरू सुनकर खातिरी कर लें। बकलम पीर पगारो।
1: रहीमा को बाइज्जत बादल विलास में हमारे रूबरू पेश किया जाए।
0: जो हुक्म अंदाता।
3: महारावल का इकबाल बुलंद हो, नाचीज की

0: जोहार कबूल फरमाए अंदाता।
1: आओ रहीमा, पीर पगारों की चिट्ठी हमें मिल गई है।
0: हुजूर की मेहरबानी है।
1: दीवान जी को सवाल पूछेंगे तुमसे, ठीक से जवाब देना।
0: जो हुक्म अंदाता।
2: हमारे पास जो खबरें हैं उनके मुताबिक अमरकोट का बाशिंदा रहीम खान एक खतरनाक डकैत है जो ब्रिटिश हुकूमत के खजाने लूटता फिरता है।
0: खबर सही है।
2: वो रहीम खान कंपनी राज का एक सजा याफ्ता मुजरिम और फरार कैदी है।
0: एकदम सच है।
2: अंग्रेज सरकार ने उसके सिर के लिए 1,00,000 रुपए के इनाम की डोली पिटवा रखी है।
0: आप बजा फरमाते।
2: क्या तुम वही रहीम खान हो?
0: खुदा झूठ न बुलवाए, ये खादिम वही रहीमा है।
1: इतने गुनाहों का बोझ लेकर हमारी रियासत में किस लिए आए हो?
0: महारावल की छत्र छाया में पनाह लेने अंदाता।
1: हमारा काम क्या डकैत और मुजरिमों को शरण देने का रह गया?
0: गुस्ताखी माफ हो अंदाता। रहीमा इंसानियत की, वतन परस्ती की राह पर चलने वाला एक नाचीज बंदा है। डकैत और मुजरिम का नाम तो उसे फिरंगियों ने दिया है जो 7 समंदर पार से यहाँ आकर हमारे मुल्क की दौलत और इज्जत पर खुलेआम डाका डाल रहे हैं। रहीमा तो सिर्फ उनसे अपने मुल्क की दौलत वापस चीन लाने का काम अंजाम देता है।
1: तुम्हारी जबान से बगावत की बू आती
2: है। वतन परस्ती अगर बगावत है अंदाता,
0: तो मैं फख्र के साथ अपना बागी होना कबूल करता हूँ।
2: किसी रजवाड़े में एक बागी को शरण देने का मतलब है ब्रिटिश राज से सीधी टक्कर लेना।
0: दीवान जी, मैं अनपढ़ आदमी हूं, सियासत नहीं समझता, मुल्क की खिदमत करना चाहता हूं और इन गोरों को यहां से बाहर खदेड़ने वाली हर जंग में हिस्सा लेना चाहता हूं। इसलिए अपने पीर बाबा के हुक्म से और महारावल की अजमत के एतबार से यहां आया हूं।
1: पूरी रियासत इस वक्त जबरदस्त अकाल की चपेट में है, खजाना तंग है, इसलिए फिलहाल हम तुम्हें महावार।
0: हमें कुछ नहीं चाहिए अंदाता, आपने जो भरोसा रखकर हमें पनाह दी है उसके बदले में मेरी खाल की जूती भी बनाकर आपको पहना सकूं तो कम है। और दीवान जी, रहीमा के जिंदा रहते अगर रियासत का खजाना तंग रह गया तो फिर रहीमा के वजूद का कोई मतलब नहीं।
1: क्या फिर कोई टाका डालोगे?
0: हाँ, फिक्र न करें अंदाता, रियासत के खजाने को मालामाल कर देना मेरा पहला फर्ज होगा। डाका सिर्फ फिरंगी तिजोरियों पर पड़ेगा, वो भी सरहद के पार, ये मेरा अहद है।
1: तो फिर ठीक है दीवान जी।
3: हुक्म।
1: रहीम खां को अपनी टोली के साथ खुफिया महकमे में खास औहदों पर लगा दो।
3: जो हुक्म अंदाता।
1: आज से इसका खुफिया नाम होगा राम सिंह।
0: कनी कनी खम्मा अंदाता, इस मेहरबानी के बदले ये रहीमा आखिरी सांस तक आपकी खिदमत करेगा और वतन की मिट्टी पर अपने खून की आखिरी बूंद तक कुर्बान कर देगा।

0: सारी डकैती बड़ी बैंक की तिजोरी लूटी, बैंक का 50 लाख की रकम लूट कर मरा, हर जगह कड़ी नाकाबंदी पड़ी है। आज की ताजा खबर कराची एक्सप्रेस ने मारी डकैती।
1: साथियों, खुदा के फजल और आप लोगों की बहादुरी से हमें फिर एक बड़ी कामयाबी मिली। आज बड़े दिनों बाद अमल में स्वाद आएगा, क्यों करीमा?
2: रहीमा, ये वक्त राग रंग का नहीं है। छापा मार को वारदात के बाद वापस अपने गुप्त ठिकाने और गुप्त बहस में लौट जाना चाहिए।
1: तो फिर बोलो, ब्रिटिश राज
3: मुर्दाबाद, भजन के दुश्मन
4: मुर्दाबाद,
3: इंकलाब
4: जिंदाबाद,
3: हिंदुस्तान
4: जिंदाबाद।
1: अब चलो, ऊंटों के पिलान कस लो और कारतूस पेटी कमर में बांध कर बंदूकें संभाल लो, हम जैसलमेर चलेंगे।

ये ऑल इंडिया रेडियो है। सिंध प्रांत से समाचार मिला है कि अमरकोट का खतरनाक डकैत और फरार कैदी रहीम खान चलती ट्रेन में 50 लाख रुपयों की डकैती के बाद रात के अंधेरे में अपने साथियों के साथ फरार होने में कामयाब हो गया। सरकार को संदेह है कि वो सिंध की सरहद को पार करके जैसलमेर के रेगिस्तान की तरफ भागा है। उसकी तलाश और गिरफ्तारी के लिए सरकार ने सिंध प्रांत के आईजी पुलिस मिस्टर हटसन की अगुवाई में

0: ऑपरेशन सर्च का ऐलान किया है।
1: गुड आफ्टरनून योर मैजेस्टी, हिज हाइनेस ऑफ जैसलमेर।
2: आइए आइए, वेलकम मिस्टर हर्सन, फरमाइए क्या खिदमत की जाए।
1: एज यू नो योर हाइनेस, हम इधर ऑन ड्यूटी आया, हमारा मिशन है ऑपरेशन सर्च, इस ऑपरेशन में हम आपका मदद मांगता।
2: बड़े शौक से मिस्टर हर्सन, आपकी मदद करके हमको खुशी होगी, आप इस ऑपरेशन की डिटेल्स बताएं तो बेहतर हो।
1: ओह यस योर हाइनेस, सिंध सुबह का रहीम खान एक ट्रेन रॉबरी के बाद फरार हो गया है। गवर्नमेंट को डाउट ही नहीं, पूरा यकीन है कि द ब्लडी एब्सकाउंडर वो भगोड़ा आपकी रियासत में कहीं छुपा है, इसलिए ये ऑपरेशन सर्च हम इधर से स्टार्ट करना मानता।
2: जरूर मिस्टर हर्सन, इस ऑपरेशन में हम आपकी पूरी मदद करेंगे।
3: राम सिंह
4: हुकुम अंदाता।
2: हर्सन साहब, ये राम सिंह हमारे खुफिया महकमे का बहुत काबिल अफसर है, रियासत के चप्पे चप्पे की बहुत अच्छी जानकारी है इसे, इसे अपने स्टाफ के साथ हम आपकी मदद के लिए बाकायदा तैनात करते हैं।
1: That's very good. Thank you, Your Highness.

0: रहीम खां का सलाम दीवान जी।
1: आओ रहीमा, कैसा रहा ऑपरेशन?
2: ऑपरेशन तो गोरी सरकार का था दीवान जी, पूरा करवा दिया।
3: सच कहता हूं दीवान जी, अंदाता का भी जवाब नहीं है।
0: क्या मीची और पोस्ता चाल खेली है, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी।
3: बस अब एक वारदात सक्कर सिंध में और करना चाहता हूं दीवान जी।
1: कैसी वारदात?
3: वहां अंग्रेजों का एक पिट्ठू है, सोने चांदी में हीरे जवाहरात में लूटता है। गरीबों से लूट लूट कर अरबों की पूंजी कमाई है उसने। बस एक झपट्टा उस पर जरूर मारना है।
1: अब थोड़े दिन आराम ही कर ले रहीमा।
3: जब तक ये गोरे लुटेरे यहाँ हुकूमत कर रहे हैं तब तक हमारे लिए आराम हराम है।
1: सिंध में चौकसी बहुत कड़ी हो गई होगी, तू क्यों अपनी जान जोखिम में डालता है?
3: यहाँ मौत का डर किसको है, जोखिम से खेलना ही तो अपना शौक रहा है दीवान जी। आज रात हमारी टोली निकल जाएगी, आप तो परसों तक लूट का माल जाब्ते में दाखिल खजाना करने की तैयारी रखवाना।
1: जैसी तेरी मर्जी रहीमा।
0: अच्छा, अलविदा।
1: अलविदा, ईश्वर तुझे सफलता दे।
4: ये ऑल इंडिया रेडियो है। सिंध सूबे से एक भारी डकैती के समाचार मिले हैं। रहीम खान ने कल रात सखर के एक नामी सेठ की कोठी पर संगीन डाका डाला। वारदात की खबर मिलते ही पुलिस ने कोठी को घेर लिया और गोलीबारी की, जिसमें कई सिपाही मारे गए। रहीम खान को भी गोलियां लगी, लेकिन वो घायल हालत में भी अपने साथियों की मदद से पुलिस को चकमा दे गया। लूट का ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है और पूरे सिंध में रेड अलर्ट कर दिया गया है।

0: 你。感谢特别。
1: Mighty Kokarima Malka,
0: वो ठीक ठिकाने पहुंच चुका होगा। अब्दुल जुम्मन और पंडित अलग अलग रास्तों से महल लेकर जैसलमेर गए हैं।
1: अब कोई फिक्र नहीं। जरा ये पट्टा खोल दे।
0: तुम्हारी हालत ठीक नहीं है रही भाई। सारे कपड़े खून में तर है।

0: इस मिट्टी से ये जिस्म बना है, ये खून उसी की अमानत है। बहने दे इसे।
1: जिद मत करो रहीम भाई, तुम्हें अभी बहुत जीना है। वतन की खातिर, हमारी खातिर तुम्हें फौरन अस्पताल पहुंचाना बहुत जरूरी है।
0: कौन सा अस्पताल?
1: जैसलमेर लिए चलता हूँ।
0: अरे पगले, जिसने मुझे जीते जी पनाह दी, उठा दिया उस अंधाधा को मरने के बाद मुसीबत में डाल दो। नहीं, जो अब तक राज रहा है उसे राज ही रहने दे करीमा।
1: मेरी बात मानो रही भाई, चलो मेरे साथ।
0: नहीं, अब ये ठाणी छोड़कर कहीं नहीं जाना। मेरा जिस्म रेगिस्तान की इस मिट्टी में मिल जाने से करीमा।
1: ऐसा मत बोलो रही भाई, ऐसा मत बोलो।
0: रो मत करीमा, इधर देख पगले, मैं कितना खुश हूँ। जैसी बन सकी वतन की खिदमत की, ना कि ऐश के लिए नहीं, फर्ज के लिए डाले। जिसने पनाह दी उसका कुछ कर्ज होता है। आगे ये काम तुम लोग करना, फिरंगी रात से टक्कर लेते रहना।

0: एक तमन्ना दिल में रह जाएगी।
1: कौन सी तमन्ना रही भाई? बोलो तो।
0: पीर बाबा का दीदार, उनकी कदम बोसी।
1: चलो रही भाई, मैं ले चलता हूँ वहाँ।
2: अल्लाह,
1: या खुदा, तेरी खुदाई, पीर बाबा यहाँ।
0: पीर बाबा, आपने ज़हमत उठाई, या मेरे मौला, इस गुनहगार पर इतना करो।
2: गुनहगार नहीं है रहीमान, तूने वतन परस्ती के हक में एक वफादार सिपाही की तरह अपना खून बहाया है। अब वो दिन दूर नहीं जब इस मुल्क से ये फिरंगी राज खत्म होगा, आजादी का नया सूरज उगेगा।
0: आमीन। अलविदा बाबा।
2: रो नहीं करीमा, रहीम मरा नहीं, ये उसकी कुर्बानी है, शहादत है उसकी। शहीद को आंसुओं से विदा नहीं करते बेटे, जिस सरजमीन पर उसका खून गिरा है उसे वही बाइज्जत दफन करो। उसका मजार उसकी वतन परस्ती की याद दिलाएगा। आज से ये ढाणी रहीम की ढाणी कहलाएगी, जिस रेत के टीले उसकी कुर्बानी के सबूत बनेंगे।

0: और ये हवाएं उसकी शोहरत के नगमे दोहराएगी।
1: ये है जैसलमेर के इतिहास का वो गुमनाम पन्ना मिस मित्रा, रहीम की ढाणी, रहीम खां का ये मजार।
2: बड़ा पवित्र है ये स्मारक मिस्टर ओझा, श्रद्धा के भाव से हम इसको नमन करता है। इसका दर्शन कराने के लिए आपको धन्यवाद कैसे दिए जाए समझ में नहीं आता। आई रियली थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।
1: बस बस मिस मित्रा, एक गाइड के नाते ये मेरा फर्ज था। आइए चले।

अभी आप सुन रहे थे हरिराम आचार्य का लिखा ये नाटक रहीम की ढानी। इसका निर्देशन किया महेंद्र मोदी ने और आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: Silence! Light! Sound! Camera! Action!
1: नमस्कार दोस्तों, बॉम्बे टॉकीज में आज आप सुनने वाले हैं जानी मानी राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर सीमा कपूर से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। आज प्रस्तुत है इस बातचीत का पहला भाग।
2: बॉम्बे टॉकीज में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है जानी मानी लेखिका, निर्माता और फिल्म निर्देशक सीमा कपूर को। सीमा जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: शुक्रिया, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि विविध भारती पे एक बार फिर से मैं आई हूँ और आप लोगों से रूबरू हूँ।
2: जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आपका जन्म रंगमंच और कला से जुड़े परिवार में हुआ है। आपके पिता रंगमंच से जुड़े हुए थे और माँ उर्दू कवित्री, शायरा और शास्त्रीय संगीत की गायिका हैं। तो आपका बचपन कहाँ और कैसे बीता?
3: देखिए, हमारा बचपन जो है बहुत ही रंग बिरंगा रहा है।
2: अच्छा।
3: हम सब बहन भाइयों का।
2: दरअसल
3: मेरे जो दादाजी थे वो आर्मी में कर्नल थे। उस समय तो पार्टीशन भी नहीं हुआ था, अंग्रेजों के जमाना था उस समय। और जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं ददिहाल की साइड के, सब बड़े बड़े ओहदों पे हैं आर्मी में या बड़े बड़े वकील।
2: जी,
3: मेरे पिताजी लाहौर में पढ़े श्री मदन लाल कपूर, और न्यू कॉलेज जो बहुत ही उस समय और आज भी बहुत रेपुटेड कॉलेज है, वहां पढ़े वो। उन्हें पता नहीं क्या सूझा कि वो दिल्ली आ गए, और उन्होंने 1930 के करीब एक नाटक कंपनी, उस समय हिंदुस्तान में दो चार नाटक कंपनियां चला करती थी, पारसी थिएटर उन्हें बोला जाता था। वो उस समय सोहराब मोदी साहब का था, पृथ्वीराज जी का था और बाबूजी का, मेरे पिताजी का। तो उन्होंने वो रंगमंच ज्वाइन किया और उन्होंने एक नाटक कंपनी बनाई जिसमें 300 के करीब लोग थे, और प्रोप्राइटर मालिक बाबूजी थे मेरे पिताजी। वो कंपनी चलाना अपने आप में एक रंगमंच की सेवा जो है, लेकिन उस समय क्या था कि समाज में खासतौर से नॉर्थ इंडिया में नाटक को अच्छा नहीं समझा जाता, नाचना गाना।
2: जी,
3: तो मेरा जो ननिहाल था वो चूंकि बंगाली परिवार था, मेरे नाना नानी बंगाली थे, संगीत उन लोगों का तो रचा बसा है और उनका तो गाना सीखना बहुत जरूरी है। तो माँ मेरी क्लासिकल किराना घराने से उन्होंने गाना सीखा था, और किसी तरह संयोग से बाबूजी और माता जी की शादी हो गई। माँ मेरी बहुत छोटी थी जब शादी, उस जमाने में 13-14 साल की उम्र में हो जाया करती थी। तो इस तरह से बाबूजी को उनके परिवार ने डिसओन कर दिया, निकाल दिया एक तरह से, क्योंकि उन्होंने ऐसा प्रोफेशन चुना।

0: करना था और माँ ने लेकिन मेरे बाबूजी का साथ दिया। तो इस तरह से नाटक कंपनी में हमारी आंख खुली और आप ये सोच लीजिए कि फिर वो हमारे रंगमंच जो है नाटक कला हर विधा की, क्योंकि माताजी और पिताजी दोनों ही लिटरेचर पोएट्री इसमें दखल रखते थे। बाद में हमें मालूम पड़ा कि हमने बचपन में इंटरनेशनल साहित्य पढ़ा है, इंडियन साहित्य तो पढ़ा ही, भारतीय साहित्य तो सारा पढ़ा, चाहे वो शरद चंद हो, बंकिम चंद हो, रविन्द्रनाथ टैगोर हो, प्रेमचंद हो, जितने भी है, रेणु हो, और हमने बाहर का भी जो साहित्य है, टॉलस्टॉय, दोस्तोवस्की, ये सारी चीजें, बाबूजी अंग्रेजी वाले थे, मम्मी उर्दू और हिंदी वाली थी, तो हमें विरासत में ये कला और संगीत रंगमंच वो हमारे खून में है। और सच पूछे तो अगर हमें कहा जाए कि आप कुछ ये नहीं करना है जो कला क्षेत्र से आप हट जाए तो शायद हम लोग भूखे मर जाए, हमें कुछ नहीं आता हो।
1: जी जी जी, उसी में रचे बसे हैं और उसी में पूरा जीवन हमने लगाया है।
0: जी
1: तो सीमा जी, हम आपसे और भी बात करेंगे आपकी जिंदगी के पहलुओं पर। कोई गीत आपकी पसंद का पहले सुन ले।
0: जी बिल्कुल, संगीत तो आप जानती हैं हमारे रक्त में मिला हुआ है। फिल्म है आरती,
1: जी
0: रोशन साहब का म्यूजिक है और उसमें गाना था आपने याद दिलाया तो मुझे
1: याद आया। क्या बात है, क्या बात है, आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।
0: जी।

0: सीमा जी, निर्देशक और नाटककार रंजीत कपूर की बात अगर हम करें, अनु कपूर साहब की बात करें और निखिल कपूर की आप बहन हैं और जाने माने अभिनेता ओमपुरी साहब से आपने विवाह किया, इन सब चीजों को, इन सब बातों को आप कैसे देखती हैं?
1: छोटा सा प्रश्न आपने पूछा है लेकिन वो पूरा जीवन उसमें समेटा हुआ है मेरा। मेरे भाई जो है तीनों अपनी अपनी विधा में लेकिन कला क्षेत्र में ही है। सबसे छोटा जो ब्रदर है वो बहुत अच्छा शायर है, उसने कई फिल्मों में गाने लिखे हैं। मेरी हर सीरियल का टाइटल सॉन्ग वो ही लिखता है और हर सीरियल और फिल्म का टाइटल वो ही रखता है। और अनु भाई एक्टर हैं, आप जानते ही हैं। रंजीत भाई जो है वो निर्देशक हैं, राइटर हैं। तो सब अपनी अपनी जगह बादशाह हैं अपने अपने फील्ड में
0: जी।
1: और जब आप ऐसे लोगों से घिरे होते हैं तो आप एनरिच होते चले जाते हैं। अच्छा, हम बहन भाइयों का करियर तकरीबन एक साथ ही शुरू हुआ। ऐसा नहीं था कि कोई आगे है कोई पीछे है, ऐसे सब साथ ही चल रहे थे, साथ ही संघर्ष कर रहे थे और अपने अपने क्षेत्र में, क्योंकि कोई भी क्षेत्र किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन उसके बावजूद कला से जुड़ा हुआ है।
0: जी जी।
1: तो इसलिए हम लोग अपने अपने रास्तों पे, जो कंटकीर्ण रास्ते थे उनपे चलते हुए हम लोग यहाँ तक पहुंचे।
0: तो कभी भाई बहनों में कोई कंपटीशन रहता होगा?
1: कंपटीशन शब्द मैं नहीं इस्तेमाल करूंगी, एक अंग्रेजी में शब्द है जिसे हिंदी में प्रतिस्पर्धा बोलते हैं। ईर्ष्या के बिना आप एनवी करते हैं, आप किसी से ये कहते हैं कि आपको इतना ज्यादा क्यों आता है, है ना, मन में ये सवाल होता है। और मुझे हमेशा मेरे जो जितने भी मैं अपने दुश्मन मानती हूँ ना, वो बहुत ऊंचे, क्योंकि कहते हैं ना जिंदगी में दुश्मन भी बनाओ तो बहुत बड़ा बनाओ वरना आपको उसके बराबर होना पड़ता है। तो मेरा कंपटीशन हमेशा दुनिया के महान डायरेक्टर से है, दुनिया के महान राइटर से। कंपटीशन से मतलब प्रेरणा।
0: जी जी।
1: आपको वहां जाना है, इतनी ऊंचाई पे जाना है, तो भाइयों से भी वही रहा है कि इनको इतना ज्यादा आ रहा है मुझे क्यों नहीं। तो उसके बाद ना आपको एक फोर्स मिलती है कि आप और ज्यादा पढ़ें।
0: बिल्कुल, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन
1: जी,
0: हमेशा।
1: जी जी।
0: तो ओमपुरी साहब भी आपकी जिंदगी में आए, आपने उनसे विवाह किया, किन शब्दों में आप अपनी बात रखना चाहेंगी?
1: देखिए, 11 साल हमारा अफेयर चला और तब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ रही थी और तब पुरी साहब स्ट्रगल कर रहे थे। और उसके बाद जब 11 साल के बाद हमने डिसाइड किया शादी करना, तब उनको थोड़ा थोड़ा काम मिलना शुरू हुआ था। तो शादी हुई। पुरी साहब एक ऐसे कलाकार हैं जो, अगर मैं अपने लोगों की तारीफ अपने मुंह से करना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन दुनिया के इन्हें गिने जो कलाकार होते हैं, मैं पुरी साहब को उनमें रखती हूँ। इसलिए नहीं कि मेरा उनसे प्रेम है, मेरी शादी हुई थी या जो भी, लेकिन ना बिल्कुल निष्पक्ष रूप से मैं देखती हूँ, क्योंकि देखिए जिस कलाकार की नकल की जा सके वो स्टार हो सकता है, वो कलाकार नहीं हो सकता।
0: जी।
1: पुरी साहब की आप डायलॉग डिलीवरी की, उनके आप किसी भी चीज की नकल नहीं कर सकते, है ना। तो वो हर कैरेक्टर में ढल जाते थे और मैंने उनका एक जो बहुत ही सशक्त पक्ष देखा है वो ये देखा है कि छोटा सा, मैं एक सीरियल बना रही थी तो उन्होंने कहा अरे ये रोल मैं करता हूँ, खुद कह के। मैंने कहा पुरी साहब आप इतनी बड़ी बड़ी फिल्में करते हैं, इतने महान मतलब नाम है आपका इंटरनेशनल लेवल पे, ये आप क्यों? नहीं नहीं सीमा, छुट्टी है, मैं करूंगा। मैं, वो बैठ नहीं सकते थे।
0: हाँ।
1: उनकी प्रॉब्लम थी कि उनको काम
0: फ्री नहीं
1: बैठा। हाँ, फ्री नहीं बैठा। तो मैं ऐसे काम करते हुए गई तो वो बैठे हुए नोट्स बना रहे थे। मैंने कहा क्या, कौन सी स्क्रिप्ट है, कौन से? बोले नहीं तुम्हारा वो करना। मैंने कहा इतनी छोटी सी सीरियल का एक छोटे से उसमें भी आप नोट्स बना रहे, तो आप देखिए डेडिकेशन काम के प्रति के, इतना आपने जिंदगी हो गई है आपके, 40 साल हो गए हैं काम को करते हुए, जिसमें आपने इंटरनेशनल अवार्ड ले लिए हैं, नेशनल अवार्ड ले लिए हैं, इसके बावजूद छोटा सा काम है लेकिन उसके नोट्स बना रहे हैं, उसको अंडरलाइन कर रहे हैं और उस पे आप डिस्कस कर रहे हैं कि सीमा मैं ऐसे करूं, मैं ये पहन लूं या वो कर लूं, इसको, इस कैरेक्टर को ऐसे बना लूं। तो आपको ये सीखने को मिलता है, जैसे लता जी वगैरह को भी मैंने देखा है
0: जी,
1: कोई भी काम जब वो करते हैं तो वो अपने आप को तिफले मकतब समझते हैं कि मैं अभी पहली क्लास में हूं, और यही उनके जो विनम्र

0: ओमपुरी साहब के अभिनय के बारे में तो हम आपसे क्या कहें, मतलब उनकी आवाज, उनकी अभिनय प्रतिभा, उनका चेहरा हर बात पर मतलब संवाद बोलता था, उनका चेहरा, उनकी आंखें, जो उनके जज्बात फीलिंग वो पर्दे पर साकार हो जाती थी। आपको उनकी कौन सी फिल्में पसंद थी?
1: मुझे परफॉर्मेंस वाइज तो देखिए वो सब में बहुत न्याय करते थे अपने किरदार के साथ, लेकिन एक सौभाग्य मैं कहूंगी कि हरियाणा फिल्म फेस्टिवल था यमुनानगर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, मेरी फिल्म हार्ट द वीकली बाजार थी, रंजीत भाई की फिल्म चिंटू जी थी और पुरी साहब की फिल्मों का सिंहावलोकन था, रिट्रोस्पेक्टिव था, तो उसमें हम तीनों ही वहां थे। तो मैं पुरी साहब की एक फिल्म मैंने नहीं देखी थी, तो मैंने कहा कि चलिए मैं देखूंगी आज आपकी ये फिल्म। बाकी फिल्में देखी थी, वो थी माय सन द फैनेटिक, अंग्रेजी फिल्म थी। तो मैं जब वो फिल्म देखी, यकीन मानिए मैं एक तो जारो कतार रो रही थी, और मैंने ना जैसे ही फिल्म खत्म हुई है ना, मैंने उनके पैर छू लिए। मैंने कहा क्या ऐसा लग नहीं रहा था कि ये पुरी साहब है, मैं वो किरदार को देख रही थी। मतलब मैं आपको शायद शब्दों में ना समझा पाऊं कि वो परफॉर्मेंस जो थी ना उनकी, वो दुनिया से बाहर की परफॉर्मेंस थी।
0: जी, जी,
1: तो वो फिल्म मेरे लिए सबसे उनकी महत्वपूर्ण है।
0: इसके अलावा उनकी बहुत सारी फिल्में आपने देखी भी होंगी।
1: सारी फिल्में तकरीबन देखी हैं।
0: हाँ,
1: अब देखिए ना उनके फ्लेवर देखिए आप, एक तरफ अर्धसत्य करते

0: आक्रोश करते हैं, गूंगे का रोल है, आंखों से बोलते हैं, है ना, और एक तरफ चाची 420 करते हैं, है ना, माला माल वीकली करते हैं, और सीरियसली आपको सीरियस रह के आपको हंसाते हैं, उसमें कहीं बफूनरी की जरूरत ही नहीं है कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बिल्कुल सीरियसली। तो उनका रेंज आप, क्योंकि देखिए रुलाना बहुत आसान है, हंसाना बहुत मुश्किल है, तो वो कलाकार थे, मतलब अल्टीमेट कहूंगी इनको मैं,
1: और इंटरनेशनल जी लेवल के कलाकार, उनकी मतलब कोई फिल्म ऐसी नहीं है जिस पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ हम उनके अभिनय से प्रभावित नहीं हुए।
0: फिल्म कमजोर हो सकती है, फिल्म की स्क्रिप्ट कमजोर हो सकती है, फिल्म का डायरेक्शन कमजोर हो सकता है, लेकिन वो उनको जितना किरदार दिया गया वो कमजोर नहीं है।
1: बिल्कुल, आपको संगीत में भी बहुत रुचि रही है ना, और आपकी चूंकि माताजी स्वयं क्लासिकल सिंगर रही हैं, तो आपके खून में भी सिंगिंग रही होगी, तो किस रूप में आप देखती हैं संगीत को?
0: अगर आप इंडियन संगीत की बात करते हैं, भारतीय क्लासिकल संगीत की बात करते हैं और वेस्टर्न क्लासिकल की बात करते हैं, तो मुझे दो चीजें हैं। वेस्टर्न क्लासिकल जब मैं सुनती हूँ तो मुझे ह्यूमन इमोशंस दिखाई देते हैं, इंसान के जो जितने भाव हैं उसके जितने भी भावनाएं वो दिखाई देती हैं, और जब आप इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सुनते हैं तो आपको कुछ नहीं दिखाई देता है, आपको दिव्य रोशनी दिखाई देती है। तो दो चीजों का ये मेरे लिए दिव्यता जो है वो म्यूजिक है।
1: जी,
0: मैंने भी सीखा है नसीर अहमद खान साहब से दिल्ली में, तो मैं सीखती थी, लेकिन जैसे बोल रही हूं ना कि म्यूजिक मेरे लिए डिवाइन है, दिव्य है, उसको मैं प्रोफेशन नहीं बना सकती, उससे कमाई नहीं कर सकती, इसलिए मैंने अभिनय और म्यूजिक को कभी प्रोफेशन नहीं बनाया, वो मेरे लिए आत्मा की चीज है, उसको सुनती हूँ।
1: तो अगर हम आपसे कुछ गुनगुनाने को कहें तो आप कुछ पसंद करेंगी गुनगुनाना?
0: गुनगुनो
1: ये तो आपने क्योंकि यहाँ वो प्रोफेशन से नहीं जुड़ा है
0: एक लाइन गुनगुनाती हूँ
1: जी।
0: मेरी माता जी गाया करती थी ये गाना, बचपन में सुना था, लता जी का है,

0: वाह, बहुत सुंदर। तो सीमा जी, चूंकि आपके जीवन में रंगमंच और कला शुरू से थी ही, तो आपके जीवन में लेखन और थिएटर की शुरुआत कब से हुई, कैसे हुई, और आपने लिखना कब शुरू किया?
1: मैं जब 15-16 साल की थी तो मैं छुप के कविताएं लिखती थी
0: अच्छा, छुपकर
1: जी।
0: क्यों?
1: छुप कर ये कि मुझे, देखिए ना, माँ इतनी बड़ी शायरा थी और वो मुशायरों में जाती थी। उन मुशायरों में साहिर लुधियानवी, कैफी आजमी, मजरूह सुल्तानपुरी, फिराक गोरखपुरी जैसे बड़े बड़े शायरों के बीच, और माँ जिस तरह की शायरी करती थी, उनके आगे हम कुछ नहीं। और मैंने तो फ्री वर्स में अतुकांत लिखना शुरू किया था, तो इसलिए मुझे लगता था कि तो बड़ी बेकार सी चीजें हैं, लेकिन मन में उद्गार आते थे तो उसको कागज पर उतार लेती थी। तब से शुरू किया मैंने।
0: जी। तो सबसे पहले क्या लिखा, आपको याद है कि जब लेखन की शुरुआत हुई होगी तो सबसे
1: जी
0: पहला क्या लिखा
1: सब
0: गया होगा?
1: ऐसे एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकती हूँ कि पहला कौन सी रचना थी, लेकिन वही 15-16 साल की उम्र में मैंने अपने माता पिता पे एक 4 लाइनें लिखी थी। तुम अपने आंचल पर एक घनेरी छांव काढ़ दो, ताकि मई जून की तपती गर्मी में, भूख और प्यास से बेहाल, जब मैं उस छांव का आश्रय पा सकूं, तो मुझे लगे भूले भटके प्यासे राही का पड़ाव यहीं तक, बस
0: क्या
1: यहीं तक।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सीमा जी, बातचीत का ये सिलसिला तो चलता रहेगा, आपकी पसंद का ये गीत सुन लिया जाए।
1: जी बिल्कुल।

0: एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि 1988 से आपके टीवी धारावाहिक शुरू हुए और साथ ही आपने सरकारी मंत्रालयों के लिए भी डॉक्यूमेंट्रीज लिखी काफी, इन सभी पर थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं।
1: जी, कॉलेज से मैं निकलने के बाद पढ़ी रही थी, उन दिनों अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ती थी। और कहते हैं ना, जहां जहां पड़े पग संतन के वहीं वहीं भंटा ढाल। तो जैसे ही मैंने अलीगढ़ में एडमिशन लिया, उन दिनों राइट्स बहुत होने लगे, फसाद, तो हमें भागना पड़ता था वापस। तो वो 3 साल का 4 साल में हो गया बीए, तो उस बीच मुझे दिल्ली आना पड़ता था क्योंकि अलीगढ़ से दिल्ली पास था, तो मैं दिल्ली आ जाती थी। इसलिए मैंने 83 में सबसे पहले पपेट थिएटर ज्वाइन किया
0: जी
1: दिल्ली में।
0: जी,
1: तो वो इंटरनेशनल लेवल का था, जो हमारे ट्रेडिशनल पपेट्स होते वैसा नहीं था, मॉडर्न पपेट्री हम करते थे और इंडिया

0: और दूरदर्शन में वो सीरियल हो गई किले का रहस्य
1: जी।
0: और चूंकि नौसिखिया थे इस फील्ड में आता नहीं था ज्यादा, तो काफी पैसे का भी लॉस हुआ सब हुआ, लेकिन ठोकर खा खा के सीख लिया, तब से ये यात्रा है शुरू। जब दूसरे प्राइवेट चैनल्स आ गए तो उनपे भी लिखना और डायरेक्शन कर ही रहे थे, प्रोडक्शन भी कर रहे थे, तो वो सिलसिला चलता रहा।
1: और सरकारी मंत्रालयों से जुड़ने के लिए फिर
0: जी कई मैंने बनाई है डॉक्यूमेंट्रीज, जैसे अभी आपसे जिक्र कर रही थी महानदी के किनारे, तो छत्तीसगढ़ की लाइफ लाइन है महानदी, नदी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो महानदी जब मैं बना रही थी तो अच्छा बजट था उसका, तब तक लता जी ने संन्यास ले लिया था
1: जी
0: गाने से
1: जी,
0: तो तब मुझे अवसर मिला कि मैं उन तक जा पाऊं। उससे पहले फिल्म नहीं बनाई थी मैंने कोई, तो मैं नहीं जा पाई थी, तो मैंने हृदयनाथ मंगेशकर जी जो उनके छोटे भाई हैं बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उनसे मैंने संपर्क किया और नीरज जी गोपाल दास नीरज उनसे गीत लिखवाया महानदी पे, और हृदयनाथ जी से मैंने कहा कि मुझे लता जी से गवाना है गाना, और मैं सौभाग्यशाली हूं कि उन्होंने हाँ भी किया और मेरी डॉक्यूमेंट्री के लिए उन्होंने गाए। तो डॉक्यूमेंट्रीज तो मैंने बहुत बनाई हैं और एड
1: इन सब के लिए आपने बहुत ज्यादा काम किया है मुझे लगता है, जिस पर अगर हम चर्चा करने चले तो शायद हमें कई अंकों में ही कार्यक्रम समेटना पड़ेगा। लेकिन आपको क्या लगता है सबसे अच्छी डॉक्यूमेंट्री आपकी नजर में कौन सी ऐसी बन पाई जिसे आप याद करती हैं?
0: महानदी।
1: महानदी
0: क्योंकि आप एक नदी की कहानी कह रहे हैं, उसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए, और महानदी के किनारे जितनी सिविलाइजेशन हुई, बुद्ध आए उस दौरान वहां पर, और भगवान श्री राम, श्रृंगी ऋषि, और ये सब चीजों पे करते हुए आप एक्चुअली उस दौर में पहुंच जाते हैं। शूट जब कर रहे होते कि आप जिस धरती पे खड़े हैं वहां पे ये महान आत्माएं आके और चली गई हैं, तो आप अपने आप को ना कण समझते हैं कि मिट्टी का कण भी ज्यादा बड़ा है आपसे, और आप भाग्यशाली समझते हैं।
1: बहुत सुंदर। तो चलिए अब एक सुंदर सा गीत सुन लेते हैं
0: जी। मेरी

हंसते खेलते गुजरे जिंदगानी।

तू क्यों जागे, शादी क्या है बात। वो जंगल के राजा आजा सो जा, हो गई रात। मीठे मीठे सपने

0: प्रतिमा जी, जब आप ये लिखती हैं, जब कोई किरदार गढ़ती हैं, किसी विषय को उठाती हैं, लेखन करती हैं, तो आपकी कहानियों में आपकी किरदारों को लिखते समय पटकथा में किन बातों का आप ख्याल रखती हैं? जैसे अभी आपने महानदी का जिक्र किया, तो उस समय की पूरे इतिहास को समेटना कोई आसान काम नहीं होता है। किस तरह से पूरी चीजों को समेट कर इतने खूबसूरत तरीके से आप पेश करती हैं?
1: जी देखिए, क्या है, हर विषय का कालखंड और वो अलग होता है। तो ऐतिहासिक जो विषय होते, जैसे अभी अवंतिका बनाई, तो वो पूरा इतिहास को लेके बनाया। लेकिन वही जब आप फिल्म बना रहे होते मिस्टर कबाड़ी, तो वो आज की है। इसमें किरदारों को जो उठाने का आपने प्रश्न किया है, ये बहुत अच्छा और सार्थक प्रश्न है। हम लोग बहुत भाग्यशाली रहे हैं कि हम थिएटर कंपनियों में, छोटे छोटे गांवों में, हमारी थिएटर कंपनी दो दो मूविंग थिएटर कंपनी थी, दो दो महीने एक एक गांव में रहते थे। तो हम एक एक गांव में और शहरों में, कस्बों में हम लोग बहुत रहे हैं। अगर मैं आपको गिनाना चाहूं तो जितने साल मेरी उम्र है उसके कम से कम 5 गुना ज्यादा कस्बे हम लोगों ने बदले हैं। तो जब हम अलग अलग जगह रहते हैं, अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, हम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोगों से लेके अपर क्लास के लोगों तक, कलाकार से लेके बिल्कुल मजदूर वर्ग के लोगों तक, जब आप उनसे बातचीत करते हैं, और अगर आप ऑब्जर्वेंट हैं, अगर आप थोड़े से प्रज्ञावान हैं और आप चाहते हैं कि कुछ बनना है आपको, तो आप उन किरदारों को जिंदगी में आत्मसात करते हैं। फिर जब आप लिखने बैठते हैं तो पता नहीं कहाँ से कोई एक ठेले वाला है ना, कोई एक अचार बेचने वाला, कोई एक है ना, वो किरदार आते चले जाते हैं, वो जीवंत हो जाते हैं लिखने के जरिए और आपके सेलुलॉइड के जरिए।
0: तो आपकी रचनाओं में जो आपकी किरदार है वो बहुत जीवंत है। आप किसी भी सीरियल को उठाकर देख लीजिए, डॉक्यूमेंट्री फिल्म को देख लीजिए, तो ये सब क्या आपके स्वयं के जीवन से जुड़े हुए कोई पहलू है? या जैसा कि अभी आपने कहा कि इतनी सारी जगह में रही हूँ, आसपास की घटनाओं से, लोगों से प्रेरित ज्यादा रहे?
1: बहुत ज्यादा। आपके कलाकार जो भी पात्र हैं वो आपके आसपास ही होते हैं। उनको फिर आप एक कैरेक्टर दे देते हैं, उस कहानी में ढाल लेते हैं। जैसे उदाहरण दूं मैं आपको, शोले फिल्म सबको समझ में आएगी कि शोले में आप जगदीप जी को देखते हैं कि वो ताल पे बैठे हैं। अब जब आप ताल पे बैठने वाले इंसान का कैरेक्टर आप गढ़ रहे हैं, तो आपको भाषा भी उसकी वैसे ही लेनी पड़ेगी, बिना कि वो जमींदार साहब की भाषा अलग होगी, उसकी भाषा अलग हुई, उसका नाम अलग होगा, है ना। गायत्री देवी आप नाम अगर है तो वो थोड़ी सी रॉयल फैमिली से ही होंगी
0: जी,
1: लाजवंती होंगी तो वो कुछ और होगी, लीलाबाई होंगी तो वो, है ना।
0: बिल्कुल सही कहा। तो यानी कि हर किरदार को जब हम जीते हैं तो उसी के अनुरूप उसके बैकग्राउंड को भी महसूस करते हैं कि वो किस बैकग्राउंड से है
1: जी।
0: आपके जीवन में कौन सा ऐसा किरदार है जिसने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया अब तक?
1: मेरी फिल्म हार्ट द वीकली बाजार एक प्रथा पे है, मध्य प्रदेश, मालवा और राजस्थान में एक प्रथा है, अभी भी थोड़ा बहुत चलन है तो काफी कम हो गई है, कि पति अपनी पत्नी को बेच सकता है, नाता बैठना बोलते हैं। तो वो किरदार कैसे गढ़ा, जब मैं पुरी साहब से बिछड़ गई थी बीच में, तो मैं झालावाड़ गई, झालावाड़ राजस्थान में, जहाँ माताजी पढ़ाती थी, उर्दू टीचर थी, वहां पर कहीं और जब ठिकाना नहीं होता है ना भावनाओं का, तो माँ ही याद आती है। माँ की गोद ही ऐसी जगह है जहाँ आप भूल जाते हैं, क्योंकि आप 9 महीने उसके पेट में रहे हैं, उसी से सांस ली है, उसी से खाया है, उसी से पिया है, तो आप निश्चिंत थे। वो 9 महीने आप तो निश्चिंत थे, न चिंता थी आपको सांस कैसे लूं और खाना कैसे खाऊं। तो उस समय जब मैं जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी, भावनात्मक रूप से, सोशली, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, तो मैं माँ के पास चली गई। जब मैं वहां गई तो हमारे यहाँ एक बाई काम करती थी, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, शारदा नाम मैंने रखा है उसका। तो शारदा एक दिन मुझसे बोली, वो 300 रुपया महीना उसकी उस समय तनख्वाह थी, झाड़ू पोछे के, तो मुझसे बोली कि भाई साहब मुझे 5,000 रुपये उधार दे सकती है? तो मैंने कहा, तुम्हारी 300 रुपये तनख्वाह में तुम घर चलाती हो, दो और घर होंगे ज्यादा, 600-700 रुपये में घर चलाती थी वो, 5,000 रुपये पहली बात तो ऐसा क्या संकट आ गया, दूसरा कैसे चुकाओगी 5,000। उस समय ऐसे है कि कोई भाई मुझसे 5 लाख रुपए आज मांग, तो कह लेंगे नहीं मुझे ना नाते की झगड़े की रकम भरनी है वरना मुझे बेच दिया जाएगा। तो मैं तो इस मामले में बिल्कुल ही वो थी, मैंने कहा बेच दिया जाएगा मतलब मैं समझी नहीं। तो उसने मुझे बताया कि पंचायत से मेरे आदमी ने खा, पंचायत टाइप होती, मैं अब उसके साथ नहीं रहना चाहती, वो बेच रहा है मुझे, दूसरे के नाते बिठा रहा है, तो मैं नहीं जाना चाहती हूँ, तो मुझे 5,000 रुपए देने। मैंने वो तो 5,000 दे दिए, उसको तो भगवान ने बचाया, मैं तो एक बहाना थी,
0: माध्यम बनी।
1: लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज आई कि हम इतने सक्षम नहीं है कि हजारों लाखों शारदाओं को बचा सके, तो फिर वो कैरेक्टर मेरी स्क्रिप्ट बन गया
0: जी,
1: और इसलिए मैंने हार्ट फिल्म लिखी।
0: जी जी, एक ज्वलंत विषय है ये जिस पर आपने अपनी फिल्म में विषय उठाया, उस पर भी हम बात करेंगे। पहले गीत सुन लेते हैं आपकी पसंद का।
1: शंकर जयकिशन की फिल्म है प्रोफेसर, आवाज देकर
0: हमें तुम बुलाओ। क्या बात है, बहुत सुंदर गाना है ये, आइए सुनते हैं इसकी।
1: जी हाँ।

0: सीमा जी, बात चल रही है आपकी जिंदगी पर, आपके लेखन पर, आपके निर्देशन पर। हम आते हैं लेखन के साथ साथ आपके निर्देशन पर भी। लेखक जब लिखता है तो बहुत सारे किरदार उसके आसपास होते हैं। जब एक लेखक से आप निर्देशक की दुनिया में कदम रखते हैं तो फिर वो किरदार आपके सामने होते हैं जिन्हें आपको जीवंत करना होता है। तो निर्देशक बनने की जो यात्रा थी वो कैसे शुरू हुई और ये यात्रा कैसी रही?
1: देखिए, जब राइटर लिखता है तो उसकी लेखनी ना बहुत, जैसे बोलना चाहिए, हंसी में बता रही है, छलांगे मारती है, ये भी लिख दो, वो भी लिख दो, ये लिख दो। लेकिन जैसे ही आप निर्देशन में लाते हैं उस स्क्रिप्ट को, तो आपकी लिमिटेशन हो जाती है। आपको किरदार सामने खड़े होते हैं, उनको कितनी दूरी पे जाना है, कैमरा कैसे करना है, वो सिमट जाता है, है ना? आपका जो कैनवास है वो सिमट के फिल्म का पर्दे जितना हो जाता है। राइटर का तो कैनवास आकाश है
0: जी।
1: लेकिन निर्देशन में एक चीज है कि सृजन का जो राइटर और निर्देशक का जो एक मजा है लिखने का और उसको बनाने का, क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अभी तो शब्द है कागज पे, अब इसको कलाकारों के साथ, पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं, निर्देशन में जाना चाहते हैं। और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह। तो ये यात्रा दुरू होती है, मुश्किल होती है, क्योंकि डायरेक्टर को बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। उसको म्यूजिक का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको कैमरे एंगल का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको लेंसेज का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको एक्टिंग का भी ज्ञान होना चाहिए कि वो परफॉर्मेंस कैसे ले।
0: बिल्कुल,
1: तो मुश्किल काम होता है लेकिन मजा आता है।
0: जैसे आपने कहा कि उसे हर एंगल का ज्ञान होना चाहिए, इसके पीछे क्या पहले आपने कुछ कोर्स किए या आप किसी के अंडर में रही? इतना एक वाइड जिसे एंगल देखने के लिए क्या एक निर्देशक की तैयारी होती है?
1: देखिए, क्या हुआ कि पपेट थिएटर से निकलने के बाद सबसे बड़ा मसला था सर्वाइवल का, कि आप रोजी रोटी, दिल्ली में रहना है और मकान का किराया भी देना है, खाना भी खाना है, रहना भी है, और इतने सक्षम नहीं थे कि माता पिता भेज सकें, और आप 3 साल का, 4 साल का FTII में जाके कोर्स कर सकें। तो जो भी सीखा जिंदगी से सीखा, ना तो किसी के अंडर में मैं असिस्टेंट रही, ठोकरे खा खा के सीखा, लेकिन सीखा, खुद से ही सीखा, और अभी भी सीख ही रहे हैं,
0: हर पल हम सीखते
1: जी, जी।
0: तो जीवन के संघर्ष को कैसे देखती हैं आप?
1: बहुत संघर्ष रहा है। जीना जो है ना, वो अपने आप में ही एक संघर्ष है। तब से शुरू हो जाता है जब हम कंसीव होते हैं, जब हमारा, है ना, तब से ही संघर्ष शुरू हो जाता है। और उसके बाद जैसे दुनिया में आते हैं तो आपका संघर्ष है, रोटी कमाने का संघर्ष है, अपने आप को स्थापित करने का, और अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में बिना समझौता किए, आपने एक प्रिंसिपल बना रखे हैं, उनसे समझौता किए बिना आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो थोड़ा सा मुश्किल रास्ते हो जाते हैं। लेकिन खुशी इस बात की है कि उन रास्तों से होके हम गुजर गए। समय लगता है, थोड़ा लंबा होता है।
0: तो आप जिस दुनिया में हैं, चाहे थिएटर की दुनिया से वो शुरुआत हुई और ग्लैमर वर्ल्ड तक आप पहुंची, आज भी आप वहां स्टैब्लिश हैं, आप बराबर काम कर रही हैं, तो थिएटर की दुनिया से लेकर ग्लैमर की दुनिया में जितनी भी महिलाएं हैं, या आप खुद एक महिला के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम कर रही हैं, क्या संघर्ष होते हैं वहां महिला को अपने आप को स्थापित करने के और बने रहने के?
1: महिला होना ही अपने आप में एक संघर्ष है।

0: हम बहुत सारी गुलामियों को तोड़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारी गुलामियों। एक जमाने में प्राचीन काल में तो स्त्री बहुत स्वतंत्र थी
1: जी।
0: फिर धीरे धीरे धीरे धीरे जैसे ही आते गए ताताई आते गए तो स्त्रियों को सुरक्षा के लिए उसको पीछे कर दिया गया और वो फिर हमारी मानसिकता बन गई। आज भी मैं देखती हूँ मेरा जो संघर्ष रहा है वो शायद मैं बहुत फॉर्चुनेट सौभाग्यशाली रही हूँ कि मुझे किसी ने उस तरह से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश नहीं की। या फिर मेरा प्रोफेशन ऐसा था जिसमें कोई चांस नहीं था कि एक्सप्लॉइट, या मेरा अपना व्यक्तित्व ऐसा रहा होगा कि थोड़ा डरते भी थे लोग क्योंकि मैं मुंह फट थी, थोड़ा सा इस मामले में बोल देती थी, आउटस्पोकन थी कि भाई ऐसा है कि अगर ऐसी बात है तो आप रखिए अपने पास, मुझे नहीं चाहिए काम। लेकिन और लोग इतनी सौभाग्यशाली नहीं होते हैं, मजबूर कर दिया जाता है उनको, या तो वो उस फील्ड को छोड़ देती हैं या फिर कहीं सरेंडर कर देती हैं। तो ये तो स्त्री के साथ चलता ही रहा है। और दूसरा एक और मानसिकता है समाज में कि अगर कोई स्त्री सक्सेसफुल हो गई है तो जरूर किसी ना किसी तरह के समझौते करके ही ऊपर आई है
1: जी।
0: ये एक अजीब सी मानसिकता है। उसमें मुझे एक सवाल हमेशा लोगों से ये खड़ा होता है कि भाई तुम सिर्फ समझौते देखते हो, चाहे लता जी हो, आशा जी हो, हेमा मालिनी हो, मतलब किसी मधुबाला हो, मीना कुमारी हो, या आप लेखिकाएं हो
1: जी,
0: उन सबके ऊपर ये लांछन लगते आए हैं। आप उनका टैलेंट नहीं देख रहे,
1: उनकी मेहनत
0: और उनकी प्रतिभा। आप कोई दूसरी लता मंगेशकर बता दीजिए ना, तो क्या वो कॉम्प्रोमाइज से हो सकता है क्या? नहीं। जब तक आपके अंदर प्रतिभा नहीं होगी, जब तक आपके अंदर एक डेडिकेशन नहीं होगा अपने प्रोफेशन को लेके, तब तक आप सक्सेसफुल हो नहीं सकते। वरना तो ऐरा गैरा नतू खैरा कोई भी बन जाएगा
1: जी,
0: स्टार जी, नहीं बनते है ना
1: जी। तो कितनी महिलाएं हैं जो आज लेखिकाएं हैं या निर्देशिकाएं हैं या किसी भी प्रोफेशन में है, किसी भी कंपनी में है, किसी भी महकमे में वो काम कर रही है, वो अपनी मेहनत और मशक्कत के बाद जब किसी पद या प्रतिष्ठा पर पहुंचती हैं और उनको ये इल्जाम लगा दिए जाते हैं कि भाई होगा कहीं कुछ ना कुछ, वरना इतनी ऊंचाई पर पहुंचना एक महिला के लिए इतना आसान तो नहीं है, तो बड़ा दुख होता है। आज भी जब ये बातें कही जाती हैं तो
0: बहुत दुख होता है और दुख नहीं शर्म आती है उन लोगों की मानसिकता पे। और मुझे एक बात की और शर्मिंदगी है कि इसमें पुरुष तो है ही शामिल, स्त्रियां भी शामिल हैं ये लांछन लगाने में, तो वो बहुत गलत है। हमको हमारी मानसिकता, समाज की मानसिकता को बदलने की बहुत जरूरत है
1: जी।
0: चलिए अब एक सुंदर सा गीत सुन लेते हैं।

रुको चंचल मन, कैसे

bố mẹ tôi vẫn

गया ना ना ना ना ना ना कहना क्या तुम्हारे बिन ना ना ना ना ना रहना क्या रुको पागल बन

ये था सुप्रसिद्ध राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर सीमा कपूर से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। तकनीकी सहायक किरण बंग, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। इस बातचीत का दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन।

0: जी कल चल गए अपना बॉम्बे टॉकीज। टॉकिंग है रोलिंग है अपना बॉम्बे टॉकीज। डूपर है अपना बॉम्बे टॉकीज।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची है, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला, सईद को पकड़ा लिया। और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
3: और आ गया।
2: एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अभी श्रोता सुन रहे थे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं इस समय शाम के 5 बजे हैं, लीजिए सुनिए युवा साथियों का अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवा वाणी।

युवानी सुनने वाले सभी व साथियों को क्षितिज शर्मा का प्यार नमस्कार। साथियों, आज 11 जुलाई का दिन है और आज का दिन विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, इस दिवस का उद्देश्य बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक करना और परिवार नियोजन, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, शिक्षा और सतत विकास के महत्व को समझाना है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की पहल पर वर्ष 1989 से इस दिवस को मनाया जा रहा है। 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या लगभग 5 अरब यानी 5 बिलियन तक पहुंच गई थी, जिसे 5 बिलियन डे के रूप में जाना गया। इसी घटना से प्रेरित होकर विश्व जनसंख्या दिवस की शुरुआत की गई। तो साथियों, क्या है विश्व जनसंख्या दिवस को मनाने का महत्व और क्या है जनसंख्या वृद्धि के कारण, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे कि बढ़ती हुई जनसंख्या का दुष्प्रभाव क्या है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस कार्यक्रम में और बात करते हैं विश्व जनसंख्या दिवस पर। साथियों, जनसंख्या किसी भी देश की सबसे बड़ी शक्ति होती है, यदि उसका उचित प्रबंधन किया जाए। स्वस्थ, शिक्षित और कुशल जनसंख्या किसी राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। दूसरी ओर अनियंत्रित जनसंख्या अनेक समस्याओं को जन्म देती है, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, संसाधनों की कमी, प्रदूषण, आवास संकट, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव। साथ ही साथ ये पर्यावरण को भी असंतुलित करती है। इसीलिए विश्व जनसंख्या दिवस लोगों को ये संदेश देता है कि केवल जनसंख्या बढ़ाना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को बेहतर जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य और समान अवसर उपलब्ध कराना भी आवश्यक है। तो साथियों, क्या है जनसंख्या वृद्धि के मूल कारण, उस पर बात करते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कई सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारण भी हैं और सबसे मुख्य कारणों में हैं पर्यावरण नियोजन के साधनों के प्रति जागरूकता की कमी, साथ ही अशिक्षा और विशेषकर महिला शिक्षा का निम्न स्तर, कम आयु में विवाह, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के कारण मृत्यु दर में कमी, पुत्र प्राप्ति की सामाजिक मानसिकता, गरीबी और सामाजिक असमानता, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य एवं जागरूकता कार्यक्रमों की सीमित पहुंच, ये सभी जो हैं मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से जनसंख्या वृद्धि होती है। और इन्हीं कारणों से कई देशों में जनसंख्या वृद्धि की गति अपेक्षाकृत अधिक बनी रहती है। तो दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि के क्या दुष्प्रभाव हैं, यानी कि इससे क्या नुकसान होता है, आइए उसके बारे में जानते हैं। साथियों, तेजी से बढ़ती जनसंख्या का प्रभाव जीवन के लगभग हर क्षेत्र पर पड़ता है, जैसे बेरोजगारी में वृद्धि होती है, क्योंकि जब रोजगार के अवसरों की तुलना में जनसंख्या अधिक बढ़ती है तब बेरोजगारी और आर्थिक असमानता बढ़ जाती है। साथ ही प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव भी बनता है, जैसे जल, भूमि, वन, खनिज और ऊर्जा जैसे संसाधनों का अत्यधिक उपयोग होने लगता है, जिससे उनका संरक्षण कठिन हो जाता है। साथ ही इससे पर्यावरण प्रदूषण भी होता है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने से वाहनों, उद्योगों और शहरीकरण में वृद्धि होती है, जिसके कारण वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है। दोस्तों, अधिक जनसंख्या के कारण विद्यालयों, अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक दबाव पड़ता है, जिससे गुणवत्तापूर्ण सेवाएं सभी तक नहीं पहुंच पाती। और शहरों में जनसंख्या बढ़ने से झुग्गी झोपड़ियों का विस्तार, ट्रैफिक जाम और स्वच्छता संबंधी समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो साथियों, भारत की जनसंख्या भी बढ़ रही है, तो क्या है इसके प्रभाव और क्या उपाय हम कर सकते हैं, इन सब पर चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे। अभी आपको ले चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और सुनते हैं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जसिंदर नरूला, जयेश कांडी और सोनू निगम की आवाज़ में गीत, फिल्म का नाम था अपनी। गीत के बोल थे समीर के और संगीत था हिमेश ऋषि मेहता। दोस्तों, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे जनसंख्या के बारे में। जी हाँ साथियों, आज विश्व जनसंख्या दिवस है। बात करें भारत की तो भारत विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों में से एक है। यहाँ विशाल युवा आबादी देश के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर भी है। यदि युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं तो वे देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। साथियों, भारत सरकार परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, पोषण, महिला शिक्षा और जनसंख्या स्थिरीकरण से संबंधित अनेक योजनाएं संचालित करती है और इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करना और जनसंख्या वृद्धि को संतुलित रखना है। साथियों, जनसंख्या नियंत्रण बहुत जरूरी है क्योंकि इस बढ़ती हुई जनसंख्या की चुनौती से निपटने के लिए हमें कुछ उपाय करने होंगे। तो साथियों, कौन कौन से वो प्रभावी उपाय हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। दोस्तों, बढ़ती जनसंख्या की चुनौती से निपटने के लिए हमें परिवार नियोजन के साधनों का व्यापक प्रचार प्रसार करना होगा, महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना होगा, साथ ही विवाह की उचित आयु का भी हमें पालन करना होगा, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही युवाओं को जनसंख्या, स्वास्थ्य और लैंगिक समानता के विषय में जागरूक करना जरूरी है, छोटे परिवार के लाभों का प्रचार करना और सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन और जन भागीदारी को बढ़ाना। इन सभी उपायों को करके हम इस बढ़ती हुई जनसंख्या की जो चुनौती हमारे सामने है उसका हम उपाय कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इसमें युवाओं की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। युवा वर्ग समाज में सकारात्मक परिवर्तन का सबसे प्रभावशाली माध्यम होता है। वे जागरूकता का अभियान, रैलियां, संगोष्ठियां, निबंध प्रतियोगिताएं और सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जनसंख्या संबंधी मुद्दों के प्रति जागरूक कर सकते हैं। शिक्षित युवा परिवार नियोजन, लैंगिक समानता और स्वास्थ्य संबंधी सही जानकारी समाज तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं बल्कि मानव विकास और सतत भविष्य के प्रति हमारी सामूहिक जिम्मेदारी का प्रतीक है। बढ़ती जनसंख्या की चुनौतियों का समाधान केवल सरकारी प्रयासों से संभव नहीं है। इसके लिए समाज के प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, परिवार नियोजन और पर्यावरण संरक्षण को अपनाकर ही हम एक संतुलित, स्वस्थ और समृद्ध समाज का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस हमें ये संदेश देता है कि

कुंजी है। तो साथियों, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं मनोरंजन की दुनिया में और सुनते हैं अगला गीत।

साथियों अभी आप सुन रहे थे हिमेश रेशमा की आवाज़ में गीत, फिल्म का नाम था आशिक बनाया आपने। गीत के बोल लिखे थे समीर ने और संगीत था खुद हिमेश रेशमिया का। साथियों अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बारिश के पानी के संग्रह। जी हाँ दोस्तों, अभी बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। कुछ जगहों पर मानसून ने अपनी दस्तक दे दी है और बहुत ही जल्द हमारे आसपास भी मानसून पहुंचेगा और बारिश होगी। तो साथियों बारिश यानी पानी, पानी प्रकृति द्वारा मानव को दिया गया सबसे मूल्यवान उपहार। ये तो हम सभी जानते हैं कि धरती का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है, परंतु इसका अधिकांश भाग खारा होने के कारण पीने योग्य नहीं। बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और भूजल के अत्यधिक दोहन के कारण स्वच्छ जल की उपलब्धता लगातार घटती जा रही है। ऐसे समय में बारिश के पानी का संग्रह करना बहुत ही प्रभावी और टिकाऊ उपाय है। बारिश के पानी का संग्रह यानी जिसे हम वर्षा जल संचयन कहते हैं, या फिर इंग्लिश में अगर हम कहें तो इसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। ये एक बहुत ही प्रभावी और टिकाऊ उपाय है पानी के स्रोत के लिए। इसका मतलब होता है कि वर्षा के पानी को एकत्रित करके उसका उचित उपयोग कर या उसे भूमि में पुनर्भरण के माध्यम से भूजल स्तर बढ़ाने के लिए सुरक्षित रखना। साथियों ये प्रणाली जल संकट से निपटने और भविष्य की पीढ़ियों के लिए जल संसाधनों को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वर्षा जल संचयन का अर्थ वो प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत वर्षा के दौरान प्राप्त जल को घरों की छतों, खुले मैदानों, खेतों या अन्य स्थानों से एकत्रित करके टंकियों, तालाबों, कुओं या फिर विशेष संरचनाओं में संग्रहित किया जाता है। इस जल का उपयोग घरेलू कार्यों, सिंचाई, बागवानी या फिर अन्य आवश्यकताओं के लिए भी किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त वर्षा के पानी को भूमि में पहुंचाकर भूजल स्तर को भी बढ़ाया जा सकता है। साथियों वर्षा जल संचयन की आवश्यकता क्यों है, ये तो हम देखते हैं कि आज अनेक क्षेत्रों में पानी का संकट एक गंभीर समस्या बन चुका है। कई स्थानों पर गर्मियों के मौसम में पेयजल की भारी कमी हो जाती है, भूजल का स्तर लगातार नीचे जा रहा है जिससे कुएं,

0: पंप और बोरवेल सूखने लगे हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा का स्वरूप भी बदल रहा है, कहीं अत्यधिक वर्षा होती है तो कहीं बहुत कम। और अगर पानी को उचित संग्रह और संरक्षण दिया जाए तो पानी की कमी को काफ़ी हद तक दूर किया जा सकता है। और यही कारण है कि वर्षा जल संचयन आज समय की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गया है। तो साथियों, आइए बात करते हैं कि वर्षा यानी बारिश के पानी को संचित करने के क्या क्या प्रमुख तरीके हो सकते हैं। दोस्तों, वर्षा जल संचयन कई तरीकों से हम कर सकते हैं, जैसे छत आधारित वर्षा जल संचयन यानी रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, घरों, विद्यालयों और कार्यालयों या फिर अन्य भवनों की छतों पर गिरने वाला वर्षा जल को पाइपों के माध्यम से टंकियों में एकत्रित किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर इस जल का उपयोग विभिन्न कार्यों में हम कर सकते हैं। साथ ही भूजल पुनर्भरण यानी ग्राउंड वाटर रिचार्ज, वर्षा के पानी को रिचार्ज पिट, रिचार्ज कुओं या सोखता गड्ढों के माध्यम से भूमि में पहुंचाया जाता है, जिससे भूजल स्तर में वृद्धि होती है। साथ ही तालाब और जलाशयों का निर्माण भी हम कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल को तालाबों, पोखरों और छोटे जलाशयों में संग्रहित किया जा सकता है। इससे सिंचाई, पशुपालन और अन्य आवश्यकताओं के लिए वर्ष भर पानी उपलब्ध रहता है। साथ ही किसानों द्वारा खेतों में छोटे तालाब बनाकर तथा मेड़बंदी करके वर्षा जल को रोका जाता है। इससे मिट्टी का कटाव कम होता है और फसलों को भी पर्याप्त नमी मिलती है। तो साथियों, ये है वर्षा जल संचयन के प्रमुख तरीके। अब बात करते हैं इसके लाभों की। तो दोस्तों, वर्षा जल संचयन के अनेक लाभ भी हैं, जैसे इससे भूजल स्तर में वृद्धि होती है, जल संकट की समस्या भी कम होती है, पेयजल स्रोतों पर निर्भरता घटती है, कृषि के लिए भी पानी की उपलब्धता बढ़ती है, बाढ़ और जल भराव की समस्या में कमी आती है, मिट्टी का कटाव कम होता है जिससे पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलता है, जल आपूर्ति पर होने वाला खर्च कम होता है और सूखे की स्थिति में भी जल उपलब्धता बनी रहती है। तो साथियों, अब बात करते हैं कि इस कार्य में कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं। दोस्तों, हालांकि वर्षा जल संचयन बहुत ही लाभकारी है, लेकिन इसके उपयोग में कई बाधाएं आ रही हैं, जैसे लोगों में जागरूकता की कमी, प्रारंभिक निर्माण लागत को लेकर भी कई लोग संकोच करते हैं, नियमित रखरखाव का अभाव भी कई जगह पर देखा जा सकता है, शहरी क्षेत्रों में सीमित स्थान होने के कारण जल संचयन के लिए स्थान की कमी महसूस होती है और कुछ लोगों में जल संरक्षण के प्रति उदासीनता का भाव भी देखा गया है। साथ ही दोस्तों, पारंपरिक जल स्रोतों की उपेक्षा भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है, जिससे इस कार्य में हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, बात करें सरकार की भूमिका की, तो जल संरक्षण के लिए सरकार अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। नए भवनों में वर्षा जल संचयन प्रणाली लगाने को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कई राज्यों में भवन निर्माण के दौरान वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाया गया है। विद्यालयों, महाविद्यालयों और सामाजिक संस्थाओं द्वारा जल संरक्षण अभियान, रैलियां, कार्यशालाएं और जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। साथियों, समाज के प्रत्येक नागरिक का ये दायित्व है कि वो जल का विवेकपूर्ण उपयोग करें, वर्षा जल संचयन अपनाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। यदि प्रत्येक परिवार अपने घर में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था करे तो जल संकट को काफी हद तक कम किया जा सकता है। तो दोस्तों, क्या है इसमें विद्यार्थियों की भूमिका, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी लेते हैं एक अल्पविराम।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं।

पौधारोपण, जल बचाओ अभियान, पोस्टर प्रतियोगिता, रैली और नुक्कड़ नाटक जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से वर्षा जल संचयन का संदेश प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। तो दोस्तों, जल है तो जीवन है। वर्षा जल संचयन केवल एक तकनीक नहीं बल्कि भविष्य को सुरक्षित बनाने का एक प्रभावी उपाय है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम वर्षा की प्रत्येक बूंद का सम्मान करें और उसे व्यर्थ बहने देने के बजाय संग्रहित करें। इससे न केवल वर्तमान जल संकट का समाधान होगा बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पर्याप्त जल उपलब्ध रहेगा। यदि सरकार, समाज और प्रत्येक नागरिक मिलकर वर्षा जल संचयन को अपनाएं तो जल संरक्षण का लक्ष्य अवश्य प्राप्त किया जा सकता है। हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम जल का सदुपयोग करें, वर्षा जल का संग्रह करेंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि साथियों यही जल संरक्षण का सबसे प्रभावी मार्ग है और यही हमारे पर्यावरण और मानव जीवन की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो साथियों, अभी फिर से वक्त हो चला है मनोरंजन का, तो आइए आपको ले चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और सुनते हैं ये।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे फिल्म अनाड़ी से गीत, आवाज़ थी अलका याग्निक और कुमार शानू की। गीत के वो लिखे थे समीर ने और संगीत का आनंद मिलेगा का। साथियों, प्रकृति मानव जीवन का आधार और वृक्ष प्रकृति की अमूल्य धरोहर। वृक्ष हमें शुद्ध वायु, फल फूल, औषधियाँ, लकड़ी, छाया और जीवन के लिए अति आवश्यक ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। वर्तमान समय में बढ़ते प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और वनों की कटाई के कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। ऐसे समय में वृक्षारोपण केवल एक पर्यावरणीय कार्य नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की जिम्मेदारी भी है। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा एक अभियान शुरू किया गया है और जिसे नाम दिया गया है एक पेड़ माँ के नाम। ये अभियान पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ माँ के प्रति सम्मान, प्रेम और कृतज्ञता की भावना को व्यक्त करता है। साथियों, एक पेड़ माँ के नाम अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को अपनी माँ के सम्मान में कम से कम एक पौधा लगाने और उसकी देखभाल करने के लिए प्रेरित करना है। जिस प्रकार माँ अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, उसी प्रकार एक वृक्ष भी हमें जीवन भर अनेक प्रकार के लाभ प्रदान करता है। इसीलिए ये अभियान माँ और प्रकृति के बीच गहरे संबंध को दर्शाता है और लोगों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करता है। साथियों, ये अभियान केवल पौधा लगाने तक सीमित नहीं बल्कि पौधों को नियमित रूप से देखभाल प्रदान करने का भी संदेश देता है। हर व्यक्ति अपनी माँ के नाम से एक पेड़ लगाए और उसे वृक्ष बनने तक सुरक्षित रखे तो देश में हर वर्ष करोड़ों नए वृक्ष तैयार हो सकते हैं और इससे हरित क्षेत्र बढ़ेगा, प्रदूषण कम होगा और जलवायु भी संतुलित बनेगी। साथियों, ये अभियान समाज में भावनात्मक जुड़ाव भी उत्पन्न करता है। जब कोई व्यक्ति अपनी माँ के नाम पौधा लगाता है तो वो उस पौधे की देखभाल अधिक जिम्मेदारी से करता है। साथियों, आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, जल संकट और प्रदूषण जैसी गंभीर समस्याओं का सामना कर रही है और इन चुनौतियों का प्रभावी समाधान अधिक से अधिक वृक्ष लगाना और उनका संरक्षण करना है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करता है और उन्हें यह संदेश देता है कि प्रकृति की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का धर्म है। वृक्ष न केवल पर्यावरण को स्वच्छ बनाते हैं बल्कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। हरियाली से तनाव कम होता है, तापमान नियंत्रित रहता है और जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। तो साथियों, हम सभी को ये संकल्प लेना चाहिए कि केवल पौधे लगाना ही पर्याप्त नहीं बल्कि उनकी नियमित सिंचाई, सुरक्षा और देखभाल भी हमें करनी होगी। एक स्वस्थ वृक्ष बनने तक उसकी जिम्मेदारी निभाना ही इस अभियान की वास्तविक सफलता है। अगर हर व्यक्ति अपनी माँ के सम्मान में एक पौधा लगाए और उसे सुरक्षित रखे तो धरती अधिक हरित, स्वच्छ और सुंदर बन सकती है। तो साथियों, एक पेड़ माँ के नाम अभियान पर्यावरण संरक्षण और मातृ सम्मान का एक प्रेरणादायक संदेश है। ये हमें सिखाता है कि जिस प्रकार माँ हमें जीवन देती है उसी प्रकार वृक्ष भी पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखते हैं। इसीलिए प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो अपनी माँ के नाम एक पौधा लगाए और उसकी देखभाल करे, दूसरों को भी इस अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित करे। अगर हम सभी इस अभियान को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना लें तो आने वाले वर्षों में हमारा देश अधिक हरित, स्वच्छ, पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित बनेगा और यही हमारी माँ प्रकृति और आने वाली पीढ़ियों के प्रति सच्चा सम्मान और जिम्मेदारी होगी। तो साथियों, अभी आपको फिर से ले चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और सुनते हैं।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म दूल्हे राजा से गीत, आवाज थी अनुराधा और उदित की। गीत के बोल लिखे थे समीर ने और संगीत था आनंद मिलिंद का। साथियों, अब बात करते हैं अक्षय ऊर्जा की। जी हाँ दोस्तों, अक्षय ऊर्जा का सदुपयोग आज की समय में बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, ऊर्जा मानव जीवन और देश के विकास का आधार, उद्योग, कृषि, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य या घरेलू कार्य, कोई भी हम काम करें, ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वर्तमान समय में कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का अत्यधिक उपयोग हो रहा है और ये संसाधन सीमित हैं और इनके अधिक उपयोग से पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर समस्याएँ भी उत्पन्न हो रही हैं। इसीलिए आज अक्षय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी का महत्व लगातार बढ़ रहा है। अक्षय ऊर्जा ऐसे स्रोतों से प्राप्त होती है जो प्राकृतिक रूप से बार बार उपलब्ध होते रहते हैं या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि वो समाप्त नहीं होते। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, बायोगैस और जैव ऊर्जा इसके प्रमुख उदाहरणों में से एक है। इनका सदुपयोग करके हम ऊर्जा की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ पर्यावरण की भी रक्षा कर सकते हैं। तो साथियों, आइए बात करते हैं अक्षय ऊर्जा पर। दोस्तों, अक्षय ऊर्जा वो ऊर्जा है जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होती है और जिनका उपयोग करने पर वे समाप्त नहीं होते। सूर्य का प्रकाश, हवा, बहता हुआ जल, समुद्री लहरें और जैविक अपशिष्ट ऐसे स्रोत हैं जिनसे निरंतर ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। ये ऊर्जा स्रोत पर्यावरण के अनुकूल होते हैं और प्रदूषण भी बहुत कम फैलाते हैं। तो साथियों, बात करते हैं प्रमुख स्रोतों की। तो सबसे बड़ा स्रोत सौर ऊर्जा, क्योंकि सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा और असीमित स्रोत है। सोलर पैनलों की सहायता से सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, जिसका उपयोग घरों, विद्यालयों, अस्पतालों, उद्योगों और कृषि कार्यों में किया जा सकता है। इसके अलावा पवन ऊर्जा, जो कि तेज हवा से बनती है, उसका भी स्वच्छ और प्रदूषण रहित ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है और इसका उपयोग हम इन्हीं सब कार्यों के लिए कर सकते हैं जिससे हम सौर ऊर्जा का करते हैं। साथियों, जल ऊर्जा और

या जैविक पदार्थों से जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसे हम जैव ऊर्जा कहते हैं। साथियों, अक्षय ऊर्जा वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके उपयोग से जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम होती है, जिससे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होता है। ये ऊर्जा स्वच्छ होती है और वायु प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने में सहायता करती है। इसके माध्यम से जलवायु परिवर्तन की समस्या को नियंत्रित करने में भी सहयोग मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां बिजली की सुविधा सीमित होती है, वहां सौर ऊर्जा और बायोगैस जैसी प्रणालियां लोगों के जीवन को सरल और सुविधाजनक बनाती है। साथियों, अक्षय ऊर्जा भविष्य की ऊर्जा है। ये न केवल ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने का प्रभावी माध्यम है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करें और सौर, पवन, जल और बायोगैस जैसी स्वच्छ ऊर्जा का अधिकाधिक उपयोग करें। यदि सरकार, उद्योग, शैक्षणिक संस्थान और आम नागरिक मिलकर अक्षय ऊर्जा को अपनाएं तो ऊर्जा संकट, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों का प्रभावी समाधान संभव। हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि ऊर्जा का विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे, अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देंगे और स्वच्छ, हरित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना सक्रिय योगदान देंगे। तो साथियों, आइए आपको फिर से ले चलते हैं मनोरंजन की दुनिया में और सुनते हैं अगला गीत।

kamalahi. Muda kamalahi, muda kamalahi.

0: strong, he can't go wrong. He's cute, who plays the flute? Meet him in the morning, meet him in the night. I promise to you, kardega mamla tight. In our language, we call him Munda Kamala.
1: क्या चाल है, क्या माल है, ओ कुड़िये तू बेमिसाल है। क्या चाल है, क्या माल है, ओ कुड़िये तू बेमिसाल है।

0: करेगा अपना ख्याल है।
1: मुंडा कमाल है, मुंडा कमाल है, मुंडा कमाल है, मुंडा है, ओ मुंडा, मुंडा कमाल है, मुंडा कमाल है, मुंडा कमाल है, मुंडा है।
2: पलट
0: धीरे धीरे चलना,
2: यूं ना तुम अटकना,
0: सोलवा ताल है, हाय क्या ताल है,
2: पर एक बार तो देख पलट के मुंडा दी कमाल।

धीरे धीरे चलना, यूं ना तुम अटकना। 16वां साल है, हाय क्या ताल है, पर एक बार तो देख पलट के मुंडा भी कमाल है।

निगम की आवाज़ में गीत, फिल्म का नाम था दुल्हन हम ले जाएंगे। गीत के बोल थे सुधाकर शर्मा के और संगीत था हिमेश रेशमिया का। तो साथियों, इसी के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपने दोस्त क्षितिज को दीजिए इजाज़त।

अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का अपना कार्यक्रम युववाणी। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, इस समय शाम के 6 बजे हैं। लीजिए सुनिए हमारी सांध्य सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। ८:४५ पर आप सुनेंगे समाचार संध्या रात्रि 9 बजे के दिन में, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात्रि 11 बजे श्रोता सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार, जिसे हम रिले करेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। संस्कृति भारती कार्यक्रम श्रोता सुनेंगे रात्रि 9:30 पर, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा रात्रि 10 बजे, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शाम 6:30 पर श्रोता सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, 6:40 पर जिले की चिट्ठी और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम जयपुर केंद्र से रिले करेंगे। अब से कुछ देर में यानी शाम 6:05 पर श्रोता सुनेंगे रामचरित मानस। आज हम श्रोताओं को सुनवाएंगे रामचरित मानस का क्रमांक 106। शाम 6:15 का समय होगा वंदना कार्यक्रम का। वंदना कार्यक्रम में श्रोता सुनेंगे भक्ति गीत। किसान भाई सुनेंगे अपना पसंदीदा ज्ञानवर्धक कार्यक्रम किसान वाणी। समय होगा शाम 7 बजे। शाम 7:30 पर श्रोता सुनेंगे राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम। रात्रि 8 बजे और रात्रि 9:15 पर आप लुत्फ उठा सकते हैं फिल्मी गीतों का। कार्यक्रम होगा फिल्म संगीत। रात्रि 8:30 पर सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम श्रोताओं को सुनवाएंगे चंदन दास की गायी हुई गजल। अभी आप सुन रहे थे हमारी सांध्य सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, रामचरित मानस के लिए थोड़ा सा इंतजार।

राजा जनक के महल में बेटियों की विदा का करुण हृदय विदारक दृश्य उपस्थित है। लगता है जैसे करुणा और विरह ने वहां डेरा डाल दिया है। सीता ने जिन पक्षियों को सोने के पिंजरों में पाल पोस कर सिखाया पढ़ाया था, वे मानो पूछ रहे हैं कि वैदेही कहां हैं। और यदि पशु पक्षी इस प्रकार विकल हैं, तो मनुष्यों की दशा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। राजा जनक परम वैराग्यवान पुरुष थे, किंतु इस अवसर पर सीता को देख उनका धैर्य भी साथ छोड़ गया। जानकी को हृदय से लगाकर वो फूट पड़े। भावना ने

ज्ञान और वैराग्य के बांध तोड़ दिए। मंत्रीगण उन्हें धीरज बंधा रहे हैं। मुहूर्त देखकर सुंदर सजीव ही पालकियों में कन्याओं को बिठाया गया। पिता ने उन्हें स्त्री धर्म और कुल की रीति की सीख दी। ब्राह्मणों की चरण धूलि माथे पर लेकर राजा दशरथ ने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और दल बल समेत अयोध्या के लिए चल पड़े। विदा के क्षणों में अधिक से अधिक समय तक उनके साथ रहने को आतुर राजा जनक उनके साथ हो लिए। विचित्र दृश्य है, देवता हर्षित हो पुष्प वर्षा कर रहे हैं, अप्सराएं मंगल गीत गा रही हैं। कौशलपति दशरथ बार बार जनक जी से लौट जाने का आग्रह करते हैं, किंतु प्रेमवश वो लौटना नहीं चाहते।

राखी पढ़ाए, व्याकुल कहे कहाँ बैठे ही, सुनी धीरजु परिहरई नके।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, इस समय शाम के 6:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदना।

0: निर्धन निर्बल थारे आगे शीश झुकावे,
1: आगे शीश झुकावे।
0: भूत पिशाच निकट नहीं आवे, जो थाने नित

0: दुख हरो दारिद्र हरो ते कष्ट हरो बालाजी
1: हरो कष्ट हरो बालाजी
0: रोग शोक सब दूर करो ते सुखी करो बालाजी
1: सुखी करो बालाजी
0: खाने भाग्य जागी।

करके मुझे भर मुझे अपनी शरण में लेना। मैं दास तुम्हारा जन्म से हूँ, मैं दास तुम्हारा।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदना। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल। श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में यानी शाम 6:30 पर आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, 6:40 पर जिले की चिट्ठी और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम रिले करेंगे हमारे जयपुर केंद्र से।

0: मुख्य समाचार। भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को मजबूत करने के लिए 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए करने का लक्ष्य। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने केकड़ी क्षेत्र को 1,258 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने छात्र हित को सर्वोपरि बताया, कहा ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में शिक्षकों की कमी नहीं आने दी जाएगी। और विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम, आबादी स्थिरीकरण, मातृ और शिशु स्वास्थ्य पर जोर। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर वार्ता की। इसके बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड समय में हुआ भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता FTA दोनों देशों के लिए नए अवसर खोलेगा। साथ ही 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना यानी 35,000 करोड़ रुपए करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा। दोनों देशों के बीच 18 समझौते हुए, इनमें रक्षा, व्यापार, टेक्नोलॉजी और डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र शामिल हैं।
1: हमने भारत न्यूजीलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत हम हर क्षेत्र में स्पष्ट लक्ष्यों और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ेंगे। इस वर्ष हमने रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। इस उपलब्धि से दोनों देशों के उद्योगों, किसानों और युवाओं के लिए नए द्वार खुलेंगे।
0: प्रधानमंत्री श्री मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज का समय कोलैब का समय है और इसके लिए किसी देश की जनसंख्या नहीं बल्कि जन कल्याण की भावना अहम है।
1: भारत सबसे सीखता है, हमारे लिए सामने वाले देश की जनसंख्या नहीं जन कल्याण की भावना मायने रखती है।
0: न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री श्री लक्सन ने भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और न्यूजीलैंड के विकास में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आज केकड़ी क्षेत्र को विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। केकड़ी के कृषि उपज मंडी परिसर में हुए समारोह में श्री शर्मा ने 1,258 करोड़ रुपए लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने नसीराबाद केकड़ी देवली 4-लेन सड़क परियोजना के पहले चरण की आधारशिला रखी। ये परियोजना 3 चरणों में पूरी होगी। इससे क्षेत्र में आवागमन सुगम होगा और आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार मिलेगी। इस अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि सरकार प्रदेशवासियों के जीवन को सुगम बनाने का निरंतर प्रयास कर रही है।
2: लगातार कितनी कितनी बड़ी योजना आ रही है। आप देख रहे हैं कि 13,000 करोड़ रुपए की मेट्रो लाइन Phase 2 के लिए हम काम कर रहे हैं। हमारे जो बड़े बड़े शहर हैं, कस्बे जिनमें आवश्यकता है, उसमें रिंग रोड बनाने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। हमारे केंद्र सरकार के माध्यम से कितने रेलवे स्टेशन हमने बनाए हैं। आप हमारे एयरपोर्ट को देखेंगे, आप देखिए कितना विकास राजस्थान के अंदर हर क्षेत्र में हो रहा है।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पिछले दिनों जान गंवाने वाली 5 प्रसूताओं के परिजनों को आर्थिक सहायता के चेक सौंपे। जन सहयोग से इकट्ठा की गई 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि पीड़ित परिवारों को दी गई। उधर भीलवाड़ा और बांसवाड़ा के सरकारी अस्पतालों में सिजेरियन डिलीवरी के बाद हाल ही में कुछ प्रसूताओं की मौत के मामले पर अस्पताल प्रशासन की ओर से किसी भी तरह की लापरवाही से इनकार किया गया है। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल के PMO डॉक्टर अरुण गौड़ ने बताया कि प्रभावित ऑपरेशन थिएटर की जांच की जा रही है और इस्तेमाल किए गए इंजेक्शनों के सैंपल भी जांच के लिए भेजे गए हैं। उन्होंने मरीजों को गंभीर स्थिति में रेफर होकर आने को मौत का कारण बताया। उधर बांसवाड़ा जिला कलेक्टर इंद्रजीत यादव ने बताया कि शुरुआती जांच में किसी तरह का संक्रमण सामने नहीं आया है। मामले की उच्च जांच के लिए जयपुर के 5 डॉक्टरों की टीम गठित की गई है।
3: चार

0: प्रकरण है, कारण जानने के लिए हमारे जो 5 सीनियर डॉक्टर्स हैं उनकी कमेटी का कल ही गठन कर दिया गया था। चारों केसेस काफी क्रिटिकल कंडीशन में थे। पहला केस था बाहर से कहीं से एमटीपी करवा के आया था, इनकम्प्लीट अबॉर्शन जिसको बोला जाता है। पेशेंट जब यहाँ पे एडमिट किया तो काइंड ऑफ सेप्सिस की कंडीशन में था। दूसरे वाले प्रकरण के अंदर हीमोग्लोबिन लगभग 7 के आसपास था और इसी तरीके से बाकी जो 2 केसेस है उनमें भी कुछ न कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी।
1: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि तबादलों के दौरान ग्रामीण और शहरी स्कूलों में शिक्षकों का संतुलन रखा गया है, जिससे किसी भी स्थिति में गांव के स्कूलों में शिक्षकों की कमी नहीं हो और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। अलवर में पत्रकारों से बातचीत में श्री दिलावर ने कहा कि शिक्षा विभाग ने तबादला प्रक्रिया पूरी कर ली है। गौरतलब है कि DEO, प्रिंसिपल और लेक्चरर सहित हजारों शिक्षकों के तबादले किए गए हैं। हालांकि तृतीय श्रेणी के सामान्य स्थानांतरण इस प्रक्रिया में शामिल नहीं किए गए। राजधानी जयपुर के सभी कोचिंग संस्थानों को 31 जुलाई तक आसान निकास नीति अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने इन्हें एग्जिट और सुरक्षा के लिए स्पष्ट नीति बनाने को कहा है। संस्थानों को पाठ्यक्रम छोड़ने पर विद्यार्थियों को आसानी से फीस वापसी का प्रावधान भी करना होगा। इसके अलावा मानसिक तनाव से निपटने के लिए नियमित काउंसलिंग को भी अनिवार्य किया गया है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के अनुसार 9वीं से 12वीं कक्षा में दाखिले के लिए अब 25 जुलाई तक आवेदन किए जा सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक सीताराम जाट ने बताया कि विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने और ड्रॉप आउट दर को कम करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि पहली से 8वीं कक्षा में प्रवेश प्रक्रिया साल भर चलती रहेगी। प्रदेश में कल से वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से ये परीक्षाएं 18 जुलाई तक दो पारियों में ली जाएंगी। आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि ये भर्ती परीक्षा कुल 9,651 पदों के लिए है। 27 जिलों में इसके लिए परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर प्रदेश भर में जागरूकता कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। इनके माध्यम से माँ और बच्चे के कल्याण के लिए 2 संतानों में उचित अंतर रखने और परिवार नियोजन पर जोर दिया जा रहा है। अनेक स्थानों पर स्वास्थ्य कर्मियों और आशा सहयोगिनियों को सम्मानित किया गया। वहीं जनसंख्या स्थायित्व में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए बांसवाड़ा जिले को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। जयपुर के स्वास्थ्य भवन में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में बांसवाड़ा को वर्चुअल रूप से ये सम्मान दिया गया। इस मौके पर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की सचिव गायत्री राठौर ने गर्भवती महिलाओं से नियमित जांच करवाने और समुचित परामर्श लेने का आग्रह किया।
2: हम जनसंख्या स्थायीकरण की ओर आ गए हैं, लेकिन अब हमारा प्रयास है कि जो हमारी जनसंख्या है उसको हम बेहतर चिकित्सा सुविधाएं किस तरह से उपलब्ध करा सके। बच्चे के बर्थ से लेकर के वृद्धावस्था तक महिलाओं को पहले से आजकल हो गया कि इवन प्रेगनेंसी के पहले ही काउंसलिंग होती है, क्योंकि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, आपने देखे है कि सिकल सेल एनीमिया वाला होता है, थैलेसीमिया होता है, तो प्री काउंसलिंग बहुत जरूरी है जिससे कि मदर हेल्दी रहे और उसके बच्चे हेल्दी रहे।
1: डीग जिले में कृषि पर्यवेक्षकों की टीम खाद और बीज विक्रेताओं की दुकानों का निरीक्षण कर रही है। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक सुरेश मान ने बताया कि खरीफ सीजन में खाद और बीज की बढ़ती मांग के बीच कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए ये कार्यवाही की जा रही है। सिरोही जिले के आबूराज स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान में आज से राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में देश भर से आए जनप्रतिनिधि और विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग भाग ले रहे हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अध्यात्म व्यक्ति के सार्वजनिक जीवन को सही दिशा देता है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से सेवा, नैतिकता और सकारात्मक सोच के साथ विकास में योगदान देने का आह्वान किया। सम्मेलन में सुशासन, नैतिक नेतृत्व और समाज हित से जुड़े विषयों पर विभिन्न सत्रों में मंथन किया जा रहा है। पाली जिले में कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की ओर से विभिन्न स्थानों पर महिला

महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा और सम्मान से जुड़े जागरूकता कार्यक्रम रखे गए। इस दौरान आत्मरक्षा प्रशिक्षण का प्रदर्शन और राजकोप सिटीजन ऐप की भी जानकारी दी गई। साथ ही महिलाओं और बालिकाओं को बताया गया कि किसी भी तरह की छेड़छाड़ और उत्पीड़न होने पर सजग रहें और पुलिस को सूचित करें। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज साउथैम्प्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से होगा। सीरीज में इंग्लैंड 3-0 से आगे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117-800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव 24 जुलाई तक स्वीकार किए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को मजबूत करने के लिए 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए करने का लक्ष्य। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने केकड़ी क्षेत्र को 1,258 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने छात्र हित को सर्वोपरि बताया, कहा ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में शिक्षकों की कमी नहीं आने दी जाएगी। और विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम, आबादी स्थिरीकरण, मातृ और शिशु स्वास्थ्य पर जोर। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से करौली जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख बांकी बिहारी शर्मा ने तैयार किया है। जिले में पिछले महीने की सबसे प्रमुख घटना पांचना बांध के पानी के बंटवारे को लेकर लंबे समय से चला आ रहा विवाद समाप्त होना रही। राज्य सरकार की पहल पर कमांड और कैचमेंट क्षेत्र के किसानों के बीच सहमति बनने के बाद जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने नई लिफ्ट सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया तथा गंभीरी नदी और नहरों में सिंचाई के लिए पानी छोड़ा। बाद में तकनीकी कारणों से जल प्रवाह कम रहने पर किसानों ने फिर से आंदोलन किया। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा और जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के आश्वासन के बाद आंदोलन समाप्त हुआ और स्थिति सामान्य हो गई। जल संरक्षण को लेकर चलाया गया वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान भी पूरे महीने जिले भर में चर्चा में रहा। अभियान के तहत जल स्रोतों की साफ सफाई की गई, श्रमदान, पौधरोपण, फार्म पौंड निर्माण और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना ने जिले का दौरा कर अभियान की समीक्षा की। वहीं अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार नायक ने कृषि विज्ञान केंद्र में फार्म पौंड का भूमि पूजन कर किसानों से जल संरक्षण और प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान किया। राज्य सरकार द्वारा आयोजित शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर भी पूरे माह आकर्षण का केंद्र रहे। इन शिविरों में वर्षों से लंबित राजस्व, भूमि, सामाजिक सुरक्षा, नगरीय विकास, जलदाय, विद्युत और अन्य विभागों से जुड़े प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। पात्र लोगों को पट्टे दिए गए और विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया गया। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने जिला मुख्यालय के शिविर का निरीक्षण कर अधिकारियों को आमजन की समस्याओं का तुरंत पारदर्शी और संवेदनशीलता के साथ समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इन शिविरों में बड़ी संख्या में लोगों को राहत मिली। राज्य सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जिला मुख्यालय स्थित टाउन हॉल में जिला स्तरीय विकास प्रदर्शनी भी लगाई गई। विभिन्न विभागों ने अपनी योजनाओं और उपलब्धियों का प्रदर्शन किया, जिसका अवलोकन जनप्रतिनिधियों और आमजन ने किया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालोतरा के पचपदरा स्थित राजस्थान रिफाइनरी का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का जिला मुख्यालय पर आयोजित समारोह में सीधा प्रसारण किया गया। इस अवसर पर जिले के विभिन्न विभागों में चयनित 1555 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए गए। जिला चिकित्सालय में अत्याधुनिक मदर लैब शुरू की गई है, जहाँ 148 प्रकार की जांचों की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

0: राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो खुराक पिलाई गई और राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए और स्टॉप डायरिया कैंपेन के तहत घर घर जाकर ORS और जिंक की गोलियां बांटी गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिले भर में सामूहिक योग अभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए गए। विभिन्न विभागों, शिक्षण संस्थानों और सामाजिक संगठनों के सहयोग से बड़ी संख्या में लोगों ने इन योगाभ्यास में भाग लिया और नियमित योग अपनाने का संकल्प लिया। जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लंबित प्रकरणों का आपसी समझौते के आधार पर निस्तारण हुआ। एक महत्वपूर्ण आपराधिक मामले में न्यायालय ने 2 आरोपितों को 7-7 वर्ष के कठोर कारावास अर्थ दंड दिया। जिले में बीते माह धार्मिक और सामाजिक गतिविधियां भी हुई। ईद उल अजहा का पर्व जिले भर में श्रद्धा और सौहार्द के साथ मनाया गया। विभिन्न ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा की गई और अमन चैन तथा भाईचारे की दुआ मांगी गई। वहीं अधिक मास के चलते जिले के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई। निर्जला एकादशी पर भी कई धार्मिक आयोजन हुए। करौली की अरुणा शर्मा ने श्री अन्न पर आधारित फूड प्रोसेसिंग इकाई लगाई है और जिले भर में अपनी नई पहचान बनाई है। इस इकाई के माध्यम से स्थानीय महिलाओं को रोजगार मिल रहा है और मोटे अनाज के प्रसंस्करण को भी बढ़ावा मिल रहा है। इसी के साथ करौली जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, भारत और न्यूजीलैंड रा रिश्ता मजबूत बनावन सारू साल 2030 ताई दोनों देशों बीच कारोबार दुगुनो कर 35,000 करोड़ रुपया रा लेवल ताई ले जावनो तय करीचियो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा केकड़ी हल्का माय विकास रा 1,258 करोड़ रुपया रा काम शुरू कीना और पूरा भया काम जनता ने सौंपिया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कहो सरकार रो विद्यार्थियों रा भला माथे खास ध्यान, गांवई हलकान स्कूलां माए शिक्षकां नी कमी नी आवण दी जावेला। और विश्व जनसंख्या दिवस रे मौके आज जयपुर माए राज्य स्तर रो कार्यक्रम राखीचियो। जनसंख्या स्थिरीकरण, मातृ और शिशु स्वास्थ्य माथे जोर। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड रा प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन सागे दोनों देशों बीच सहयोग मजबूत करने रे बारा माय चर्चा कीनी। ये पाचा जारी करी जा भेड़ा बयान माय दोनों नेता रणनीतिक भागीदारी बधावण रो स्वागत कीनो। वह कहो कर रिकॉर्ड समय माय करी जो भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौतो दोनों देशों सारू नुआ मौका बनावेला। ई करार साल 2030 ताई दोनों देशों बीच कारोबार दुनो कैरर करीब 35,000 करोड़ रुपया लेवल ताई ले जावन माय मदद मिलेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री न्यूजीलैंड यात्रा रे दौरान रक्षा, कारोबार, टेक्नोलॉजी और डिजिटल पेमेंट सरीखा न्यारा न्यारा हल्का माय दोनों देशों बीच 18 करार मथ सही करी जी।
2: हमने भारत न्यूजीलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत हम हर क्षेत्र में स्पष्ट लक्ष्यों और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ेंगे। इस वर्ष हमने रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। इस उपलब्धि से दोनों देशों के उद्योगों, किसानों और युवाओं के लिए नए द्वार खुलेंगे।
1: प्रधानमंत्री मोदी ऑकलैंड माए बसियोड़ा भारत रा लोगा नहीं संबोधित कीना। वे कहो के मौजूदा दौर एक दूजा सागे मिलर काम करन रो है और इन सारू किनी देश री आबादी नहीं बल्कि जनता रा भलारी भावना खास है।
2: भारत सबसे सीखता हमारे लिए सामने वाले देश की जनसंख्या नहीं जन कल्याण की भावना मायने रखती है।
1: इमोके न्यूजीलैंड रा प्रधानमंत्री लक्सन दुनिया माए भारत रा बढ़ता रुतबा प्रधानमंत्री मोदी री अगुवाई और न्यूजीलैंड रा विकास।

0: आसमाए वच बस्योड़ा भारत रा लोगा रा योगदान री सराहना कीनी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज अजमेर जिला रा केकड़ी हलका माए विकास रा 1258 करोड़ रुपया रा खर्च वाला न्यारा न्यारा कामा री शुरुआत कीनी और पूरा फिया काम जनता ने सौंपया। श्री शर्मा नसीराबाद केकड़ी देवली फोर लेन सड़क परियोजना रा पहला दौर रा काम री नींव रखी। आ परियोजना 3 दौर माए पूरी भैला। ई मौके राखी जिया जलसा माए मुख्यमंत्री कहो के सरकार जनता री जिंदगी आसान बनावन री लगातार कोशिश कर रही है।
1: लगातार कितनी कितनी बड़ी योजना आ रही है। आप देख रहे हैं कि 13,000 करोड़ रुपए की मेट्रो लाइन फेज 2 के लिए हम काम कर रहे हैं। हमारे जो बड़े बड़े शहर हैं कस्बे जिनमें आवश्यकता है उसमें रिंग रोड बनाने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। हमारे केंद्र सरकार के माध्यम से कितने रेलवे स्टेशन हमने बनाए। आप हमारे एयरपोर्ट को देखेंगे, आप देखिए कितना विकास राजस्थान के अंदर हर क्षेत्र में हो रहा है।
0: कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लारला दिना झापारे दौरान जहां 5 महिलाओं की मौत वेगी ही वाला परिवार वाला ने आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला माली मदद री रकम रा चेक सौंपया। आ परिवार ने संबल देवन सारू जनता री मदद सहयोग राशि भेड़ी कर संबंधित परिवार ने 5-5 लाख रुपए की मदद दी रही जी। इबीचे भीलवाड़ा और बांसवाड़ा रा सरकारी अस्पताल माए ऑपरेशन जापो करावन पाछे लाडला दिना कुछ लुगाइया री मौत रा मामला माए अस्पताल प्रशासन किनी लापरवाही इनकार कीनो है। भीलवाड़ा माए महात्मा गांधी अस्पताल रा मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरुण गौड़ बतायो के शंका वाला ऑपरेशन थिएटर री जांच करी जा रही है और जापारी भगत इस्तेमाल करी जिया इंजेक्शन रा नमूना ही जांच सारू भेजी जिया है। वह जापारे दौरान गंभीर हालत माए रेफर भैर आवन ने मौत रो कारण बतायो। बांसवाड़ा रा जिला कलेक्टर इंद्रजीत यादव बतायो के शुरुआती जांच माए किणी भांत रा संक्रमण री ठा नी पड़ी है। वह बतायो के मामला री आला दर्जा री जांच सारू जयपुर रा 5 डॉक्टरां री टीम बनाई जी है।
2: चारों प्रकरण है, कारण जानने के लिए हमारे जो 5 सीनियर डॉक्टर्स हैं उनकी कमेटी का कल ही गठन कर दिया गया था। चारों केसेस काफी क्रिटिकल कंडीशन में थे। पहला केस था बाहर से कहीं से एमटीपी करवा के आया था, इनकम्प्लीट अबॉर्शन जिसको बोला जाता है। पेशेंट जब यहाँ पे एडमिट किया तो काइंड ऑफ सेप्सिस की कंडीशन में था। दूसरे वाले प्रकरण के अंदर हीमोग्लोबिन लगभग 7 के आसपास था और इसी तरीके से बाकी जो 2 केसेस है उनमें भी कुछ न कुछ कॉम्प्लिकेशन थी।
0: प्रदेश में उद्यमिता ने बढ़ावो देवन सारू चलाई जा रही रीको प्रत्यक्ष आवंटन योजना रो 12वां दौर 15 जुलाई ने शुरू भेला। इना तेज 100 औद्योगिक हलका माए 5,000 औद्योगिक और लॉजिस्टिक प्लॉट निवेशका सारू मुहैया कराया जा वेला। रिकोरा प्रबंध निदेशक सुरेश कुमार ओला बतायो का ई दौर री ई लॉटरी 31 जुलाई ने निकाली जा वेला। वे बतायो के प्रत्यक्ष आवंटन योजना रा तेत हाल ताई रा 11 दौर माए 1,844 प्लॉट रो आवंटन करियो जा चुकियो है। आरे जरिए राज्य माए 18,000 करोड़ रुपयों बत्तो निवेश करियो जा सकेला और 37,000 नौजवाना सारू नौकरी धंधा रा मौका बनेला। ऐ समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक मत AIR News Rajasthan पर आई सुन सको हो। ईसा गई आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in मत समाचार सुन सको हो और संबंधित फोटो और वीडियो देख सको हो। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कहो है कि तबादला रे दौरान गांवाई और शहरी हलकां रे स्कूलां माए शिक्षकां रो संतुलन बनाई चियो है ताकि गांवां रे स्कूलां माए अध्यापकां रे कमी नी भए। अलवर माए खबर नवीसा सागे बातचीत करता था का दिलावर कहो कि शिक्षा विभाग माए तबादला रो काम पूरो हो गयो है। ध्यान जोग है कि DEO प्रिंसिपल और लेक्चरर समेत न्यारा न्यारा ओहदा माथे काम कर रहे हजारों शिक्षकां रा तबादला करी जिया। हालांकि थर्ड ग्रेड अध्यापकां रा तबादला ई प्रक्रिया में शामिल नहीं है। राजधानी जयपुर में सगला कोचिंग संस्थाना ने 31 जुलाई

0: ताईं आसान निकास नीति अपनावण रा हुकम दिया चिया है। जिला कलेक्टर संदेश नायक बतायो के कोचिंग सेंटर रा भवन आसानियों निकलवारा सुविधा और हिफाजत सा गई सगला संस्थाना ने साफ नीति बनावनी फैला जिना तेत कोर्स छोड़बारी सूरत माए विद्यार्थियों ने फीस पाछे मिल सकेला। ईसा गई मानसिक तनाव रो सामो करण सारू लगातार काउंसलिंग नई जरूरी करी ची है। प्रदेश री सरकारी स्कूलां री नवीं बारहवीं कक्षा ताई दाखिला सारू अर्जी देवन री आखरी तारीख 25 जुलाई कर दी री ची है। माध्यमिक शिक्षा विभाग रा निदेशक सीताराम जाट आ जानकारी दीनी। वे बतायो के पहली आठवीं कक्षा ताई दाखिला रो काम आखा साल चालेला। प्रदेश माए काल वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा शुरू भेला। राजस्थान लोक सेवा आयोग री ओर दो दो पारियां मायन ली जावन वाली आ परीक्षा 18 जुलाई तक चलेला। आयोग रा सचिव राम निवास मेहता बतायो के इन परीक्षा रे जरिए 9651 ओहदा माथे भर्ती करी जावेला। परीक्षा सारू राज्य रा 27 जिला माए सेंटर बनाई चिया है। विश्व जनसंख्या दिवस रे मौके आज आखा राज्य माए जागरूकता कार्यक्रम शुरू करी चिया। आरे जरिए मायडा और बच्चों रा भला सारू दो बच्चों बीच जरूरी आंतरो राखण और परिवार नियोजन माथे जोर दियो जा रियो है। 18 जुलाई तक चलन वाला जनसंख्या स्थायित्व जन जागरूकता सप्ताह रा तहत स्वस्थ परिवार और खुशहाल परिवार सारू न्यारा न्यारा कार्यक्रम रखा जा रहा है। ई मौके जयपुर माए राखी जिया राज्य स्तर रा जलसा माए जनसंख्या स्थायित्व रा मामला माए बेहतरीन काम करण सारू बांसवाड़ा जिला रो वर्चुअल तरीका मान पानो देर मान करी जियो। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग रे सचिव गायत्री राठौड़ आस वाली लुगाइया ने टेम सर जांच करावन री अरज कीनी।
1: हम जनसंख्या स्थायीकरण की ओर आ गए हैं, लेकिन अब हमारा प्रयास है कि जो हमारी जनसंख्या है उसको हम बेहतर चिकित्सा सुविधाएं किस तरह से उपलब्ध करा सके। बच्चे के बर्थ से लेकर के वृद्धावस्था तक महिलाओं को पहले से आजकल हो गया कि इवन प्रेगनेंसी के पहले ही काउंसलिंग होती है, क्योंकि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, आपने देखे है कि सिकल सेल एनीमिया वाला होता है, थैलेसीमिया होता है, तो प्री काउंसलिंग बहुत जरूरी है जिससे कि मदर हेल्दी रहे और उसके बच्चे हेल्दी रहे।
0: डीग जिला में कृषि पर्यवेक्षक की टीम खाद बीज बेचण वाला की दुकान की जांच कर रही है। कृषि विभाग रा संयुक्त निदेशक सुरेश मान बतायो कि खरीफ सीजन में खाद बीज री बढ़ती मांग बीच कालाबाजारी माथे आंकस लगावन सारू जांच करी जा रही है। सिरोही जिला में आबूराज रा ब्रह्म कुमारी संस्थान में आज राजनीतिक सम्मेलन शुरू भयो। तीन दिन रा ई सम्मेलन रा उद्घाटन सत्र में गोवारा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत कहो के आध्यात्म इंसान रा सार्वजनिक जीवन न सही दिशा देवे है। वह जनता रा नुमाइंदाओं सेवा नैतिकता और सकारात्मक सोच सागे विकास माय योगदान देवन री अरज कीनी। पाली जिला माय पुलिस री कालिका पेट्रोलिंग यूनिट री ओर नैरी नैरी छोड़ा महिलाओं री हिफाजत और मां नु जुड़िया कार्यक्रम राखी चिया। इस दौरान खुद री हिफाजत रा तरीका रो दर्शाव करी चियो। राजकॉप सिटीजन ऐप बारा माए जानकारी दी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई दीतवार ने आकाशवाणी प्रसारित करिया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए विचार बतावेला। आ हर महीना प्रसारित करिया जावन वाला ई कार्यक्रम री 136वीं कड़ी फैला। आप ई सारू सुझाव मुफ्त नंबर 1800117800 माथे 24 जुलाई ताई भेज सको हो। आखिर माय खास समाचार एक कर फेर सुन ले रहो। भारत और न्यूजीलैंड रा रिश्ता मजबूत बनावन सारू साल 2030 ताई दुनियो देशा बीच कारोबार दुगनो कर और 35,000 करोड़ रुपया रा लेवल ताई ले जावनो तय करी चियो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के प्री हल्का माय विकास रा 1,258 करोड़ रुपया रा काम शुरू की न और पूरा क्या काम जनता ने सौंपिया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कहो सरकार रो विद्यार्थियों रा भला माथे खास ध्यान। और विश्व जनसंख्या दिवस के मौके आज जयपुर माए राज्य स्तर रो कार्यक्रम राखी जियो। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो कहो। नमस्कार।
2: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, इस समय शाम के 7 बजे हैं। लीजिए सुनिए किसान भाइयों का अपना पसंदीदा ज्ञानवर्धक कार्यक्रम किसान वाणी।
3: प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: किसान वाणी सुनवा सगला किसान भाई पूजा बहन और
7: सुरे भाई दा घना घना
6: राम
7: राम राम राम
6: राम राम राम भाई घना दिन बाद मिलना हो यहाँ पर
7: बिल्कुल पूजा बहन देखो के अंदर बहादुरी हुए और बीजर मीनो की है कि लोगों ने बुआई तो कर दी है लेकिन हमें की है कि बुआई करिए तो कह रहे कह बीबी पौन निकले आए तो नीचे सो की है कि कने धूल उड़े बड़ी यहाँ पर ये तो ठाई जाए बेकड़ है उड़े बेगी है तो ये वैसे थोड़ी सी किसानों ने थोड़ी सी की है कि परेशानी भी है तो ये टाइम में मैंने हमें वो क्या करे कि थोड़ा थोड़ा पानी पाइड हुआ तो थोड़ी मिट्टी गीली रहे तो उड़े कोनी यही बात है बाकी आंधी तो जोरदार बाजे पड़ी
6: है आंधी तो बाजे पड़ी है हमें आपको ने बात है बरसात रही जब बरखा हुआ तो आप पर किसान वाले वास्ते अम्बल बरस जाए और आप पर हर जनमानस वास्ते ग्रामीण वासी वास्ते सबरे वास्ते बरसात होनी तो बहुत जरूरी है और आप हर बात करी कि भाई मिट्टी की जो उड़ रही है उग्र कारण आप थोड़ी अगर सिंचाई करता रह जाए तो मिट्टी में नमी रहे ये साथ में अगर आप किसान भाई मेड मत है पेड़ लगावे और वो भी छायादार और घना वृक्ष वाला पेड़ घनी छाया वाला वृक्ष लगावे तो उगे सूखी मिट्टी का उत्पादन रुक सके और दूसरी बात है कि जो ढलान वाली जगह है उस अगर मेड़ लगाए देवे तो पौने के बहाव में भी रोक सके ताकि मिट्टी वो बह करके नहीं जावे नहीं तो पेड़ लगाऊँ तो आप हवा में भी रोक से और नीचे जो जड़ों है वो नीचे पौने सूखी मिट्टी का उत्पादन न रोक से क्योंकि खेत पहाड़ी इलाका में तो सीढ़ीनुमा खेती होगी तो डड़ौन में होया करे अड़े आप इसको नहीं लेकिन अगर इस तरीके से डड़ौन की तरह आप खेतों बढ़ा दिया जाए तो आप इस आप मिट्टी का प्रदर्शन न रोक सकते।
7: बिल्कुल बुजा बहन बात तो सही है कि मिट्टी का प्रदर्शन तो आप तो बहुत ज्यादा होया करे हमारा मिलो ये वास्ते ये रोकने वास्ते सबसे मोटी यही है कि आप ये जो परंपरागत जो आप ये थी जो घास है या आप जो छोटा मोटा पेड़ पौधा है ये न की है कि आप उगे हिसाब से रेवण तो ताकि की है कि एक तो एक ये रे प्रकृति के अनुकूल आप रहो की है कि आपने ये में स्थिर भी रखिया करे बीजों घनी माथापड़ी कौन करनी पड़े पौनी बीजा पौना कौन पड़े तो जिके मैं आप बात करो सेवन घास है बीजी है ये अगर आप रहे चारों तरफ लागुड़ी हुए खेत रहे तो धूड़ न झाली तो उड़न कौन दे बीजे में धूड़ ना आगे भी कौन जाओ मेरे पास भी कौन जाओ बीजे में आप छोटा मोटा जो पौधा है जो कौन आजकल आप देखो तो आप बाजारी आवश्यकताओं भी पूरे करे तो ये वास्ते उड़ा चीजों ना तो की आप रखना है ठीक है नया पौधा भी अपन लगाना है लेकिन प्रकृति के अनुकूल जो भी है जो एक बात करो आप खेजड़ी लगानी चाहो तो खेजड़ी नवी ईजाद करी है आप थार शोभा ये तरीके

0: आप खिचड़ी लगाओ तो पहली बात है खिचड़ी यहाँ पर प्रकृति के अनुकूल है, तो यहाँ पर गर्मी है या औंधी बाजे तो चुके में वहाँ पर खिचड़ी
1: वातावरण वाला सेंड कर
0: उगेरे
1: देंगे
0: वास्ते यहाँ पर मतलब आप पर ये जो को भी वातावरण है उगेरे अनुकूल है,
1: अनुकूल है।
0: तो ये वास्ते नए तरीके रो जितो भी जो को इजाद हो रही है जिके मैं आप देखो यहाँ पर जो काजरी विभाग है अनुसंधान किया करे
1: जी
0: आप
1: बिल्कुल
0: पर ये थी जितनी भी वनस्पति है उगेरे माथे अनुसंधान करे और उगेरे बाद में वो में अगर आप कोई भी प्रकार उसमें पौधा है लगाना है तो अपना पौधा भी उपलब्ध कराया
1: पौधा है
0: करे,
1: सही कह रहे
0: चाहे
1: हो।
0: केर है चाहे सौंगरी तो ऐसे खेजरी है चाहे आप कह सको कि लौणो है या कोई भी है जो को अपना ए था है। तो ये वास्ते हमें आज समय जो को विज्ञान हो गया और वैज्ञानिक तरीके से जो को भी नई इजाद हो रही है जिसके में कम समय में मिना अच्छी अच्छी अपना पैदावार भी दे रहा पर खेत जो मिट्टी जो आप ना भी
1: रुपया
0: रोके,
1: लगे
0: तो ये वास्ते आज जो समय विज्ञान हो और वैज्ञानिक तरीके से अपना हालना पड़ से सदे की आपको और भी तेज गति से अपना विकास भी कर सो और अपने मिट्टी का प्रदान भी
1: रोक
0: रुक
1: सको।
0: सक। तो पूजा बहन देखो बातचीत आप चलती रहे और ही का बढ़िया सुन लो लोकगीत।

0: तो पूजा बहन देखो, आप बहुत ही बढ़िया एक सुनियो लोकगीत। लोकगीत तो भी देखो कि आप अरे जो को भी जितो भी काम हुए वीर में ना ये साथ बहुत जरूरी है ताकि आप कौम है नहीं वीर ठिया कौन पड़े। जब खेत और कौम है करे तो गीत वही जो देखिए गुनगुनाता रहे कौम होता रही। तो आप अरे तो लोकगीत और में आप कहानियां रचोरी वसूरी है। और जो मैंने देखो के आधे समय रमीनो देखो अर्थ दूर है और
1: बिल्कुल
0: अर्थ दूर मीनो किसान भाई जो को है वो नए नए तकनीकी रे साथ साथ में
1: आगे
0: आए
1: बढ़
0: दिन
1: रहे
0: कहीं
1: हैं।
0: इनके आगे बढ़ रही है।
1: बिल्कुल
0: वीरे साथ ही साथ में किसान जो को महिला बहनों है यहाँ पर है वो भी यहाँ पर बढ़ रहे हैं। वीरे साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा
1: बहुत सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रयासरत है कि यहाँ पर महिला जो को बहनों है वो हर क्षेत्र में आगे बढ़े और आर्थिक मरी उन्नति है।
1: आर्थिक
0: वीरे
1: रूप से
0: महीनों
1: आत्मनिर्भर हो जाए।
0: हाँ वीरे महीनों देखो कि यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि विभाग है, काजरी है, समय समय माथे नवाचार करे और महिला समूह बनावे और यहाँ कई प्रकार की जो को भी यहाँ पर परंपरागत वनस्पति है वो खाद्यान्न जो को भी बने वो और बाजार तक कौकर लावना है वो और बाजार नो आगे तक कौकर भेजना है। ऐसा सब चीज हम बनो सिखावदा रहे बीजे में अगर कौम रहे में पैसे रिजर्व है तो बैंकों से ऋण दिलाओ भी जो करो सब चीजों है समय समय बात है
1: करता
0: आज
1: रहे
0: समय हो रहे हुए। वो साथ ही साथ अगर बात करो तो विज्ञानी बात करो तो वैज्ञानिक तरीके से मीनो ड्रोन रो भी आज रो बहुत ही बढ़िया एक केस कोई के एडो कॉम आए हुए जो को महिला बहनों पर किसान बहनों कर सके। तो
1: अच्छा, आप तो ड्रोन दीदी योजना की बात
0: ड्रोन
1: कर रहे हो
0: ड्रोन
1: जी।
0: दीदी योजना की बात कर रहे हो
1: बिल्कुल
0: तो ये में की है एडो खास कुछ है कोनी
1: जी
0: क्योंकि जो को देखो कि आप पहले मोबाइल आए तो मोबाइल कोकर चला सो
1: जी
0: सब आज मोबाइल चला रहे हैं
1: जी बिल्कुल
0: धना धन चला रहे हैं। तो ड्रोन में तो कोई एडो खास कहीं है भी कोनी।
1: जी
0: ड्रोन में बहुत ही बढ़िया फायदा है खेत में छिड़काव करना है या कोई प्रकार ड्रोन से कोई भी सामान भी भेज लो एना सुना तो आज तो बहुत तरीके का ड्रोन आ गया
1: सही
0: और वो
1: बात
0: में
1: है।
0: महिला और भागीदारी बढ़ चढ़ सके ये वास्ते यहाँ पर प्रधानमंत्री जी भी समय समय माते ही बहुत ही बढ़िया प्रयास कर रहा है। और देखो बातचीत तो पर जारी जैसे एक आप सुनो भेंट
1: क्या कह रहे हैं
0: वार्ता आज आप आयडा हो गौ जाजिया जाजिया गौ है जो को खड़ी न रहे वास्ते जानियो जावे और एथ आलोक महाराज आज बैठा है बिराजिया है यहाँ रही है कोई पाठ भी जी है तो आप यहाँ सो बात कर सो की बायड़ो है कोकर है और क्या करेंगे थ्री जो को बीज बीज हो वे गेहूं बीजा बढ़िया हुए तो राम राम आलोक महाराज।
2: राम राम सर, राम राम। ए मोरे पुराने मायतरे पुछते नहीं पाटो है ई ना कहीं खड़ी न खड़ी ना में जो को हिस्सा हो वो ना पाठ क्या करे। तो ए जैसलमेर रियासत काल रहा सबसे मोटो खड़ी ने लीलापुरी 430 बीघा रो ये जैसलमेर जिले रो सबसे मोटो खड़ी और ये में गेहूं और चना हुए ए है जो बरसाती पानी हुए उन्हों में बंदोबंद भेड़ो कराया करें पछे इन्हें दियाली रे बाद थोड़ो ज्यादा हुए तो खाड़ा काट निकाल दो बाकी ये में गेहूं चना हुई और गेहूं चना बहुत पौष्टिक हुई बिना यूरिया रहा हुई ये में कदे खाद को देनी पड़े खाद मोरी बकरी गोना जो को भी बैठे ही करे गायों गोबर मतलब कुल नेचुरल चीज है। और ये जो को चनो है वो बहुत बढ़िया हुई जो को जैसलमेर में जो को भी बढ़िया फंक्शन हुए उन खाने में कौम लिया करे जैसलमेर में कोई भी रीति रिवाज में चने री सब्जी जरूरी है। और ये थोड़ो गेहूं हुए जो हुए कड़क है थोड़ो लाल पर बहुत पौष्टिक हुए और ये भी मोर आज गेहूं 50 रुपये किलो बिके और लोग लेवण आवे लेना भी लागे केनो मिले केनो को मिले। और ये मोर पुराणो बीज आज तक ओरो में संभाल बैठा मायता टाइम सु एक गुण राखो है री घरे और बाकी सब बेचो रहा खावण में लाए गनायत भाइयों ने भी दो और यही चणो है जो को बगर यूरिया रो बहुत काले कलर रो मैरून कलर रो चणो होया करे छोटी साइज हुए और ऐसा बरसाती पानी है। और ये ना मैं मतलब पहले तो गायों मतलब बढ़ता सुन डागो सु खड़ता हमें थोड़ो ट्रैक्टर हो गया जदे खड़ा है बाकी ये मसूर डी खड़ी ने आप रो टाइम रो मोनियोड़ो है जिके मैं जैसलमेर में बमणो रे हजूरी सबो रे पाटो बीजे है मेघवाड़ो रे बीजे रे मुसलमानो रे। और आज जैसलमेर में जो मुआड़ खड़ी है और ए पादरियो है खड़ी जो पिथलों में है ए लीलापुरी जाजियों में है डिडो कोटे मसूरी खड़ी ने ए पूरो खड़ी नो जो धान हो तो ए पूरे जैसलमेर न धपाओ तो आज भी ए खड़ी नोड़ा रोड़ा है पर हमें कुछ जगहों थोड़े पानी रोकने के कारण से थोड़ा पानी की आवक कम हुए पर तो खेती आज बराबर पूरी हुए।
0: बहुत ही बढ़िया। देखो आलोक महाराज, आप बहुत ही बढ़िया मनो जानकारी दे रहे हो। मैंने बताओ कि बीज को थो कहो है कि बीज थो थोर कने राख्या करो, तो बीज ना बस थो कोकर संरक्षित करो, क्योंकि बीज तो घनी टाइम राखनो पड़े।
2: बीज है मैं माटो हो मोटा माटला हो जो निंगली उड़ा जके ना पानी ठंडो को उई में ही राख्या करे, उई में ही थोड़ी बोनी जके ना राख कया करे, ए गात्या करे, या कदे कण थोड़ो कोई घुण बीजो या कीड़ो नहीं लागे एम थोड़ो जर्दो गात्या करे। जो चलमो वाला डोकरो कोड़ो तो वो गाता इम बोनी गातन सु मतलब राख गातन सु इम कीड़ो को लागे, ए अजो भी पद्धति हो रही हो पुरानी चल रही है।
0: ये सब बात थोड़ी सही है। हमें तो मनो ये बात कही कि भाई मोरो जो को गेहूं है वो ले लागे लेवन वास्ते, तो आज रो समय जो को है ज्यादा उत्पादन ने वास्ते कई प्रकार रा खनिज मतलब जैविक बीज दवाएं बीज छड़का छड़की करी थोरे ये थी रो कोई काम करे ये और मैंने हाल तक पुराना तरीका जपना हुई
2: ना। मोरे में 90% लोग तो आज पुराने में जाए, हमें जो को नई पीढ़ी आला छोरा है जो को कोई घर आला जो को खड़े करे तो वो बड़ा यूरिया बीजा छड़का है वो की देखे कि जब हमारे एक पार्ट में 12-13 कुंटन हो तो वो देखे मैं 20 कुंटन पो करो भिगो करो ये वास्ते वो का करे। पर वे सु जमीन थोड़ी मोरी खराब हुई मतलब आछ जिके न कोई माथे आवी रही पानी रहे, बाकी है गलत बाकी मैं कौन नोखो, बाकी आजकल लोग नोखे पड़िया क्योंकि लोग हमें केत के जीरो भी बावे और जीरे में ये में छिड़काव भी करे जहर रो और ये में यूरिया भी नौके पड़िया। पर मोहर आज जो पुराने पाटो है जो को पानी रे सेबे सुई जावे ये में कोई फुहारा को लगाओ कोई सब भगवान री देन है हुए सुवे।
0: एक बात हमने बताओ कि थों को पानी पाओ कोनी और फुहारा लगाओ कोन, तो ए पानी कोकर भी ए केड़ो सिस्टम पुरानो केड़ो है
2: पानी बरसात दी चार महीना मोहर है खड़ीन रे मई भेड़ो हेड़ो रे तड़ाई दई जो पानी न रेजो सिंचा करे जमीन लीली रही पछी न दियाली रो में कोई बचे तो ठीक है नहीं तो पछे खाड़ा काटे पानी काट दे बतो हुए तो ओज पानी सुबह जो को सेबो निकलिया करे जिके न मॉइस्चराइज कह लो ए सेबे सुई ए धान पक्या करे और कई मौसम ठंडो बढ़िया हुए सियाड़ो तो बढ़िया ये में धान लागे डोडे बढ़िया लागे फाल करे धान और बढ़िया पोंगरे।
0: बहुत ही बढ़िया अच्छी जानकारी दे रही हो कि पानी री थोड़ो पावर नहीं जरूरत रहे कोनी तो महाराज मने बताओ के जो ए जो थोड़ो जो एक तो मनो बतायो कि चनो बीजो गेहूं बीजो की में बावी करो या ये बारे में की है मनो बताओ खड़ी ना
2: में मैं खड़ी ना में मैं बाजरी भी बावे और बाजरी कम या बावे के पानी घणो भेड़ो करनो पड़े मनो चने केम सारे तो बाजरी की घणो पानी ढाले कोन तो उस बाजरी गड़ जावे जो को चढ़ाई री जगह है वो थोड़ी बाजरी बाया करा और वो बाजरी की है कि बढ़िया हुई टवाली भी कराए जो कहना पक्षियों न डावे तो ये में कोई बाजारी जो बीज है वो ले आवा कोन ए देसी बाजरी हुई जो मीठी हुई ये सटो सरो हुए जो थोड़ो छोटो होया करे ए पीली बाजरी होया करे ए खावा जती भावे बाकी गेहूं चढ़ावे जो बेचन न खाओ
0: कौन बताई कि बाजरी थोड़े खाओ जती भाव तो बाजरी ये बाजरी री जो किस्म है कई बार कहा करे कि मीठी बाजरी बीजी तो ए कई बाजरी है किस्म केड़ी है ए की भाव थोड़ी बाजार में कई
2: ये पीली बाजरी हुए और ये दोनों छोटो हुए बीजी बाजरी जो यूरिया आड़ो हो और ये में की है कि मिठास आए करे खावा से दूध दही मीठी लागे और एक कदे काली को पड़े पीली रहा करे भाव ये 40-38 रुपया भाव आया करे।
0: बिल्कुल तो जो बहुत ही बढ़िया था मोनो जानकारी दी खड़ी जोर बारे में और थोड़ी फसल के बारे में और मैं उम्मीद करो अनके जो थोड़ा बायोडा है जो बढ़िया हुए
2: हमके तो बहुत ही बढ़िया मौसम है धान घणो ही लागू है अगले हो भी कुंटन बड़े बतो ही धानो है हमें मैं होली आवे महीने बाद ये मैं दात्री घात काट सो हमें 2.5 लाख गए चना रहे और गेहूँ भी पक रहा है और पछे महीने बाद ये खड़ा बीजा ले सो और वो पछे मशीन ये ट्रैक्टर वाला थ्रेसर सु काट और नहीं अथे आवाज पर कूटे काटे धान
0: बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही बढ़िया बात हो के रहा हो कि भाई थ्रेसर करो या पछे कूट काटे भाई परंपरा के तरीका भी है पुराना भी है। आज उस समय विज्ञान युग है और विज्ञान युग रे मीनो की है कि जैविक माथे तो आप ध्यान दे रहे हैं भाई रासायनिक अपन करनो कोनी क्योंकि रासायनिक का कई प्रकार से दुष्परिणाम आ रहा है बीमारी भी हो रही है तो थो बताए कि जैविक है तो बढ़िया तरीको है। फिर भी जो आप आए था कृषि जगत रा बीजा भी है उम्र कदम मीटिंग जाओ ही कहू थे
2: ना कदे कर जाओ हाँ पर देखो हमारी पर सुनो करो सेंगो करो मंदिर मोरे आप रे के मोगन समय घणो है जमीन है मोरे आप पाटो भगवान पानी घणो है तो ये वास्ते मैं जैविक ना थोड़ो एक यूरिया ना कम कम किया करे
0: बहुत बहुत बढ़िया धन्यवाद आलोक महाराज, बहुत ही बढ़िया अच्छी जानकारी दी खड़ी लोहरे बारे में। तो कर जे राम राम
2: राम राम।
3: सुरेश भाई हाँ सुनिए आप है, बहुत ही ज्ञान वर्षक भेंट वार्ता और बातों तो घनी करनी है लेकिन आप और एक कार स्टूडियो से कह कार्यक्रम तो बखत हो गई है पूरा तो हमें किसान भाषी जैसी
0: राम राम, राम।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।

राज मारू।

सरे रात मारो परमांद नखरा लो आधी जा मारो परमांद नखरा।

छोटा नी बुढ़ा रे लाल

दी न तुम्हें छोटे सा हमारे लहरिए रो तुम्हारे लहरिए रो छोटी न तुम्हें छोटे सा मन लाइट लाइट मन लाइट।

दिल्ली वाला जाचली सा हरी सा सुनती रे।

अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल। श्रोताओं, इस समय रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं थ्री इडियट्स फिल्म।

अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाजों में अभी आपने गीत सुना, जिसे हमने लिया था फिल्म दाग दी फायर से। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं चुप चुप की, इस फिल्म से, जिसे गाया है सोनू निगम ने।

श्रोताओं, अभी आपने ये गीत सुना फिल्म चलते चलते। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय रात्रि के 8:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए सुगम संगीत। सुगम संगीत के आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं चंदन दास की गाई हुई गजलें।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत, और सुगम संगीत के आज के इस कार्यक्रम में हमारे कलाकार थे चंदन दास। आज हमने आपको चंदन दास की गाई हुई गजल सुनवाई। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में यानी रात्रि 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या, और रात्रि 9 बजे इवनिंग न्यूज, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान। फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला। और तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ऐतिहासिक 2 दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। 4 दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है।
2: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूँ हम सफल होंगे।
1: मंजुमीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसके अध्यक्ष होंगे। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। गोवा में मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 41 सदस्यीय समिति सरकारों, राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के विचार जानने के लिए राज्यों का दौरा कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के आज वियतनाम के फुक्वोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों में से 10 तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश से और 2 केरलम से थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटकों, 3 चालक दल के सदस्यों और 1 परिचारक सहित कुल 36 लोग सवार थे। 17 यात्रियों और चालक दल के 4 सदस्यों सहित 21 लोगों को बचा लिया गया और अस्पतालों में भर्ती कराया गया। दो जीवित बचे लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें गहन चिकित्सा देखभाल दी जा रही है। एक रिपोर्ट।
3: 32 भारतीय पर्यटकों और 4 चालक दल के सदस्यों को ले जा रही यह नाव होन में रूत नोगोई द्वीप से लगभग 400 मीटर दूर पलट गई, जिसके बाद बचाव अभियान शुरू किया गया। हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि खोज और बचाव अभियान जारी है। कुछ घंटे पहले हुई इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। वहीं प्रभावित परिवारों को जानकारी और सहायता प्रदान करने के लिए हो ची मिन्ह सिटी स्थित भारतीय दूतावास में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। यहां 8436903084915237141 और 8433452414 नंबरों से संपर्क किया जा सकता है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई इस दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायल

0: के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने व्यक्तित्व निर्माण में पुस्तकालयों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए युवा पीढ़ी से पुस्तकालयों से जुड़ने की अपील की है। आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने राष्ट्र निर्माण में पुस्तकालयों की भूमिका का उल्लेख किया और कहा कि वे आधुनिक शिक्षा के साथ साथ जन समुदाय में देश की संस्कृति और ज्ञान के प्रसार का सशक्त माध्यम है। एक रिपोर्ट।
1: केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय में 32,000 से अधिक पुस्तकों का संग्रह है। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय में शोधकर्ताओं के लिए समर्पित सुविधाएं, एक आधुनिक बहुउद्देशीय सभागार, समकालीन पाठन क्षेत्र, बाल क्षेत्र, एक शोध केंद्र और 1 करोड़ ऑनलाइन पुस्तकों तक पहुँच प्रदान करने वाला एक ई पुस्तकालय मौजूद है। पुस्तकालय में हर स्थान पर मुफ्त वाईफाई उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि कई मॉनिटर भी लगाए गए हैं जिससे आगंतुक अध्ययन के दौरान नोट्स ले सकते हैं, सामग्री डाउनलोड कर सकते हैं तथा अपने विचारों को और विकसित कर सकते हैं। पुस्तकालय अत्याधुनिक RFID आधारित पुस्तक प्रबंधन प्रणाली से सुसज्जित है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना ने देश भर में 2 लाख से ज्यादा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण मंजूर करने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। योजना के अंतर्गत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है और लगभग 11 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। नई दिल्ली में आज विशेष कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये उपलब्धि भारत की खाद्य प्रसंस्करण विकास यात्रा के अगले चरण के लिए मजबूत आधार है। श्री पासवान ने योजना के तहत मिलने वाली सीड कैपिटल की सहायता का भी उल्लेख किया। इसके माध्यम से 4,18,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की मदद की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय है माँ और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व जनसंख्या दिवस 2026 के अवसर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सर्वोत्तम पद्धतियों पर मासिक वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्वास्थ्य सेवा नवाचारों को साझा करना और उनका विस्तार करना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 भी अपनाई गई।
2: ट्रांसपोर्ट सेक्टर में विशेष रूप से हमारी रोड सेक्टर, रेलवे, जलमार्ग और एविएशन, एक क्षेत्र में कार्बन न्यूट्रल हम कैसे बने, अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल का भी उपयोग कैसे करें और प्रदूषण से तो मुक्ति मिलेगी भी और उसके साथ साथ जो नई नई टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, रिसर्च है, अलग अलग ब्रिक्स देशों में एक दूसरे में कैसे कोऑपरेशन करें, कोऑर्डिनेशन निर्माण करें, इसके बारे में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है और उसमें आगे की नीति भी तय हुई है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इन इलाकों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा शामिल हैं। इस बीच विभाग ने कल असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम और बिहार में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिनों में बारिश वाले इलाकों के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पूर्वी और पश्चिमी मध्य

0: प्रदेश में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश में कल लू की स्थिति हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के फिर से सक्रिय होने के बाद महाराष्ट्र में खरीफ फसल की बुआई में तेजी आई है। कृषि आयुक्त कार्यालय के अनुसार 6.51 हेक्टेयर पर बुआई पूरी हो चुकी है। इस बुआई में 7 जुलाई तक गन्ने को छोड़कर राज्य के 14.44 करोड़ हेक्टेयर औसत क्षेत्र के 45% हिस्से को सम्मिलित किया गया है। गन्ने की खेती सहित 6.58 करोड़ हेक्टेयर में बुवाई और रोपाई का काम पूरा हो चुका है। ये कुल क्षेत्र का 42% है। तूफान बावी के चीन के पूर्वी तट की ओर बढ़ने के कारण चीन में एहतियातन 6 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ये तूफान जापान के साकिशिमा द्वीपों और उत्तरी ताइवान से गुजरने के बाद अब चीन के लिए खतरा बना हुआ है। मेघालय अनानास महोत्सव 2026 का चौथा संस्करण नई दिल्ली के दिल्ली हाट में शुरू हो गया है। इसमें बाजार संपर्क को बढ़ावा देने के लिए राज्य के अनानास उत्पादकों को प्रदर्शित किया जा रहा है। और अब खेल खबरें। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। फ्रांस और स्पेन पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रीतिका प्रदीप और चिकिता तनिपार्थी की टुकड़ी ने आज तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में रजत पदक अपने नाम किया। टीम को महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा के फाइनल में कोलंबिया से हार का सामना करना पड़ा। वहीं प्रीतिका प्रदीप ने व्यक्तिगत महिला कंपाउंड में कांस्य पदक जीता। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में चेकिया की कैरोलिना मुखोवा और लिंडा नोस्कोवा आमने सामने हैं। वहीं पुरुष डबल्स के फाइनल में ब्रिटेन के हेनरी पैटन और फिनलैंड के हैरी हेलियावारा ने क्रोएशिया के मटे पाविक और अल साल्वाडोर के मार्सेलो अरेवालो की जोड़ी को 7-6, 7-6 से हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया है। भारत ने इंग्लैंड के साथ 5 T20 मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला साउथहैम्पटन में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 16 ओवर में 1 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर रखी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट मैच लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर खेला जा रहा है। दूसरे दिन आज भारत ने अपनी दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक बिना विकेट गंवाए 42 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की पहली पारी 170 रन पर सिमट गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi departs for home after concluding landmark New Zealand visit. Says bilateral trade agreement between two countries will accelerate India's journey towards a developed nation. 15 Indians killed in a boat mishap in Vietnam. President, Vice President and Prime Minister express condolence. West Bengal government forms 9-member committee headed by a retired judge to examine draft bill of uniform civil code. Legendary singer S. Janki, known as Nightingale of South India, passes away. IMD forecasts heavy rainfall across northern and eastern parts of the country for next 4 to 5 days. In FIFA World Cup, Norway to take on England, while defending champions Argentina to clash with Switzerland in quarterfinals. And Indian women's compound team clinches silver medal at Archery World Cup Stage 4 in Madrid. Prime Minister Narendra Modi has concluded his historic two-day visit to New Zealand and departed for India. The visit, the first by an Indian Prime Minister to New Zealand in over four decades, gave a major boost to bilateral ties. During the visit, Prime Minister Modi held talks with his New Zealand counterpart Christopher Luxon. The two leaders witnessed the exchange of five memoranda of understanding in areas including defence, tourism, sports, disaster management and dairy and animal husbandry. A major highlight of the visit was the community event at Auckland's Spark Arena, attended by over 10,000 members of the Indian diaspora. Addressing the gathering, Mr. Modi stated that the future of India and New Zealand is intertwined and the bilateral trade agreement will accelerate India's journey towards a developed nation.
2: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है. भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है. हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है. हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है. पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे.
1: On the occasion, Prime Minister Luxon described India as a trusted friend, praised the contribution of the Indian community to New Zealand's progress, and appreciated Prime Minister Modi's leadership. Prime Minister Modi thanked Prime Minister Luxon for his warm hospitality and said the visit had opened a new chapter in India-New Zealand relations. Referring to the 40-year gap since the last visit by an Indian Prime Minister, he said the next visit would not take so long.
2: 40 साल के बाद कोई भारतीय पीएम न्यूजीलैंड की धरती पर आया है. ये मेरा सौभाग्य है. मैं न्यूजीलैंड के सभी निवासियों के लिए, आप सभी लोगों के लिए 140 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं लेकर आया हूँ. साथियों, प्रधानमंत्री के रूप में भले ही मेरा पहला न्यूजीलैंड दौरा है, लेकिन 25-30 साल पहले जब मैं किसी सरकार में भी हिस्सा नहीं था, सार्वजनिक जीवन में मुझे कोई जानता नहीं था, तब भी मुझे यहाँ न्यूजीलैंड आने का अवसर मिला था.
1: डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह टुडे सेड दैट इंडिया इज बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग सेल्फ रिलायंट एंड फ्यूचर रेडी डिफेंस फोर्स बाय स्ट्रेंथनिंग बोथ कन्वेंशनल डिफेंस कैपेबिलिटीज एंड एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज. He said future wars may employ artificial intelligence and other emerging technologies, but they will ultimately be won by national resolve, courageous soldiers, and capable military power. Mr. Rajnath Singh was addressing the commissioning ceremony of the INS Mahendragiri, the 6th Project 17A Indigenous Stealth Frigate, into the Eastern Fleet at Vishakhapatnam. He said the commissioning marks another milestone in strengthening India's maritime power and indigenous defense capability. 15 Indian tourists were killed after a boat capsized near Vietnam's Phu Quoc Island today. The Embassy of India in Vietnam confirmed that the deceased include 13 men and 2 women. In a post on social media, the embassy shared the list of the victims, stating that the names were provided by the Vietnamese authorities. According to the embassy, 10 of the deceased were from Tamil Nadu, 3 from Andhra Pradesh and 2 from Kerala. The boat was carrying 36 people, including 32 Indian tourists, 3 crew members and 1 attendant. 21 people, including 17 passengers and 4 crew members, were rescued and admitted to hospitals. 2 survivors remain in critical condition and are receiving intensive medical care. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed condolence at the tragic accident. Expressing sadness at the boat accident, the President offered condolences to the grieving families and prayed for the speedy recovery of the injured. The Pradhan Mantri Formalization of Micro Food Processing Enterprises scheme has crossed the milestone of sanctioning loans to more than 2 lakh micro food processing enterprises across the country. The scheme has leveraged project investments of over 20,300 crore rupees and generated nearly 11 lakh direct and indirect employment opportunities. Addressing a special event in New Delhi today, Union Minister for Food Processing Industries, Chirag Paswan, said the achievement is not merely a milestone to celebrate, but a strong foundation for the next phase of India's food processing growth story. Mr. Paswan also underlined that the participation of women entrepreneurs at nearly 44% of all beneficiaries reflects the true spirit of women-led development, a cornerstone of Viksit Bharat. Union Railway and IT Minister Ashwini Vaishnav today announced plans to develop Hyderabad as a major high-speed rail hub, with proposed bullet train corridors linking the city to Pune, Chennai and Bengaluru. Speaking at an industry event in Hyderabad, he said the high-speed rail network will significantly reduce travel time and strengthen connectivity among South India's major economic centres.
3: Three high-speed bullet train corridors to Hyderabad, to Telangana, which will totally change the landscape. If you see, from Pune to Hyderabad, from Hyderabad to Chennai, from Hyderabad to Bengaluru, this will become a major game changer for entire region, and Hyderabad will become the high-speed hub. This will totally change the landscape. It will bring huge amount of development. The economies of this entire region will become fully integrated.
1: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back, here with us on the news at 9. The West Bengal government has formed a 9-member committee to examine the draft bill of a uniform civil code for the state. A notification has already been published in this regard. Justice retired Ranjana Prakash Desai will be the chairperson. Former Meghalaya Governor Tathagata Roy is one of the members of the committee. Legendary playback singer S. Janaki, fondly known as the Nightingale of the South, passed away at the age of 88 today in Mysuru, Karnataka, after battling age-related health issues. Spanning over 6 decades, her career saw her singing in nearly 48,000 songs in multiple languages, including Kannada, Tamil, Telugu, Malayalam and Hindi. She was the voice behind generations of film stars. She collaborated with legendary music directors like Ilayaraja, M.S. Vishwanathan, E.R. Rahman, among others. She is conferred with 33 state film awards and recipient of Padma Bhushan. Vice President C.P. Radhakrishnan has said that differences of opinion are natural in a democracy, but commitment to the constitution and public welfare must remain paramount. Addressing the inaugural session of the orientation and training program for members of the Bihar Legislative Assembly in Gayaji, Mr. Radhakrishnan called upon public representatives to accord the highest priority to democratic values, transparency and accountability towards the people. The chairman of the Joint Parliamentary Committee on One Nation, One Election, Member of Parliament P.P. Chaudhary, today said that holding simultaneous elections to the Lok Sabha and state assemblies would strengthen governance, reduce expenditure and benefit the country's economy. Addressing media persons in Goa, Mr. Chaudhary said the 41-member committee representing all major political parties is touring states to gather views from governments, political parties, constitutional experts, civil society and other stakeholders. Goa is the 9th state being visited by the committee. Union Ministry of Health and Family Welfare has launched the monthly webinar series on best practices under the National Health Mission on the occasion of World Population Day 2026. Envisioned as a year-round knowledge-sharing platform, the initiative will bring together states and union territories to present successful innovations, exchange implementation experiences, and accelerate the adoption of evidence-based practices for strengthening healthcare delivery nationwide. Iran's Supreme Leader Ayatollah Mujtaba Khamenei today vowed to avenge the death of his father Ayatollah Ali Khamenei, who was assassinated in U.S.-Israeli strikes earlier in the year, describing it as the responsibility of the nation. He also praised the massive turnout at the late leader's funeral as historic. In a message issued on the occasion of the funeral and burial of Ayatollah Ali Khamenei, Mujtaba Khamenei declared that those responsible for the killing would not escape justice. Meanwhile, U.S. President Donald Trump threatened Iran today after the funeral of Ayatollah Ali Khamenei saw open calls for his killing. In a social media post, Trump made the comments after senior U.S. officials demanded

बाद में जाने क्या हुआ, ओ बाद में जाने क्या हुआ, अरे बाद में जाने क्या हुआ, ना जाने क्या बात हुई, बाद में जाने क्या हुआ।

कसक दिल में बसा के जलाया। दिन तो गुजर जाएगा, दिन तो गुजर जाएगा।

0: इतना तो याद है मुझे,
1: इतना तो याद है मुझे,
0: इतना तो याद।

महबूब की मेहंदी इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना फिल्म संगीत कार्यक्रम में, जिसे गाया मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने। इसी गीत के साथ हमारा फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल। श्रोताओं, अब से थोड़ी देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे, जिसे हम दिल्ली केंद्र से डिले करेंगे।

संस्कृति भारती में आपका स्वागत है। मैं हूँ नवोदिता। वर्षा भारत के लिए केवल एक ऋतु नहीं बल्कि नवजीवन का उत्सव है। बादलों का आगमन, धरती की सोंधी गंध, खेतों की हरियाली और लोकगीतों की स्वर लहरियाँ, ये सब मिलकर हमारी सांस्कृतिक स्मृति का हिस्सा बनते हैं। भारतीय मनीषा ने जल को सदैव जीवन का मूल माना है। ऋग्वेद का ये मंत्र कहता है, आपो हिष्ठा मयो भुवा, यानी जल ही सुख, समृद्धि और कल्याण का स्रोत है। यही कारण है कि भारत ने जल का केवल उपयोग नहीं किया, उसका सम्मान भी किया। कहीं बावड़ियां बनी, कहीं तालाब, कहीं कुंड, तो कहीं मंदिरों के सरोवर। वर्षा की हर बूंद को संजोना हमारी जीवन पद्धति

0: कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, यानी जहाँ भी वर्षा हो जब भी वर्षा हो उसकी प्रत्येक बूंद को सहेजिए। प्रधानमंत्री ने मन की बात के अनेक संस्करणों में भी जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आग्रह किया है। उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में तालाबों के पुनर्जीवन, वर्षा जल संचयन और सामुदायिक प्रयासों के प्रेरक उदाहरणों का उल्लेख करते हुए कहा है कि जल संरक्षण तभी सफल होगा जब ये शासन का नहीं समाज का संकल्प बने। ये अभियान वस्तुतः आधुनिक भारत को उसकी ही प्राचीन जल संस्कृति से जोड़ने का एक अद्भुत प्रयास है। बारिश की हर बूंद प्रकृति का उपहार है, उसे सहेजना केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति के उस मूल भाव का सम्मान भी है जो हमें सिखाता है कि प्रकृति से जितना लें उतना उसे लौटाएं भी। प्रकृति के प्रति श्रद्धा भारतीय संस्कृति को उसकी अनोखी अनूठी पहचान देती है। यही सांस्कृतिक चेतना हमारे पर्वों में भी दिखाई देती है, हमारे उत्सवों में भी दिखाई देती है, जहाँ आस्था और लोक जीवन एकाकार हो जाते हैं।
1: यो यो यो यो नथो चोही नोंदी।
0: इसी क्रम में पुरी की विश्व विख्यात श्री जगन्नाथ रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारतीय सांस्कृतिक समावेशिता, लोक आस्था और शिल्प परंपरा का एक अद्भुत उत्सव है। और इसी पर केंद्रित है हमारी अगली प्रस्तुति नित्य नीलाचल।

0: जैसा शरीर वैसा देह, अर्थात शरीर के लिए जो आवश्यक है देह पूजन भी उसी विधि के अनुसार होना चाहिए। इस भावपूर्ण विचारधारा का प्रतीक है उड़ीसा के पुरी में अनुष्ठित हो रही यह नवदिनात्मक यात्रा। भक्त और भगवान के बीच सारे व्यवधान को तोड़कर प्रभु बलभद्र, देवी सुभद्रा और प्रभु श्री जगन्नाथ रथारूढ़ होकर रत्नवेदी को छोड़कर पूरी बड़दांड में यात्रा करते हैं। श्री गुंडिचा मंदिर में 7 दिन रहकर बाहुड़ा यात्रा में भाई बहन श्री मंदिर को वापस आते हैं। यह यात्रा भाव की यात्रा है, समन्वय की यात्रा है। कठोपनिषद में कहा गया है, आत्मानं रथिनं विधि शरीरं रथमेव तु। रथ यात्रा की महानता के बारे में गवेषक अशोक पांडे कहते हैं,
1: भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को बड़े आकार में अनुष्ठित होती है। प्रत्येक वर्ष सरस्वती पूजा यानी वसंत पंचमी से काष्ट संग्रह का कार्य शुरू होता है। रथ निर्माण में लगभग 205 प्रकार के सेवाएं कार्य करते हैं।
0: साल में एक बार अनुष्ठित इस रथ यात्रा की प्रस्तुति बहुत पहले से होती है। श्रीनगर के सम्मुख स्थित रथ खला में पवित्र अक्षय तृतीया से ही रथ का कार्य आरंभ हो जाता है। इसमें विश्वकर्मा महाराणा, रूपकार, चित्रकार, भोई सेवक, करतिया सेवक, ताम्र विशोई, ओझा महाराणा और अन्य सेवक हिस्सा लेते हैं। रथ निर्माण के परंपरा के ऊपर प्रकाश डालते हुए पुरी के मुख्य विश्वकर्मा सेवक विजय कुमार महापात्रा जी का कहना है,
2: मैं नंदीघोष रथ का मुख्य महाराणा सेवक हूँ। 1971 से हमें कार्य कर रहा हूँ। भगवान जी जो रथ का काम होता है ना, ये हर साल बैसाख महीने अक्षय तृतीया तिथि से शुरू होता है और आषाढ़ श्रीगुंडीचा के पहला दिन नेत्र उत्सव के दिन समाप्त हो जाता है। तीनों रथ में सबसे प्रथम का लकड़ी है फांसी। फांसी का लकड़ी इस्तेमाल किया जाता है फांसी। इसके बाद ढोरा और एक लकड़ी है, इसका नाम है असन। फांसी, ढोरा, असन की लकड़ी में ये तीनों रथ निर्माण किया जाता है और मही सिमली लकड़ी में ये निर्माण किया जाता है। हमारा विश्वकर्मा के साथ सहयोग करने के लिए अर्थात लकड़ी को उठाने के लिए भोई सेवक है। इसके बाद लोहे का काम करने के लिए कमार सेवक है और चित्र का काम करने के लिए चित्रकार सेवक है।

0: रूपकार सेवक है, लकड़ी में रूप देता है। महाराणा भोई कमार रूपकार चित्रकार सेवक के द्वारा यही रथ का कार्य संपन्न होता है। अक्षय तृतीया तिथि से जब भगवान जगन्नाथ जी का रथ का कार्य शुरू किया जाता है, इसके बाद रथ काम शुरू होता है। इसके बाद जो नृसिंह चतुर्दशी तिथि आता है और एक काम जोड़ दिया जाता है, इसका नाम है गुज्जर। जगन्नाथ जी का चंदन यात्रा होता है ना अक्षय तृतीया तिथि से, जो भोर तिथि आएगा चंदन यात्रा के आखिरी दिन, आखिरी दिन में दोनों पहियों में एक अक्ष संयोग किया जाता है प्रभु के आज्ञामण आने से बाद। हर कार्य यहाँ पर प्रभु के आज्ञा से होता है। तो अक्षय तृतीया तिथि से प्रभु आज्ञा देता है, मेरा रथ तो शुभारंभ करो। इसके बाद रथ का कार्य शुरू किया जाता है। भोरी तिथि में प्रभु आज्ञा देंगे, मेरा रथ को खड़ा करो। इसके बाद दोनों पहिया में एक अक्ष संयोग किया जाता है। नेत्रोत्सव तिथि से प्रभु आज्ञा देंगे, मेरा रथ को मेरे दरवाजे पर लाओ। आज्ञा माल आने से बाद खींच के ले जाएंगे प्रभु दरवाजे के पर। जगन्नाथ जी का रथ सबसे बड़ा है और बलभद्र जी का रथ जरा छोटा है, सुभद्रा माई का रथ सबसे छोटा है। जगन्नाथ जी का रथ में 16 पहिया लगता है, बलभद्र जी का रथ में 14 पहिया लगता है और सुभद्रा माई का रथ में 12 पहिया लगता है। इस तीनों रथ ऐसे बना जाता है और कोई जगह में इसी तरह रथ नहीं बना जाता है।
1: श्रीक्षेत्र धाम में भक्त के साथ भगवान के अपूर्व मिलन की दो मुख्य यात्राएं होती हैं। पहला स्नान यात्रा, दूसरा गुंडीचा यात्रा। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मंदिर के स्वर्ण कुएं से 108 घड़े जल से श्री बलभद्र, देवी सुभद्रा, श्री जगन्नाथ और श्री सुदर्शन को स्नान कराया जाता है। इस दिन प्रभु श्री जगन्नाथ गजानन वेश धारण करते हैं। आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा से तीनों ठाकुर अणसर घर में रहते हैं। उस समय अणसर घर की पट्टी में तीनों ठाकुरों की एक चित्रपट की पूजा की जाती है, इसे पट्टदिया कहते हैं। दैतापति सेवक हलधर दास महापात्र के अनुसार,
2: मैं वो हलधर दास महापात्र बलभद्र जी का 12 ग्रही दैतापति हूँ। सब स्नान का बाद में अंदर जाते हैं, हमारा सेवा शुरू होता है, श्रृंगार करते हैं, वेश करते हैं। रात को समय भगवान अनस्त्र पिंडी को चल जाते हैं। ये सेवा हमारा अमावस्या तक सेवा होता है। ये सेवा 15 दिन में चलते हैं। यहाँ अनस्त्र का घर में शुक्ल वस्त्र परिधान होगा और शुक्ल फूल लगी होगा। एकादश का दिन महाप्रभु जी की रंगीन परिधान होगा। आयुर्वेद पक्षी पांचन होता है, आम केला कनस सपुरी छपटा, ये 5 प्रकार फल होता है, पक्षी होता है, मुख और नारियल का पूरा जल है, लवंग जायफल दे के चंदन दे के इसको पानी खिलाते हैं और पान भी खिलाते हैं। जितना शब्द होता है कीर्तन का भजन का चूज बाजा सब गाना होता है, मंदिर का अंदर में कुछ चलेगा। सुस्त होने का बाद में रथ यात्रा होगा, द्वितीय तिथि में रथ का ऊपर जाएगा।
1: अणसर खत्म होने के बाद प्रभु आरोग्य लाभ करते हैं। साधारण मनुष्य के जीवन में जो घटित होता है वही शिव मंदिर में भी होता है। अणसर के बाद नेत्रोत्सव, उसके बाद रथ यात्रा। ताल ध्वज, देवदलन और नंदी घोष तीनों रथ सुशोभित होकर सिंह द्वार के सम्मुख प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं। धाड़ी पहंडी में कब आएंगी चतुर्धाम मूर्ति?
3: रथ खला से तीनों ही रथ सज धज करके तैयार करके लाए जाते हैं और शिव मंदिर के महाद्वार के ठीक सामने उत्तर दिशा की तरफ मोड़ करके खड़ा कर दिया जाता है। ऐसे में भगवान जगन्नाथ अपने रत्न वेदी का त्याग करके बाहर निकलते हैं और पहंडी विजय करते निश्वानंद सरस्वती महाराज अपने परिकरों के साथ तीनों ही रथों का वे अवलोकन करते हैं और रथों पर जाकर के अपना आत्मनिवेदन चतुर्धा देव विग्रहों को देते हैं। उनके वापस आने के बाद सीधे श्री नाहर से पुरी के गजपति महाराज भगवान जगन्नाथ के प्रथम सेवक तीनों ही रथों पर वे सोने के मुठ वाले झाड़ू से छेरा पोरा करते हैं और इस तरह से भगवान जगन्नाथ जब जाते हैं अपने गुंडीचा घर में जाकर वहाँ 7 दिन तक विश्राम करते हैं, उसको गुंडीचा महोत्सव कहते हैं।

0: रथ यात्रा की समाप्ति बाहुड़ा यात्रा में होती है। यात्रा तो समाप्त हो जाती है पर प्रभु की अनंत लीला सिमंदर के रत्न सिंहासन में चलती रहती है। सिमंदर के शिखर पर पतित पावन की ध्वजा लहराती रहती है। उसी ध्वजा में सारे विश्वास का समन्वय होता है। ऐसा लगता है जैसे सबकी सांसें तरंगित हो रही है महोदधि में। और कभी इस दृश्य को शब्दबद्ध करते हुए भाव विभोर होके गाने लगते हैं, देखो ये नित्य नीलाचल सभी तीर्थों का संगम स्थल, देखो ये नित्य नीलाचल सभी तीर्थों का संगम स्थल।
1: ये था लघु रूपक नित्य नीलाचल। मूल उड़िया आलेख तरुण कांति राउत का था, जिसका हिंदी अनुवाद किया डॉक्टर रश्मि रेखा जिना ने। वाचन और प्रस्तुति थी प्रज्ञा पारमिता साहू की। आकाशवाणी कटक से। भारत की सांस्कृतिक विविधता का एक सुंदर पक्ष ये भी है कि यहाँ ऋतुएं केवल मौसम नहीं बदलती बल्कि अपने साथ स्वाद, रंग और उत्सव भी लेकर आती हैं। इसी स्वाद और विरासत की एक अनूठी झलक मिलती है दिल्ली में हर साल आयोजित आम महोत्सव में। यहाँ देश के अलग अलग राज्यों से लाई गई सैकड़ों किस्मों के आम न केवल प्रदर्शित किए जाते हैं बल्कि भारतीय बागवानी, कृषि अनुसंधान और फल संस्कृति की समृद्ध परंपरा का भी परिचय कराते हैं। पत्रिका में हमारी अगली प्रस्तुति है इसी आयोजन पर। ये आम कुछ खास है।
2: मैं डॉक्टर एके सिंह, एक्स प्रिंसिपल साइंटिस्ट, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और मैंगो के विषय में आपको ये बताना चाहूंगा कि आम महोत्सव जो हमारा करने का जो उद्देश्य होता है वो होता है कि हम पूरे कंट्री से सभी जगहों से एक दूसरे को एक मिठास के रूप में ये परिचित करा सके। और चूंकि एक आम ऐसा फसल है जो की ट्रप तक लेके सब ट्रप चल रही है, माने उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, हर जगह उगाया जाता है। केवल अंतर ये होता है कि हर जगह की जलवायु में प्रजाति विशेष का विशेष महत्व होता है और उस शुष्क जलवायु में जो क्षेत्र विशेषता होता है उसमें आम का स्वाद अलग ही होता है। तो हमारा उद्देश्य होता है कि हर क्षेत्र के आम यहाँ पे आए और वो अपनी मिठास पूरी जनता के बीच ले जाए और जनता सभी प्रजातियों के बारे में जान सके कि उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम तक कौन सी प्रजातियाँ उगाई जाती है। इस बार देखिए कोचे तो आए थे 25, 20 पार्टिसिपेंट ऐसे आए थे जो ग्रोवर्स थे और 6 पार्टिसिपेंट ऐसे आए थे जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थे। और वो हमने कवर किया था उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली, तो 5-6 स्टेट ही हमने पूरा कम्प्लीट कर दिया।
3: वैज्ञानिक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, हमारे पास हमारे संस्थान से विगत 15 वर्षों में लगभग 10 संकर की गई है आम की। उषा सूर्या है, उषा सूर्या एक सिलेक्टर है, बाकी सारी संकर किस्में है। अरुणिमा है, आपका प्रतिभा है, श्रेष्ठ है, पीताम्बर है, लालिमा है, अभी रिसेंटली हमने पीठा भी रिलीज की है। मोस्टली अम्रपाली और संसेशन के संकरण से बना है पर कुछ किस्में दशहरी और लाल सिंगरी भी। जैसा आप सभी देखे थे आप महोत्सव यहाँ चल रहा है और आम के नाम से देखे दिल्ली की जगह में कितने लोग, कितनी भीड़ यहाँ हुई। आम केवल एक फल नहीं है, आम एक इमोशनल कनेक्शन है लोग। जैसे आप यूपी की बात कर लें तो वहाँ दशहरी है, आप वेस्ट बंगाल की बात कर लें वहाँ मालदा को फेमस है, बिहार में जरदालू है, किशनभोग है, आप साउथ में चले जाए आंध्रा में चले जाए तो वहाँ बैगना पल्ली है, महाराष्ट्र में चले जाए तो अल्फांसो है, गुजरात में केसर है। तो ऐसे ही विभिन्न किस्में हैं जो मिठास अपने स्वास्थ्य से लोगों को जोड़ती है।
4: मेरा नाम भरतराज सिंह यादव है, मैं एमपी कठेवाड़ा से आया हूँ। ये साइज में सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा आम है और ये हमारे कठेवाड़ा में होता है, हमारे गांव में। और भी बहुत सारी वैरायटीज है लेकिन हमारे सीजन अभी खत्म हो चुका है तो हम लोग इसी लेके आए।
5: मेरा नाम रामकिशोर मौर्या है, मैं मलिहाबाद लखनऊ से हूँ। हमारे यहाँ अनेक प्रकार की प्रजातियों के आम पाए जाते हैं जिनको लोग जानते नहीं, इसलिए दिखाने के लिए कि लोग जाने पहचाने। हम अकेले 250 वैरायटी यहाँ आम की वैरायटी प्रस्तुत किए जिसमें खट्टे मीठे हैं और कुछ टूट कर खाने वाले हैं, कुछ काट के खाने वाले हैं, कुछ अचार की वैरायटियाँ विशेष कर जो कि सभी जातियों का अपना एक अनूठा स्वाद है, ताकि इन लोगों को मार्केट में जहाँ भी दिखे उसका स्वाद ले और खाए, तभी उसके बाद हमारे किसान की आमदनी बढ़ेगी। जो हमारी पुरानी हमारे पैतृक वैरायटियां है वो जीवित रहने अन्यथा नियुक्त हो जाएंगी।
6: मैं तकीम चंदन नकली मलियावाल लखनऊ से आया हुआ हूँ। मेरा नाम शेख शादाब अली है। मेरा पुरखों से ये काम चला आ रहा है नर्सरी का, जो अलग अलग वैरायटी को डेवलपमेंट करते हैं, तैयार करते हैं, पौधे नए नए निकालते हैं। हमारे पास तमाम सी वैरायटी हैं, सुर्खा बर्मा है, गुलाब खास है, हुसनारा है, दशहरी है, रामकेला है, चन्नत पसंद है, साजिद पसंद है, बनारसी है, रस कपूर है, तमाम सी वैरायटी, कितनी वैरायटी है कि यहाँ पे आपको हम गिनाते हुए थक जाएंगे। अदर की तमाम सी ऐसी वैरायटी है जो आप एक दूसरे को मिलाती है, उसकी मिठास इतनी मिठास होती है जो दिल को खुश कर देती है और दिलों में मोहब्बत पैदा कर देती है। जो भी आम खाते हैं और दिल से हमको दुआएं देके जाती
1: है। ये आम कुछ खास हैं। दिल्ली के वार्षिक आम महोत्सव के बहाने भारत की फल समृद्धि, कृषि परंपरा और विविधता की रोचक यात्रा अभी आपने सुनी। सहयोग श्रीनाथ दीक्षित का था। भारत की सांस्कृतिक धरोहर केवल परंपराओं से नहीं, उन कलाकारों से भी समृद्ध होती है जो अपनी साधना से लोक और शास्त्र के बीच एक सेतु बन जाते हैं और देह के परे जाकर समय पर अपने हस्ताक्षर अंकित कर देते हैं। दुख की बात यह है कि बीते कुछ समय में ऐसी ही दो विशिष्ट विभूतियों ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। पहले बात लोक गाथा की विश्व यात्री पद्म विभूषण तीजन बाई की। छत्तीसगढ़ की लोक गाथा पंडवानी को गांव की चौपाल से अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाने वाली तीजन बाई ने अपने सशक्त गायन, प्रभावशाली अभिनय और अद्भुत कथन शैली से लोक कला को नई पहचान दिलाई। उन्होंने परंपरागत सीमाओं को तोड़ते हुए पंडवानी की कपालिक शैली को अपनाया और अपनी अनूठी प्रस्तुति के माध्यम से भारतीय लोक नाट्य को विश्वव्यापी सम्मान दिलाया। उनके स्वरों में लोक जीवन की मिट्टी, महाभारत की कथा और भारतीय लोक संस्कृति की आत्मा एक साथ सुनाई देती है। सुनते हैं तीजन बाई से आकाशवाणी रायपुर के लिए रिकॉर्ड किया गया उनका एक पुराना साक्षात्कार।

करना था ये जो हमारा ग्रुप उहे के दिन हमें वो उस दिन हम अटारी में रहे फिर हमला छोटपन में पकड़ के जनियारी में ले गई वहाँ हमारा लालन पालन हुई हमार माँ के नाम सुखबती और पिताजी के नाम सनुक लाल रही से छह भाई बहनी रहे हैं दो भाई चार बहनी गरीब होने के नाता ऐसे गुजारा बहुत दिन ले चलत रही से अब जब मैं बड़े लड़की हूँ तो संज्ञान हो गए तो लोग ले चला छोड़ के चल दे भाई बहनी बन के पूरा देखभाल मैं करूँ हमन छह भाई बहनी में कोनो पढ़े लिखे नहीं है हमार दाई है बांस गीत गावे और हमार बाबू बांस बजावे माँ के साथ गुनगुनाए के जो आदत पड़ी तो ऐसे पड़ी कि वो एकदम लट लग गए लट लगे तो मैं कर्मा ददरिया सुआ पड़की बांस गीत गा लेते रहे हूँ माँ गावे है आरू धन दिया के बारू कुदरिया जी बारू कुदरिया पैरी खबोसा चले जाए हो पैरी के बूढ़े राजा या झनकारे राम राम पैरी के बूढ़े भैया या झनकारे राम राम अहो लाला सोला चेली के झूमी जाए हो बाटी भोरा गब्बड़ खेलत रही हूँ कबड्डी खेलत रही हूँ सुर खेलत रही हूँ खो खो खेलत रही हूँ तो रास्ता में मोर नाना के घर पड़त रही से छोटे नाना के जनियारी गाँव में तो छोटे से नौकर झोंपड़ा रही से ते में भीतर में बैठ के पंडवानी के गायन गात रही से लाल पाधी नाना जी के नाम और वो ऐसे टेर लगाई द्रौपदी बन के श्री कृष्ण जिला तो वो आवाज सुने के बाद तो मोर रूम रूम एकदम खड़ा हो गई अरे बाप रे आज कतेक सुंदर एक आवाज और कतेक बढ़िया भगवान ला पुकारा थे अब ये लोग मन हा बिजलाल नाम रही से पर भगवान के नाम जपे ना तो जपरी कहा ग्यारह तेरह के लगभग न रहे हूँ मैं तो ये बच्चा कतेक सुंदर है तब दिल में लगा हुए तो सुने पर आते कि ये वो छोटे से चटाई निकाली सब कथे में बैठ बेटा इनमें बैठ अब कतका कन सुने ऐसे कि कहीं तो एक हफ्ता के जतका कहानी सुनाए रही से नहीं पहला पाँच दस मिनट में खत्म कर दियो तो नाना के आंखी में आंसू आ गए उसी समय वो बोली कि बेटा मोर घर में हीरा है हे प्रभु और मैं नहीं परखी सकी हूँ इसी की आज भी गुंजा थे तेर के आधार पे ही मैं टेर लगा था जब पंडवानी जाता हूँ तो

सबसे गंगा रूपी जो जनता जनार्दन के सम्मान हमें लगने थे वो गदगद करने थे। ऐसे लग जाते कि हम धरती में नहीं के स्वर्ग में हम कहा ऐसे लागते वो मन लागते भाई। जब अच्छा कथा में हम डूब के उनमन लक्ष्मनाथन और उनमन कोई कोई जगह रोए धोए की बात है उनमन रोना शुरू कर देते। हम उसका सम्मान पाके अपन आप ला हम पूरा ऊपरी ऊपर अर्पण कर देते। हम लग कई कौन सी मिट्टी बना के हम लग भेजी कैसे हमला सब लोग के सम्मान और प्यार मिला थे ये में अब बड़ा आनंद आते आज भी वही है आगे बढ़ मालिक के हाथ।

0: मैं तो एक तो नारी हूँ है ना, और नारी के पात्र कहे माँ मोला कोई कष्ट नहीं पड़े और आनंद आते गाता, पर जब भीम के रोल कर था तब दो गुना आनंद आते। मैं अपन आप लग मैं भीम समझे लग जाता हूँ कि मैं ही भीम हूँ कि उसकी जो शिला गदा पकड़ के रिंग था, तेकर कारण वही है कि मैं सचमुच में वो समय मैं भीम की रोल नहीं करके मैं खुद भीम हूँ ऐसे अनुभव लागते। कहते हैं तो मैं पनवाली ला आजकल के आधुनिक युग में आधुनिक रूप से काम कर सकत रहे हैं, ओला ऐसी तेती बहका सकत रहे हैं, उन्हें अच्छा अच्छा रोचक डाल सकत रहे हैं, पर वो रोचक डाले में वो चीज नहीं दिखती है, वो तो बर्बाद हो जाती है ना, फिर नाम कहाँ होती है। तो ये चीज बचाए के खातिर हम ला सब जने जुल मिल के अपन संस्कृति ला अच्छा सजा के रखे ना, हमन ला फायदा है, हमारे आने वाले पीढ़ी में फायदा है। सिखाए में जो आनंद आते मैं अब कुछ मुला अच्छा नहीं लगे, कतको लेकर वो थे रोवत रोवत गाते तो बोले भूल यारो चुचकारो ये गाड़ रही गाड़ रही बेटा बहुत सुंदर गाली था, बोले बढ़ावा भी दो, तो ये भी बड़ा आनंद आते मैंने गुरु बन के काम करो तो आपके समय में मुला बहुत अच्छा लगते लेकर मल्ला सिखा के दे दो।
1: तभी करत मैं धुरला भेटे हूँ और नरसिंह ला भेटे हूँ खम्भा भूर बिना तौरी ला भेटे हूँ क्यों तल भेटे हूँ गंगा माँ।
2: और अब स्मरण करते हैं भारतीय रंगमंच की एक महान विभूति विजया मेहता का। विजया मेहता आधुनिक भारतीय रंगमंच की उन अग्रणी निर्देशकों में थी जिन्होंने मराठी रंगभूमि को नई सौंदर्य दृष्टि प्रयोगशीलता और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। उन्होंने शास्त्रीय और आधुनिक रंग भाषा के बीच एक सशक्त सेतु बनाया। अभिनय निर्देशन रंग प्रशिक्षण और नाट्य चिंतन हर क्षेत्र में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा। उनके व्यक्तित्व और योगदान पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं सुप्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक अमोल पालेकर।
3: विजया जी एक ऐसी अभिनेत्री थी जिसे दिग्गज कहना भी कम होगा। एक छोटी सी बात मैं कह दूं कि विजया जी के बाद जितनी भी अभिनेत्रियां मराठी स्टेज पे आई और बड़ी अच्छी अभिनेत्री, उन सब पे और जिन्होंने विजया जी के साथ काम किया था उन सब पे विजया जी के अभिनय की छाप इतनी जबरदस्त थी कि ये कौन से स्कूल से आई है ये बताने की जरूरत नहीं रहती थी। मतलब उनके करियर के शुरुआत से आखिर तक उन्होंने एक ऐसी छाप छोड़ दी मराठी रंगमंच पर कि जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। रंगायन जैसी संस्था का उन्होंने निर्माण किया और अलग अलग प्रायोगिक नाटक उन्होंने पेश करना शुरू किया। उन्होंने एक अपना प्रेक्षक वर्ग बनाया जो बढ़ते गया। और विजया जी के बारे में एक बात कहना बहुत जरूरी है और समझना, विजया जी ने उनकी शुरुआत प्रायोगिक रंगमंच से की लेकिन वहां से वो मेन स्ट्रीम रंगमंच पर चली गई और मेन स्ट्रीम रंगमंच पर उन्होंने अभिनय भी किया और निर्देशन बहुत ज्यादा किया। सवाल उठाना, अलग किस्म के नाटक पेश करना, नए नए नाटककार पेश करना, ये सारा योगदान विजया जी ने बड़े काबिलियत के साथ किया।
2: भारतीय लोक कला और रंगमंच की ये दोनों विलक्षण साधिकाएं अपने अपने क्षेत्र में सृजन समर्पण और सांस्कृतिक प्रतिबद्धता की ऐसी विरासत छोड़ गई हैं जो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी। भारतीय संस्कृति की शक्ति उसकी निरंतरता में है। प्रकृति के संरक्षण से लेकर लोक आस्था तक, कृषि परंपरा से लेकर सृजनशील कलाकारों की विरासत तक हर धारा एक ही सांस्कृतिक प्रवाह का विस्तार है। इसी विश्वास के साथ आज की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती यही संपन्न होती है। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
4: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, इस समय रात्रि के 10 बजे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

अखिल भारतीय कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है डॉक्टर रामावरपु माधुरी देवी का कर्नाटक शैली में वीणा वादन। दिस इज आकाशवाणी। गुड इवनिंग लिसनर्स, वेलकम टू द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। टुनाइट वी प्रेजेंट अ वीणा रिसाइटल इन कर्नाटक स्टाइल बाय डॉक्टर रामावरपु माधुरी देवी। डॉक्टर रामावरपु शरत बाबू और श्रीमती विजयलक्ष्मी की बेटी डॉक्टर आर माधुरी देवी ने वीणा वादन की शिक्षा अपनी माताजी वीणा गुरु श्रीमती रामावरपु विजयलक्ष्मी के पास प्राप्त की। आपने संगीत की बारीकियां सुप्रसिद्ध वीणा विद्वान डॉक्टर ई मणि शंकर शास्त्री से सीखी। मनोधर्म का पालन करते हुए वीणा पर लयबद्ध तरीके से रस और भाव का प्रदर्शन डॉक्टर रामावरपु माधुरी देवी की विशिष्टता रही है। वीणा वादन में आकाशवाणी द्वारा ए ग्रेड क्लास डॉक्टर आर माधुरी देवी ने कई भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन किया है। आपको विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है। बॉर्न टू डॉक्टर रामावरपु शरद बाबू एंड लेट श्रीमती रामावरपु विजयलक्ष्मी, डॉक्टर माधुरी देवी इज एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी। शी बिगैन हर ट्रेनिंग इन वीणा एट एन अर्ली एज अंडर द गाइडेंस ऑफ हर मदर, a well-known Veena guru, and even gave her first presentation at the age of 8. She later honed her skills under the tutelage of the renowned Veena artist, late Dr. Imani Shankar Shastri. Dr. Madhuri Devi has earned her PhD degree for her thesis on the rasa elements in Telugu musical compositions of the prominent composers since Annamacharya up to 19th century. As an artist, she has performed extensively in respected platforms all over the globe and is the recipient of a number of awards, titles and felicitations. Her music has been appreciated for expounding the rasa and bhava aspects of melody, manodharma and her command over laya. She also has a number of compositions to her credit. Aaj ke karyakram mein Dr. Ramavarpu Madhuri Devi ki sangat kar rahe hain mridangam par श्री महादासु येडकोंडलु और घटम पर श्री मावडूरु सूर्य प्रसाद। इन टुनाइट्स कॉन्सर्ट डॉक्टर रामावरपु माधुरी देवी इज अकंपनीड बाय श्री महादासु येडकोंडलु ऑन द मृदंग एंड श्री मावडूरु सूर्य प्रसाद ऑन द घटम। डॉक्टर आर माधुरी देवी, आज के कार्यक्रम का आरंभ नाट्य राग में मुत्तैया भागवतार की रचना शक्ति गणपति से कर रही है, जो की रूपक ताल में निबद्ध है। Dr. Ramavarapu Madhuri Devi begins her concert with Shakti Ganapati, a composition of Muthaiya Bhagavatar in Nataragam Rupak Talam.

0: डॉक्टर आर माधुरी देवी की अगली प्रस्तुति है रीति गौड़ राग में संत त्यागराज की रचना नन्नु विड़ती कदलकुरा, जो कि त्रिपुट ताल में निबद्ध है.
1: She next presents a composition of Saint Tyagaraja in Ritigala Ragam, Triputa Talam.

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप डॉक्टर रामावर कुमादरी देवी का कर्नाटक शैली में वीणा वादन सुन रहे हैं। आपकी संगत कर रहे हैं मृदंगम पर श्री महादासु येडुकोंडलु और घटम पर श्री मावडूरु सूर्य प्रसाद। कार्यक्रम को जारी रखते हुए डॉक्टर आर माधुरी देवी की अगली प्रस्तुति है काति राग में वनमालीय जी आर स्वामी की रचना जानकी रमणा, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: You have been listening to a Veena recital in Carnatic style by Dr. Ramavarapu Madhuri Devi in tonight's national program of music. She is accompanied by Sri Mahadasu Erukondalu on the Mridangam and Sri Mavaduru Surya Prasad on the Ghatam. Continuing her presentation, Dr. Madhuri Devi will now present Janaki Ramana, a composition of Vanamaliya J.R. Swami in Kapi Ragam Aditalam.

0: कन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर प्रस्तुत किया श्री महादासु येड़ुकोंडलु ने और घटम पर श्री मावडूरु सूर्य प्रसाद ने। डॉक्टर रामवरपु माधुरी देवी आज के कार्यक्रम का समापन देहाग राग में डॉक्टर मंगलमपल्ली बालमुरली कृष्णा को चिल्लाना से कर रही हैं, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: That was Taniyavartanam on the Mridangam by Sri Mahadasu Erukondalu and on the Ghatam by Sri Mavuduru Surya Prasad. Dr. Ramavarapu Madhuri Devi concludes her performance this evening with a tillana of Dr. Mangalampalli Balamurali Krishna. It is in Dehagragam Aditalam.

0: अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी तक आप डॉक्टर रामवरपु माधुरी देवी का कर्नाटक शैली में वीणा वादन सुन रहे थे। आपकी संगत कर रहे थे मृदंगम पर श्री महादासु येडुकोंडलु और घटम पर श्री मावडूरु सूर्य प्रसाद। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम यही सम्पन्न होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के विशाखापट्टनम केंद्र में ध्वन्यांकित किया गया।
1: With this we come to the end of tonight's national program of music, wherein we brought you a Veena recital in Carnatic style by Dr. Ramavarapu Madhuri Devi. She was accompanied by Sri Mahadasu Erukondalu on the mridangam and Sri Mavuduru Surya Prasad on the ghatam. This program was recorded earlier at the studios of Akashvani Vishakhapatnam.
2: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल। श्रोताओं, इस समय रात्रि के 11 बजे हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
3: के साथ में अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गई हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यौरा हमारे विशेष संवाददाता से।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ऐतिहासिक 2 दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। 4 दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही, जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
3: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत राय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जाँच के लिए समिति गठन करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद प्रीति चौधरी ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के चुनाव के एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। गोवा में मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 41 सदस्यीय समिति सरकारों, राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के विचार जानने के लिए राज्यों का दौरा कर रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने

0: तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा लगाए गए उस आरोप की आलोचना की है जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अब्दुल्ला का ये बयान अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के आज वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने स्पष्ट की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों में से 10 तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरलम में से थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटक, 3 चालक दल के सदस्यों और 1 परिचारक सहित कुल 36 लोग सवार थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। साउथैम्पटन में खेले जा रहे 5 T20 मैचों की श्रृंखला के अंतिम मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत के सामने 258 रन का लक्ष्य रखा है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 19वें ओवर में 7 विकेट पर 193 रन बना लिए हैं। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अमृत भूषण। Prime Minister Narendra Modi has concluded his historic two-day visit to New Zealand and departed for India. The visit, the first by an Indian Prime Minister to New Zealand in over 4 decades, gave a major boost to bilateral ties. During the visit, Mr. Modi held talks with his New Zealand counterpart, Christopher Luxon. The two leaders witnessed the exchange of 5 memoranda of understanding in areas including defence, tourism, sports, disaster management and dairy and animal husbandry. A major highlight of the visit was the community event at Auckland's Spark Arena, attended by over 10,000 members of the Indian diaspora. Prime Minister Modi thanked Prime Minister Luxon for his warm hospitality and said the visit had opened a new chapter in India-New Zealand relations. Referring to the 40-year gap since the last visit by an Indian Prime Minister, he said the next visit would not take so long. Defence Minister Rajnath Singh today said that India is building a strong, self-reliant and future-ready defence force by strengthening both conventional defence capabilities and advanced technologies. Mr. Rajnath Singh said this while addressing the commissioning ceremony of the INS Mahendragiri, the 6th Project 17A Indigenous Stealth Frigate, into the Eastern Fleet at Visakhapatnam. He said the commissioning marks another milestone in strengthening India's maritime power and indigenous defence capability. 15 Indian tourists were killed after a boat capsized near Vietnam's Phu Quoc Island today. The Embassy of India in Vietnam confirmed that the deceased include 13 men and 2 women. According to the embassy, 10 of the deceased were from Tamil Nadu, 3 from Andhra Pradesh and 2 from Kerala. The boat was carrying 36 people, including 32 Indian tourists, 3 crew members and 1 attendant. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed condolence at the tragic accident. The West Bengal government has formed the 9-member committee to examine the draft bill of Uniform Civil Code for the state. A notification has already been published in this regard. Justice retired Ranjana Prakash Desai will be the chairperson.